सवेरे ही करना ज्यादा लाभकारी होता है। इस योगासन का अभ्यास आप सभी लोग सुबह के साथ में कर सकते हैं और जितना हो सके एकांत और स्वच्छ वातावरण में करें, इसका लाभ आपको दुगना मिल सकता है। सावधानियों के साथ में आज हम लोगों ने मिलकर के चंद्र नमस्कार के बारे में जाना, यानी कि लक्ष्य चंद्र नमस्कार के बारे में जाना। तो इस तरीके से हम कल फिर एक नए शब्द के साथ, एक नए आसन की शब्द की उत्पत्ति के साथ हम मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोग लक्ष्य चंद्र नमस्कार के बाद में 10 से 15 मिनट का ध्यान, जो कि योग आसन के बाद बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए हम सभी मिलकर के ध्यान योग करते हैं और फिर हम कल मिलेंगे एक नए आसन, एक नए शब्द के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हम हमेशा से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते आते हैं, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे वो योग अभ्यास को लेकर के हो, चाहे वो मानसिक शांति को लेकर के हो। क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य अगर एक बार गिर गया तो धन भी उसे उठा नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जो कुछ हम लोग लेकर के आए हैं वो आपके लिए तो सबसे सर्वोपरि है ही, खास करके उन सभी के लिए है जो कि जॉब में हैं। आजकल बच्चे कम उम्र में ही उन्हें जॉब मिल जाती है, या फिर बड़े बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे, उन्हें क्या हो जाता है कि मोबाइल की लत लग जाती है। मेरा इशारा शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसका निवारण और उसका संचालन हम खुद कैसे कर सकते हैं। संचालन से याद आया, जब हम अपने आप को स्वयं चलाने की कोशिश करते हैं तो ही बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं, बनती हैं। ठीक उसी को अगर हम स्वचालित रूप से करने लगते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारा मानसिक स्तर भी अच्छा होता है और हम अपने मन के मुताबिक काम भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही योग प्राणायाम के साथ में एक ऐसी डिजीज के बारे में जो कि आजकल आम हो गई है। हर घर में हर एक दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम है ही, जो कि है सर्वाइकल। सर्वाइकल सबसे पहले हम जानेंगे कि वो है क्या, क्योंकि सर्वाइकल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखने से या फिर कहीं घूमने फिरने से, अगर आप कहीं जा रहे हैं और हल्की सी अगर मोच आ गई तो लोगों को लगता है कि हमें सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल एक्चुअल में है क्या? सर्वाइकल का मतलब है गर्दन का वो हिस्सा, यानी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के ऊपर 7 कोशिकाएं C1, C7, ये जब सब एक साथ मिल करके, जब इस हिस्से की हड्डियां, डिस्क, मांसपेशियां या नसों में समस्या होती है तो वो आम बोलचाल में लोग इसे सर्वाइकल कहते हैं। ये क्यों होता है, ये इसके कारण क्या है? जैसे लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर पर झुककर काम करना और एक ही टक उसे देखते रहना, गलत तरीके से बैठना या सोना, आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, तकिया 2 ले लेना और 2 तकियों पर आराम से लेट करके मोबाइल देखना और घंटों मोबाइल देखना, बढ़ती उम्र के साथ गर्दन की हड्डियों में घिसाव, गर्दन में चोट लगना, लंबे समय तक एक ही मुद्रा में काम करना और बैठना, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं आइए हम आपको वो बताते हैं। गर्दन में दर्द या अकड़न, कंधे और हाथ तक दर्द फैलना, हाथों में झंझनाहट या सुन्नपन का रहना, सिर के पीछे दर्द, गर्दन झुकाने में कठिनाई और कुछ लोगों को तो चक्कर भी आने लगते हैं। ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल अधिकांश मामलों में, यदि ये व्यायाम, योग और सही बैठने की आदत से हम इसकी आदत बना सकते हैं। फिजियोथेरेपी और जरूरत पड़ने पर दवाइयों में काफी आराम भी मिल सकता है, लेकिन कहते हैं ना, योग से जुड़ें और सही बैठने की आदत डालें तो हमें इन सब चीजों की भी कोई जरूरत नहीं होती है। यदि नस पर अधिक दबाव हो या गंभीर समस्या हो तो आगे जांच और विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके कारण आपको लगता होगा कि शायद इसके कारण भी हम बता दें कि ये किन कारणों से होता है। यदि आपको लगता है कि आपको सर्वाइकल है तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स होने लगते हैं कि आपको गर्दन में हल्का सा दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और या तो या

आपको उठने बैठने और चलने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे नियम जो मैं आज आपको बताऊंगी, यानी सर्वाइकल में अपनाने वाले योग्य नियम। गर्दन को लंबे समय तक एक ही स्थिति में बिल्कुल ना रखें। मोबाइल को नीचे झुककर देखने की बजाय आंखों के सामने ही रखें और कम समय के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। जब भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करें तो आप जीरो पॉइंट का ही, लेकिन आपको चश्मा लगा करके ही मोबाइल को देखना है। हर 30-40 मिनट बाद 2-3 मिनट का ब्रेक जरूर लें। यदि आप किसी जॉब में हैं या घंटों बैठकर आपको काम करना पड़ रहा है, बहुत ऊंचा या बहुत मोटा तकिया ना लगाएं, पतला तकिया बेहतर रहता है। अचानक गर्दन झटकने या भारी वजन उठाने से भी बचें। कई बार मैंने देखा है महिलाएं सुबह जब काम करती हैं अपने घरों में, पानी भारी से भारी बाल्टी को यूं ही झटके में उठा लेती हैं, या फिर जमीन पर कोई चीज गिर जाती है तो उसे झटके से झुक करके उठा लेती हैं। तो ये आदतें भी आगे चल करके आपको सर्वाइकल का शिकार बना सकती हैं। रोज 20-30 मिनट हल्की सैर करें। पर्याप्त नींद यानी कि 7-8 घंटे की नींद पर्याप्त नींद कहलाती है, जो कि हर किसी को लेनी चाहिए। सर्वाइकल के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल कई घरों में सुनने को मिला है, देखने को मिला है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको यही कहते हैं कि आप अपना वजन कम करें और योग अभ्यास करें। गिरवा संचालन यानी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाने के लिए यह आसन किया जाता है। आप रोज 15-20 मिनट इस आसन को कर सकते हैं, जो कि है गिरवा संचालन। दूसरा है ताड़ासन। कई बार बहुत सारी सीरीज में हमने ताड़ासन के बारे में बताया है। भुजंग आसन, मकरासन, मामरी आसन, मांजरी आसन या उसे कैट काउ स्ट्रेच भी कहते हैं, बालासन और अंत में शवासन, जो कि 5-10 मिनट हम आराम की मुद्रा में जाकर के इसको कर सकते हैं। अब आता है प्राणायाम की स्थिति। अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट और 5 मिनट करके आप अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। सर्वाइकल के लिए आज मैं आपको एक डाइट चार्ट भी देने वाली हूं, जो कि सुबह से लेकर के शाम तक का आपको हर एक खाने की डाइट उसमें बताई जाएगी। सबसे पहले तो सुबह गुनगुना पानी, आपको आदत डाल लेनी है कि एक गिलास गुनगुना पानी आराम से बैठ करके सिप सिप करके आपको पीना है। इकट्ठा भी नहीं पी जाना है, थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी सुबह पीना है। 5-6 भीगे हुए बादाम, 1-2 भीगे हुए अखरोट और थोड़ी सी किशमिश, इसको आपको रात में ही भिगो के रख देना है। कहा जाता है कि जिन भी लोगों ने इस डाइट को लेना शुरू कर दिया, यानी कि सुबह आपने ड्राई फ्रूट्स और या सूखे मेवे को खाना शुरू कर दिया, जीवन भर जब तक आपकी आयु है तब तक आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अब आते हैं नाश्ते की ओर। दलिया, ओट्स, पोहा, मूंग दाल का चिल्ला और साथ में एक गिलास दूध, दही या छाछ भी आप ले सकते हैं। दोपहर में 2-3 रोटी यानी कि बहुत ही पतली और हल्की रोटी, हरी सब्जी, दाल, सलाद और एक कटोरी दही, अगर आपको नुकसान नहीं करती है तो। शाम को मौसमी फल जैसे सेब, अमरूद, पपीता आदि आप ले सकते हैं। शाम का समय है, 5-6 के पहले ही आपको ये ले लेना है। भुने चने या अंकुरित दाल। अब आती है रात की बात, यानी कि रात में हम खाना कैसा लें। रात में हमेशा से हल्का भोजन लेना चाहिए, पतली पतली 2 रोटियां अगर आप खा रहे हैं तो ठीक, वरना 1 रोटी और दाल और सब्जी की क्वांटिटी को बढ़ा देना चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले खाना खाएं और सोने से आधा घंटा पहले, जिन भी लोगों को लगता है कि वो दूध पीते हैं और उन्हें वो हजम हो जाता है, तो दूध में चुटकी सी हल्दी डाल करके दूध का सेवन भी कर सकते हैं। क्या खाएं जिससे हमें और पौष्टिक आहार मिल सके। दूध, दही, पनीर, तिल और अलसी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें और अंकुरित अनाज,
और पर्याप्त पानी यानी कि 2 से 3 लीटर प्रतिदिन पानी आपको पी जाना है। इन चीजों से आपको बचना है, जैसे जंक फ्रूट हो गया, तला भुना भोजन, अधिक चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स। लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप पर झुक कर काम करना सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। तो ये थी दोस्तों सर्वाइकल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, योग और डाइट प्लान। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस डाइट प्लान और योगासन को आप अपनी जिंदगी में, आप अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में जरूर इसे अपनाएंगे। और उसके बाद में जब आपने अपनाना शुरू कर दिया तो चैट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये डाइट प्लान और योग करने से अगर आपको सर्वाइकल है और उसमें फायदा हुआ है तो मैसेज में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नई सीरीज के साथ, एक नए योगासन के साथ। तब तक करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एक नई सीरीज चल रही है जिसमें हर एक योग आसन के साथ में एक प्रमुख नाम को जोड़ा गया है जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा असर है। कहते हैं ना कि अगर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को, किसी भी शब्द को हम अपने जीवन के साथ अगर जोड़ देते हैं तो उसके साथ में उसका महत्व भी अभिन्न रूप से हमारे साथ जुड़ जाता है। जैसा कि हम अगली श्रृंखला में चल रहे हैं, एक योग की श्रृंखला में चल रहे हैं जो कि है योगासन, जिसे बोट पोज भी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ नौकासन के बारे में जानना ये आसान नहीं होगा, इसीलिए इस नौकासन को एक नाम दिया गया है जो कि है अलौकिक नौकासन। अलौकिक नौकासन इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये अपने आप में एक अलौकिक रूप से काम करता है। जो आसन हमें संपूर्ण रूप से हमारी पेट की मांसपेशियों के साथ में एक संतुलन बनाता है वो एक अलौकिक ही तो हुआ, जो हमारे पूरे शरीर को एक संतुलित आहार की तरीके से काम करता है। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि हमने पेट के अंदर वो खाना गया, लेकिन क्या आपको पता है कि खाना कहाँ से गुजरता हुआ कहाँ को गया है और उसके बाद में ये खाना कितनी देर में पचेगा और हर एक खाने की, हर एक कौर की क्या पोषक तत्व मिलेंगे या उनका महत्व क्या है। ठीक वैसे ही हम आसनों को तो कर जाते हैं लेकिन हर एक आसन के पोज की, हर एक आसन की, हर एक पॉइंट की अलग अलग महत्ता होती है, जैसे कि नौकासन। तो आइए अब हम जानते हैं नौकासन अपने आप में अलौकिक नौकासन क्यों है। योग एक असरदार आसन होता है ये सभी जानते हैं, जो हमारे पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और संतुलन बढ़ाता है। तो आइए इसे हम किस तरीके से करते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसके फायदे। नौकासन करने से, अलौकिक नौकासन को करने से पेट की चर्बी घटाने और कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करता है। पाचन तंत्र को इस तरह सक्रिय करता है, जो बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं उन्हें एक अपने शरीर में आकार मिलता है और जो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं उन्हें अपनी चर्बी को घटा करके उन्हें एक संपूर्ण और सुदृढ़ आकार मिलता है। कमर और जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, फोकस और बैलेंस बेहतर और मजबूत होता है। अब आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसको करने की विधि। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये वार्म अप 2 से 3 मिनट का मिनी डेली रूटीन होना चाहिए, यानी अगर हम इसे 10 मिनट का एक मिनी रूटीन के रूप में देख रहे हैं तो 2 से 3 मिनट पहले वार्म अप करना जरूरी है। वार्म अप में क्या करना है, हल्की गर्दन को घुमाना है, 30 सेकंड दाएं से बाएं गर्दन को घुमाते हुए कंधे को रोल करते रहना है, 30 सेकंड बैठकर हल्का आगे पीछे घुमाना, यानी गर्दन को पहले आगे झुकाना फिर पीछे की ओर झुकाना, वो 1 मिनट। उसके बाद में अब नौकासन शुरुआती वजन के हिसाब से करना चाहिए। पहले 10 मिनट का एक डेली रूटीन बनाने में हमारे 2 मिनट वार्म अप में गए, अब 3 मिनट का हमें एक और वार्म अप करना है जो कि वजन के हिसाब से है। घुटने मोड़े रखें, हाथ सामने, 15 सेकंड, 3 राउंड आपको पकड़ना है, यानी घुटनों को मोड़ करके हाथों को सामने करना है और हर राउंड के 20 पीस और 30 सेकंड आराम से करते जाना है। उसके बाद में
अब आपको नौकासन की स्थिति में आ जाना है। नौकासन की स्थिति को करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम किसी शांत वातावरण के स्थान पर बैठ जाएं। जमीन पे बैठ रहे हैं तो इसका लाभ हमें दुगना मिलता है। योगा मैट या कोई भी चद्दर आप बिछा लें और उस पर आप पेट के बल सीधे लेट जाएं। याद रखें दोस्तों, पेट के बल नहीं, पीठ के बल। हाथों को भी समांतर रखें। श्वास को मध्यम गति से धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। दोनों पैर, दोनों हाथ, धड़ व सिर को एक साथ जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठाना है। ध्यान रहे सिर और पैर लगभग एक ही ऊंचाई पर रहें। जितनी देर इस अवस्था में आप रह सकते हैं उतनी देर आप रुकें। अन्यथा धीरे धीरे पैरों को नीचे करें और हाथों को भी समानता स्थिति में लाते हुए अपने कंधों को जमीन पर रख दें। ये आसन पूर्ण नौकासन कहलाता है। यही क्रम अब आपको 2 से 6 बार की स्थिति में दोहराना है। ये द्वितीय प्रकार से भी आसन हो सकता है। ये आपका पहला क्रम था जो कि अलौकिक नौकासन। दूसरा इसका प्रकार है जिसे आपको हाथों को लंबे रखना है और उंगलियों को आपस में मिलाकर सिर के

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पता कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: ये कितने का है?
3: ₹5।
2: हमारे पास 2 ही रुपया है, रख लो।

0: भागो भागो कोई गधा अपने पल्ले बांध न जाए, भाग झिंकी भाग। वहाँ मुफ्त की रबड़ी खाए, देखो अपने रज्जू ताऊ।
1: मक्कल घुमा के मक्खी उड़ाए, रतन और ताऊ दोनों बिकाओ।
0: छुटकी, भगवान करे वो सुखी रहे और उन दोनों का साया भी हमसे दूर रहे।
1: हर वक्त टोकती रहती है, तू मेरी बहनी भाई है।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

क्या बात है, क्या बात है। और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गुना में। आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉकर जी अदनान। और आज फाइनली है ट्यूसडे मॉर्निंग। सो यस, इस खूबसूरत सी सुबह का आप सभी को भाई पहला पहला नमस्कार, पहला पहला गुड मॉर्निंग, पहला पहला सत श्री अकाल और पहला पहला अस्सलाम वालेकुम। सो यस, अब होने वाला है ज़बरदस्त धमाका। यानी आज के ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल शो में हम काफ़ी कुछ लेकर आने वाले हैं जो आपके दिन को और भी ज़्यादा ख़ास बनाने वाला है आपके मॉर्निंग शो में। सो चलिए इस गाने को पहले मुकम्मल तौर पर सुन लेते हैं, वापस से आते हैं और आने के बाद एंजॉय करते हैं। बैक टू

हाँ जी, तो आ गए हैं आपके शो के रिएक्शन की तरफ। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि आप हमको ट्यून करते हैं 89.6 एफएम की फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। और उसी एप्लीकेशन पर अगर आप कुछ चैट पर लिखते हैं तो वो हम तक सीधे आता है, यानी आपके कोंडा एफएम के आरजेस तक सीधे वो बात पहुँच जाती है। सो फिलहाल आज के शो में किसने किसने क्या कुछ लिखा है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। और बड़े ही मैसेजेस आए हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे लोग हैं आप भाई। तो सबसे पहला जो मैसेज आया है वो राहुल का आया है, झुंझुनू राजस्थान से, और लिखा है गुड मॉर्निंग सभी को सर के गाने के साथ। ऑलराइट, सो गाने पसंद आए हैं राहुल को, थैंक यू सो मच राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत करते हैं। महेंद्र दीपन है फ्रॉम राजस्थान, गुड मॉर्निंग सुप्रभात एवं सादर नमस्कार आरजे अदनान सर जी, आपको भी सादर नमस्कार और सभी श्रोताओं को भी प्यार भरा सुप्रभात, थैंक यू सो मच। और लिखा है आपने कि सुबह की शुरुआत अगर मुस्कान के साथ हो जाए तो पूरा दिन अपने आप खूबसूरत बन जाए। वैसे कुछ साल पहले तक हम लोग की सुबह की शुरुआत मुस्कान के साथ होती थी, मुस्कान जो चेहरे पर हो वो तो होती ही थी, मुस्कान एक रस का आता था जो चाय के साथ खाते थे, और मुस्कान बिस्किट के साथ ऐसा माना जाता था कि जिसने खा लिया, जिसके दिन की शुरुआत हो गई, वो हैप्पी हैप्पी रहता है। सो मुझे वो मुस्कान याद आ गई, राइट। सुशील यादव जी मौजूद हैं, सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात। साथ में आप लिखते हैं ज़्यादातर लोग आपसे तब मिलते हैं जब आप ताकतवर होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपसे तब भी मिलते हैं जब आप उनके किसी काम नहीं आ सकते। क्या बात कही है, थैंक यू सो मच टू यू सुशील यादव जी, आपका भी स्वागत है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और सविता दुबे जी मौजूद हैं, सुप्रभात तो कहा ही है, साथ में वो कहती हैं सभी को आज मेरे भाई का जन्मदिन है, यानी राजू भैया का जन्मदिन है, तो राजू भैया को उनके बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और भाई जिस तरह से आप जुड़ी हुई हैं 89.6 एफएम के साथ, वैसा ही रिश्ता आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में रहे, सब एक दूसरे के लिए प्यार न्योछावर करते रहे, मिलते रहे, खुशियां बांटते रहे। बहुत सारी दुआएं भाई राजू जी के लिए और बहुत सारा आशीर्वाद भाई राजू जी के लिए, थैंक यू सो मच सविता जी, कि आपने बताया कि आपके भाई राजू जी का जन्मदिन है आज। एंड राहुल लिखते हैं अदनान सर गुड मॉर्निंग आपको, थैंक यू सो मच राहुल, आपको भी गुड मॉर्निंग। और झुंझुनू पढ़ने के बाद मुझे झुंझुनू की मॉर्निंग याद आ रही है, वो सादी सादी सी मॉर्निंग जब सूरज निकल आता था और सब कुछ इतना ज़्यादा सुकून सा, इतना कम मतलब दूर दूर तक काफ़ी पीसफुल रहता था, सो बड़ा अच्छा लगता था। वहाँ की मार्केट भी हालाँकि मुझे याद आ रही है। एंड फिलहाल महेंद्र ने बताया कि हाँ सही कहा, हम हैप्पी हैप्पी वाले बिस्किट्स के साथ शुरुआत करते थे, राइट, है ना। सो ये बिस्किट भी देखिए कितना बेहतरीन नाम है, कोई हैप्पी हैप्पी है तो कोई मुस्कान है। अब चाय के साथ खाने के लिए ज़बरदस्त मुस्कान है, और अगर पानी के साथ आप बिस्किट खा ली लेते हैं तो हैप्पी हैप्पी बिस्किट परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं, मैं यहाँ कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि इससे काफ़ी वक्त अपना गुजरा हुआ है। और इसी बातचीत के बीच में प्रीति जी आ गई हैं बहराइच से, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, और साथ ही दो कप चाय भी लाइए, चलिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज चाय मैंने अपने घर पे नहीं पी थी, सो यहाँ पे स्टूडियो में होगी आपकी दी हुई चाय से शुरुआत। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन, आप सब जुड़े हुए हैं, इस वक्त आप फ्रिक्वेंसी पर भी हैं, रेडियो गार्डन पर भी हैं, और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन पर भी हैं। तो चलिए अब वक्त हो गया है फिलहाल इस शो को आगे बढ़ाने का, और आने के बाद इतनी सारी बातें आपसे करने का, इतना सारा आपको काम का बताने का, आपको गुनगुनाने का, आपको हंसाने का, मस्ताने का, सब कुछ इंतजाम हो रखा है। फिलहाल आप बने रहिए 89.6 एफएम पर।

भाई मुझे भी आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं इस खुशी को कैसे बयां करूं। फ़िलहाल आज अच्छा पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि पता चल गया है कि भाई हमारी बहुत ही करीबी लिसनर उनके भाई राजू जी का बर्थडे है। तो चलिए हम तो भाई हर बर्थडे को स्पेशल बनाते हैं और मिल करके सेलिब्रेट करते हैं, और हम काफ़ी ज़्यादा इस वजह से खुश रहते हैं कि एक ऐसी फैमिली है जो सबकी खुशियों में भी साथ है। और अगर आप परेशान हैं तो भी कोई बात नहीं, हम आपके तो भी साथ हैं। तो इसी कड़ी में फ़िलहाल चलते हैं, एक खूबसूरत सा गाना डेडिकेट करते हैं भाई राजू जी को, और सविता जी की तरफ से फ़िलहाल उनके भाई के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी कामना है कि भाई वो खुश रहें, ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर तरीके से करते रहें, और उनको उनकी लाइफ की मीनिंग जल्द से जल्द मिल जाए।

अगर अगर अगर अगर अगर आपको मौका मिले कि इस बर्थडे जो आपका आने वाला अपकमिंग बर्थडे है उस पर आपकी मनचाही विश को पूरा करने का मौका दिया जाए, यानी आप जो गिफ्ट जो तोहफा चाह रहे हो, तो क्या हो सकता है आपका मनचाहा तोहफा? है अच्छा, मैंने आपके जज्बातों को उकेर दिया वापस से। तो चलिए, अगर बता सकते हैं तो चैट बॉक्स पर आकर बताइए कि अगर आपको आपके बर्थडे का स्पेशल तोहफा चाहिए और आपको मौका मिले कि आप मांग करके ले सकते हैं कि भाई मुझे इस बार ये चाहिए और वो आपको दे दिया जाए, तो वो क्या हो सकता है? वैसे एक बार वापस से हमारे राजू भाई को उनके बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। सवाल आपके लिए था, जवाब चाहिए चैट बॉक्स पर।

पहला जवाब देख करके तो भैया मुझे इतनी खुशी हो रही है। हमारी सविता दुबे जी इस सवाल का जवाब देती हैं। सवाल ये था कि भाई अगर इस बर्थडे आपको पूछा जाए कि क्या तोहफा चाहिए और उस तोहफे को दे दिया जाए तो आप कौन सा तोहफा मांगने वाले हैं। सुसविता जी लिखती हैं कि सर आप हमारे आंगन आ जाएं बस। ओहो, इतनी ज़्यादा खुशी की बात है। थैंक यू सो मच टू यू, इतना बेहतरीन, इतना प्यारा सा रिस्पॉन्ड देने के लिए मेरे लिए स्पेशली। एंड रोशनी रावत जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, और आपने पूछा है सवाल, फिर से बता दीजिए। सवाल ये था कि इस बर्थडे जो आपका अपकमिंग बर्थडे है और उसमें अगर आपको ये मौका दिया जाए कि भाई आप ख़ुद से अपना तोहफा मांग लें तो वो तोहफा आप क्या मांगने वाले हैं, ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। एंड साथ ही साथ हमारी आशुमिश जी लखनऊ से आ गई हैं, आपको भी सुप्रभात, स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। सो यस, चलिए भाई आप भी बता सकते हैं इस सवाल का जवाब कि इस बर्थडे अगर आपको अपना मनचाहा तोहफा चाहिए तो वो मनचाहा तोहफा आपका क्या हो सकता है। सोचिए और फिर बताइए, क्योंकि आज तो बहुत सारी बातों का पिटारा आरजे अदनान लेकर आए हैं आपके ट्यूजडे मॉर्निंग शो में। तारीख तो बिल्कुल आधी हो चुकी है, 15।

0: जब पूरे जहां में और जमाने में इस वक्त रोजगार की बात हो रही है, रोजगार से जुड़े कई मुद्दों को लेकर के लोग सामने आ रहे हैं, उसी जगह पे एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसे रियल हीरो है जिन्होंने एक नहीं दो नहीं 149 गांव के एक नहीं दो नहीं 1000 जरूरतमंद बच्चों को रोजगार दिला चुके हैं। जी हाँ, और ये सुपर हीरो का नाम क्या है? ज़ीशान। सो चलिए आइए बताते हैं आपको कि आखिर कौन है ज़ीशान जो 149 गांव के 1000 जरूरतमंद बच्चों को रोजगार दिला चुके हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Aajya Khan.

हाँ जी, तो हमने बताया ना, एक दो गांव नहीं बल्कि 149 गांव के 1000 से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों को रोजगार दिला चुके हैं जीशान। सो हम आपको बता दें, कभी फीस नहीं जुटा पाने की वजह से खुद मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सके, लेकिन आज किसी बच्चे की शिक्षा रुकने नहीं देते हैं। जी हाँ, बेशक सही सुना आपने कि परिस्थिति ऐसी रही जिसकी वजह से खुद ये मेडिकल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। सौरा आदिवासी समुदाय की 13 साल की गौरी ने सन 2020 में अपनी मां को खो दिया और परिवार की मुश्किल सिचुएशन के चलते उसकी पढ़ाई भी छूट गई। पिता रोजगार के लिए बाहर रहते थे, इसलिए दोबारा स्कूल जाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन 2023 में सोशल शेप्स फाउंडेशन के विकल्प प्रोग्राम के दौरान गौरी ने फिर से पढ़ने की अपनी जो इच्छा थी वो जताई। संस्था की टीम ने उसके एडमिशन की तैयारी की, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सरकारी योजना तक पहुंचने में मदद की और गौरी को एक सरकारी आवासीय स्कूल में एडमिशन मिला, जहां उसकी पढ़ाई, रहने और खाने की व्यवस्था मुफ्त है। सो स्कूल बैग और यूनिफॉर्म पहनकर जब गौरी मुस्कुराई तो सोशल शेप्स फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं जीशान अली, इनको लगा कि शायद यही वो बदलाव है जिसके लिए उन्होंने ये सफ़र शुरू किया था। लेकिन जीशान का अपना खुद का सफ़र तो आसान नहीं था। जी हाँ, बिहार के मुंगेर में पले बढ़े जीशान ने सिर्फ 10 साल की उम्र में अपने फादर को खो दिया था। अब जाहिर सी बात है भाई, फादर कमाने वाले, तो आ गई आर्थिक मुश्किल। अब इस मुश्किल के बीच इन्हें BSF को एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। इन्होंने मेहनत से मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा जो है वो पास की, लेकिन फीस चूंकि नहीं जुटा पाने की वजह से मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाए। आगे इन्होंने कृषि और फिर XIM भुवनेश्वर से ग्रामीण प्रबंधन की पढ़ाई की। गांव और छोटे शहरों में काम करते हुए इन्होंने देखा कि कई बच्चों और कई सारे युवाओं के पास सपने तो हैं, लेकिन सही जानकारी और मार्गदर्शन का मौका नहीं है। फिर क्या था, इसी सोच ने 2019 में सोशल शेप्स फाउंडेशन की नींव रखी। शुरुआत हुई ओडिशा के सिर्फ 8 गांव से। आज 2026 की अगर हम बात करें, और चूंकि सितंबर चल रहा है, सो 2026 जून तक का जो आंकड़ा है उसमें संस्था ओडिशा के 6 जिलों के 149 गांव और 11 से ज्यादा सरकारी और आवासीय स्कूल्स तक पहुंच चुकी है। 3,990 से ज्यादा बच्चों और युवाओं को जुड़ चुकी ये संस्था। 700 से ज्यादा युवाओं को हायर एजुकेशन, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, रोजगार के लिए इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर चुकी है। 400 से ज्यादा जो है वो स्कॉलरशिप्स दिला चुकी है। 70 से ज़्यादा ऐसे युवाओं को दोबारा से एजुकेशन से जोड़ चुकी है जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। सो गौरी जैसे हज़ारों बच्चे के लिए शायद यही वक्त था इस पर मिली एक छोटी सी मदद, उनके उज्जवल भविष्य और हार मान लेने के बीच का फर्क बन सकी। जीशान की कहानी सिखाती है कि बड़ा बदलाव हमेशा रिसोर्सेस से शुरू नहीं होता, बल्कि किसी एक बच्चे का हाथ थामने से शुरू हो सकता है। जी हाँ, अगर एक छोटे से बच्चे का हाथ भी थाम लिया जाए, उसके लिए मार्गदर्शक बन लिया जाए, उसके लिए उसका सहारा बन लिया जाए, तो बहुत बड़ा बदलाव शायद भविष्य में इंतज़ार कर रहा होता है। सो जीशान अली हमारे सुपर हीरो हैं आज के इस स्टोरी के, एंड आई होप कि आपको भी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। फिलहाल आप बता सकते हैं जीशान अली के बारे में, और साथ ही साथ आपने बताया है कि भाई अगर इस अपकमिंग बर्थडे में आपको अपना खुद का तोहफा मांगना हो, बन चाहा आपकी विश हो, तो आप क्या मांगना चाहेंगे। यानी अगर आपको कोई ये कहे कि भाई जो तोहफा मांगो इस बर्थडे वो तुमको मिलने वाला है, तो वो तोहफा आपके लिए क्या हो सकता है, आप कौन से विशेज करने वाले हैं, इसका भी रिस्पॉन्ड आपने किया जिसको हम आ करके पढ़ने वाले हैं आपके रिस्पॉन्सेज। और फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

क्या बात है भाई, कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं जो सच में मतलब इतने क्यूट से, इतने प्यारे से लगते हैं। फिलहाल अभिजीत वापस से आए हैं और अभिजीत बोलते हैं कि मैं गोंडा आया दोस्त के पास, वही मेरे लिए बहुत कुछ है। क्या बात है, थैंक यू सो मच अभिजीत फॉर योर रिस्पॉन्स। एंड यस, इसके बाद हमारी आशु जी लिखती है कि अगर हमें अपने बर्थडे पर जो भी चाहिए हो तो मैं ये चाहूँगी जो भी हो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, जहाँ भी रहे सभी लोगों के दुख और सुख में साथ मदद करें। क्या बात है, थैंक यू सो मच आशु जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस राहुल, ये पीके मूवी का सॉन्ग था नंगा पुंगा। और सविता जी को जो है वो झूमने वाला गाना काफ़ी झुमा दे गया, थैंक यू सो मच कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वैसे आने के बाद ऑफ कोर्स बातें हमारे पास कहाँ ख़त्म होती हैं। सो फिलहाल चूँकि हम रहते हैं समाज में और हमको कुछ चीज़ों के बारे में जब जानकारी हो जाती है तो हम चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं। हो सकता हमारे घर में भी कोई ऐसा बच्चा हो जो फिलहाल बढ़ रहा हो, तो भाई बढ़ते बच्चों को रोज़ाना कौन सी ऐसी चीज़ें खिलाई जाए जिससे कि उनकी जो ग्रोथ का वक्त है उसमें बेहतर चीज़ें हम उनको खिला पाएँ ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो, यानी बेहतर तरीके से उनको सारे पोषण मिले और उनकी जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो दिमाग का हो रहा हो, हड्डियों का हो रहा हो या उनकी बॉडी पे उसका असर आ रहा हो, तो ताकि वो मजबूत बने और जब मजबूत होंगे शरीर से तो बेहतर सोच पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। तो इसको लेकर के भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल चलेंगे अगले गाने की तरफ, वापस से आएंगे, आने के बाद बातचीत का सिलसिला वापस से शुरू करने वाले हैं। और अभिजीत कहते हैं ऐसे ही रोमांटिक गाना बजाते रहो। ये

0: हाँ जी, तो भाई जो वादा किया था वो तो हम निभाएंगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नहीं निभाते हैं, मतलब यहाँ कोई कंपल्शन नहीं है, यहाँ तो हम मोहब्बत में आपसे हम ऑफ कोर्स सारी चीज़ें बता देते हैं, क्यों राइट तो चलिए भाई, फिलहाल हम जो वादा कर चुके हैं उसको अब निभा लें। और बताएं कि अगर हमारे घर में भी ऐसा कोई बच्चा हो जिसकी एज अभी बढ़ रही हो, सो उसके डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में हम ऐसी कौन सी चीज़ें उसको खिला सकते हैं जो उसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। सो लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो बच्चों को जो बढ़ रहे हैं, अगर रोज़ कुछ चीज़ों को खिलाया जाएगा तो दिमाग और हड्डियों पर इसका असर भी दिखने लगेगा, जिसमें दूध, दही और पनीर सबसे पहले बताते हैं। जी हाँ, सो कैल्शियम, प्रोटीन, ये हमको हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप अक्सर इन दो नामों को तो सुनते ही सुनते होंगे, कैल्शियम के बारे में या प्रोटीन के बारे में। तो इससे क्या होता है ना, ये जो भी कैल्शियम या फिर प्रोटीन से भरपूर खाने हैं, फूड्स, वो हड्डियों को, दांतों को, उनकी ग्रोथ को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। बच्चा बढ़ रहा है, उसके दांत बड़े हो रहे हैं या हड्डियां, उसका विकास हो रहा है, तो उस दौरान कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है एंड प्रोटीन, और ये मिलता है दूध, दही और पनीर से। तो इसलिए ये तीन, दूध, दही और पनीर, काफ़ी ज़रूरी एलिमेंट हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हरी सब्जियों और फल की, तो इसमें क्या क्या मिल जाता है, आयरन, विटामिन और फाइबर, और ये भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता है हमारी बॉडी के लिए। तो अगर कोई ऐसे फूड जिसमें आयरन हो, विटामिन हो, फाइबर हो, उससे भरपूर हो, तो वो क्या करता है, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत शरीर में होती है, एक उसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसको मजबूत बनाता है, एनर्जी देता है और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी ओवरऑल जो हेल्थ है उसमें आयरन, विटामिन और फाइबर चाहिए होता है। अब बात आती है कैल्शियम और प्रोटीन का ज़बरदस्त स्रोत, जिसमें अंडा है, बादाम है और अखरोट है। सो कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर ये जो फूड्स हैं, ये हड्डियों को, दांतों को, इसकी ग्रोथ को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। फिर अगली बात आती है हमारे घर में, किचन में बनने वाली दालों की, या जो साबुत अनाज है, श्री अन्न भी बोलते हैं, या फिर हेल्दी स्नैक्स हैं। सो ये बच्चों को लंबे वक्त तक जो है वो एनर्जी देता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा होता है, खेलना कूदना उसका, बाहर निकलना ये जारी रहता है, तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है और उनकी हेल्थ ग्रोथ में भी मदद कर सकते हैं, जिसमें दालें हैं, साबुत अनाज है और हेल्दी स्नैक्स है। सो अगर हम ये भी खिलाते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेहतर होता है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको हमने बताया, जिसमें हमने आपको सबसे पहले बताया कैल्शियम, प्रोटीन से भरपूर दूध, दही और पनीर के बारे में, जो कि हड्डियों और दांतों की ग्रोथ के लिए होता है। इसके अलावा हरी सब्जियां और फल के बारे में बताया, जिसमें आयरन, विटामिन और फाइबर मिलते हैं, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एनर्जी देता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। अंडे, बादाम और अखरोट के बारे में बताया, जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन होता है, जिसमें आपको हड्डियों और दांतों के लिए मजबूती मिलती है। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया दालें और साबुत अनाज और साथ ही साथ हेल्दी स्नैक्स के बारे में। सो ये बच्चों को लंबे वक्त तक जो है वो एनर्जी देते हैं और उनकी जो हेल्थ ग्रोथ है उसमें मदद भी करते हैं। सो आई होप कि भाई ये छोटी सी ही लेकिन बहुत ज़रूरी जानकारी, क्योंकि कई बार क्या होता ना कि हम शायद अपनी चीज़ों में इतना मशगूल हो जाते हैं, इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। लेकिन अभी जैसे मैंने आपके साथ में ये बातचीत की है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये याद रहने वाला है, और आप जब कुछ बनाने वाली हैं या बच्चों को कुछ देने वाली हैं, तो आपके मन में ये बात आएगी कि हाँ, अगर ये दे दिया जाए तो ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहतर भी है, और हमारे इस बच्चे की जो इसकी एज है उस हिसाब से इसको ये एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना। सो ये अगर आप ज़ाहिर सी बातें समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है। सो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल अगर रखा जाए कि हम क्या खिला रहे हैं, तो फिर ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। फिलहाल आइए चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, वापस से आते हैं और कुछ नई बातों को बताते हैं।

0: टिकट टिकट टिकट ए भैया टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ
1: ये टिकट
0: ये तो पुराना टिकट है।
1: अरे तो रेलगाड़ी कौन सी शोरूम से निकलवा के लाए हो?
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

भाई प्रश्न पे प्रश्न तो बहुत सारे जहन में आते हैं और कहीं ना कहीं आपको भी आते होंगे। वैसे कुछ प्रश्न होते हैं जो बहुत ज़्यादा अलग से होते हैं और कहीं ना कहीं हम सोचने में मजबूर सच में हो जाते हैं, ऑफ कोर्स, कि भैया ऐसा कहाँ पे क्या। वैसे एक चीज़ बड़ा सिंपल सा आपसे पूछना है, अगर इंडिया में जब हमको नहीं बोलना होता है, यानी NONO, नहीं, तो हम क्या क्या बोलते हैं? बहुत ही मतलब मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट बात है, ये आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, और स्पेशली फीमेल, मतलब कोई भी फैमिली में हम करते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ में करते हैं, तो अक्सर जो है हम वो ना को नो नहीं बोलते हैं, हम कुछ स्टेटमेंट्स बोलते हैं, कुछ हमारी लाइंस होती हैं। सो अगर आप ऑफ कोर्स बोलते हैं, और जाहिर सी बात है आप भी बोलते हैं, तो आप भी बता सकते हैं कि आप नहीं को यानी नो को क्या बोलते हैं जो हम इंडियंस होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट नो नहीं बोलते हैं, हम उसके बदले कुछ और लाइंस बोलते हैं। सो वो लाइंस क्या है, फटाफट से आप भी जो है टाइप करके बताइए, मुझे तो लगता है बहुत मज़ेदार होने वाला है, जिसमें पहला स्टेटमेंट तो यही हो सकता है, हाँ देखता हूँ, मतलब नहीं होगा, नहीं होगा।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

हाँ जी, हम तो नो नहीं कह पाते भैया, मतलब हम तो इंडियंस नो कहते नहीं है, सीधे कुछ और बातें करते हैं जिससे हमको और सभी लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि ये काम तो अब ना होगा, जिसमें लेकर के आप लोगों ने बोला भी है, बताया भी है। उससे पहले हम स्वागत करते हैं नाजिया अंसारी, गुड मॉर्निंग, पंडित आशीष शुक्ल जी भी आ गए, गुड मॉर्निंग अदनान जी, और हमारे सभी प्यारे ज्ञानस्थली फैमिली को थैंक यू सो मच। सो महेंद्र लिखते हैं और प्रीति जी ने बोला है नाना सोचेंगे, अच्छा हाँ ये भी एक रिस्पॉन्ड होता है कि हाँ हाँ सोच, नाना नहीं बल्कि हाँ हाँ, नाना कहेंगे तब तो ना हो ही जाएगा, हाँ हाँ सोचेंगे, सोचेंगे का मतलब होता है कि हाँ ये नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होने वाला है। एंड महेंद्र ने कई सारे रिस्पॉन्सेज बताए हैं जिसमें है ठीक है देखते हैं, 90% नो होता है, मतलब 90% ना ही है, और दूसरा है सोच कर बताते हैं पक्का, सो ये पक्का नो है, मतलब सोच कर बताते हैं तो मतलब पक्का नो है, ये 100% नो है। अभी थोड़ा बिजी हूँ भाई, समझ जाओ ना, मतलब थोड़ा सा बिजी हूँ यार, नहीं कर पाऊँगा, मतलब समझ जाओ, और करते हैं कभी कभी नहीं, ये तो मतलब बेहतरीन है, ये कभी नहीं होने वाला है, नेवर वाले में आता है कि हाँ करते हैं कभी। सो यस, बिल्कुल ऑफ कोर्स, ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं हम भारतीयों के, हम लोग ना नहीं बोलते हैं सीधे, कहते हैं देखता हूँ, तो देखता हूँ का मतलब नो है, थोड़ी देर में बताता हूँ, मतलब थोड़ी देर में बताता हूँ तो मतलब नो है, ऑफ कोर्स नहीं है। तीसरा है पूछना पड़ेगा यार, ये तो पूछना पड़ेगा भाई, अब जाहिर सी बात है पूछना पड़ेगा, तो पहला वाला कहेगा रहन दो फिर, और अगर कह भी दिया कि ठीक है पूछ के बताओ तो अच्छा बहाना है, क्योंकि अब तो तुमने पहले ही डाल दिया कि पूछना पड़ेगा, मतलब मुझ पे तो डिपेंडेंट है नहीं, अगर हाँ हुआ तो हाँ, ना हुआ तो ना, एंड ऑब्वियस सी बात है आपका ना ही है। और अगर ये बोल दिया लास्ट स्टेटमेंट जो अक्सर हम लोग बोलते हैं, पक्का नहीं है यार, तो फिर समझ लो कि ये पक्का है कि ये तो ना ही है, मतलब ये तो नहीं ही होना है, पक्का नहीं है यार का मतलब पक्का है कि ये ना ही होना है। सो हम इंडियंस जो इतने प्यारे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि ना को बोल ही नहीं पाते हैं, ना के बदले ये सारे स्टेटमेंट्स बोलते हैं। सो भाई इनमें से आप कौन सा बोलते हैं, आपको भी याद है अपना बोला हुआ कुछ, ऑफकोर्स बोला ही होगा कभी ना कभी आपने भी इस तरह से। सो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया ये सोच करके कि हाँ सच में हम इंडियंस जो है वो सीधे ना तो नहीं बोलते हैं, कुछ ऐसी ही चीज़ों को बोलते हैं या करते हैं। फिलहाल आप भी इसका इस्तेमाल करते हैं ना, देखता हूँ थोड़ी देर में बताता हूँ, पूछना पड़ेगा, पक्का नहीं है यार, है ना, है ना, है ना, है ना?

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
5: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
6: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
6: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
7: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
8: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
8: आज ही कॉल करें 9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
7: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
8: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
9: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अरे भाग्यवान, अरे ईश्वर ने तुम्हें खूबसूरती और बेवकूफी एक साथ क्यों दे दी भाई?
2: खूबसूरती इसलिए कि तुम शादी का पैगाम दो, और बेवकूफी इसलिए कि तुम्हारे पैगाम को मैं मंजूर कर लूं।

सवालों के बीच सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, इतने सारे सवाल जिसका है कई सारा जवाब। लेकिन फिलहाल अब जो आ रहा है सवाल, उसका होगा बस एक जवाब। आज 15 सितंबर है और 15 सितंबर के दिन कुछ तो मनाया जाता है, ऐसे लोगों का दिन जो हमारे आसपास की चीज़ों के लिए बड़े ही ज़िम्मेदार होते हैं, जिनके काम से हमारी चीज़ें बहुत आसान होती है। जी हाँ, तो ऐसे शख्स, ऐसी डेजिग्नेशन वाले शख्स का आज दिन है। तो बाप बताने वाले हैं कि 15 सितंबर को हर साल आखिर कौन सा दिवस, कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये सवाल बड़ा ही सिंपल सा है, उसका जवाब उतना ही सिंपल सा है, क्योंकि जैसे ही मैंने पूछा है वैसे ही आपको अब फटाफट से आपके दिमाग में जो है वो आइडियाज़ आने लग गए हैं कि अच्छा 15 सितंबर को कहीं मेरे दोस्त का बर्थडे तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, दोस्त के बारे में नहीं, ऐसे लोग जो ख़ास उस डेजिग्नेशन के हैं और उनके होने से हमारी लाइफ काफ़ी आसान होती है। तो चलिए अब फटाफट से बताइए कि आखिर हम किन लोगों के दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। हिंट मैंने दे दिया कि उनके होने से हमारी ज़िंदगी आसान है, है ना, है ना इंटरेस्टिंग। यस, तो ज़रा सोचिए, खोजिए और फिर आ करके चैट बॉक्स पर बताइए। आपके बताए जाने का हमको भी है इंतज़ार, इंतज़ार, इंतज़ार।

0: हाँ जी, तो एक बार वापस से ब्रेक के बाद आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। और अभी हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि भाई आज का कौन सा खास दिन है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं 15 सितंबर को एवरी ईयर। चलिए बताते हैं आपके क्या क्या रिस्पॉन्सेज आ गए हैं चैट बॉक्स पर।
1: Now you're listening, Good Morning Koda, with your favorite, Ajay Khan.

भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, हमारे जो ये श्रोता हैं, हमारी इस फैमिली के मेंबर्स हैं, काफी तेजस्वी लोग हैं। इधर हम पूछते हैं, उधर इतना कायदे से प्रॉपर डिफाइंड वे में रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो आया है इसका रिस्पॉन्ड, वो महेंद्र जी की तरफ से आया है। आपने लिखा है राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे। भारत में हर साल 15 सितंबर का दिन राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन भारत के महान सिविल इंजीनियर्स और भारत रत्न से सम्मानित सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आधुनिक भारत के निर्माण, विशेषकर बांधों, बाढ़ नियंत्रण और जल सिंचाई प्रणालियों के विकास में उनके अभूतपूर्व योगदान को सम्मान देने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड संजय जी ने पटना से बताया है राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। ओके। एंड गीता श्रीवास्तव जी ने गोंडा से बताया इंजीनियर्स डे। ऑल राइट। साथ ही महेंद्र ने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। हाँ बेशक, सही बात है। और इसका जो आपने इसको डिफाइन किया है कि विश्व स्तर पर आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, चूंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना है। बेशक। एंड हमारी गीता जी कहती हैं, सर मैं अपने दोनों बेटे को विश कर चुकी हूँ अभी अभी। क्या बात है। सो यस ऑफ कोर्स, आज इंजीनियर्स डे है, यानी 15 सितंबर जो है वो इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा जैसा कि महेंद्र ने भी बताया कि आज लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा ऋषि पंचमी के पंचांग के हिसाब से आज 15 सितंबर 2026 को जो है वो ऋषि पंचमी का पावन व्रत और पर्व भी है। सो आज के ये तीन खास दिन हैं जिसमें इंजीनियर्स की अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई इतना कुछ हमको मिला हुआ है, चाहे वो बाढ़ नियंत्रण के लिए हो, डैम्स के लिए हो, फ्लाईओवर्स हो, ब्रिजेस हो, इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं एंड ऑफ कोर्स इंजीनियर्स का रोल रहता है। सो आज का ये ख़ास दिन उन मेहनतकश, जुनूनी, मेहनती और डेडिकेटेड इंजीनियर्स के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बनाया कि आज हम सब की लाइफ काफ़ी आसान हो गई है। कोर्स इंजीनियर्स के होने से ही इसका असर हुआ है। सो उन सभी को आज का ये 15 सितंबर का दिन बहुत बहुत मुबारक। इसके अलावा लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी ऑफ कोर्स आज के ही दिन मनाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको पता है चाहे कोई भी देश हो, अगर हम किसी देश को देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं कुछ बेहतर कि या यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं, काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, काफ़ी अमन पसंद है और काफ़ी सुकून से हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो जो सिद्धांत होते हैं वहाँ के उसको अच्छे से फॉलो कर लिया जा रहा होता है और इसी वजह से शायद आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी भी देश में हम देखें, सो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से महान नहीं बनता बल्कि एक दूसरे को कोऑपरेट करने से बनता है। और ये कहाँ पर देखते हैं हम, ये हम ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखते हैं, रोड्स पे देखते हैं, जहाँ कहीं लाइंस होती है वहाँ देखते हैं, पब्लिक प्लेसेस, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, रोड और सरकारी दफ्तरों, इन सब जगह देखने से पता चलता है कि हम कितने सिविलाइज्ड हैं और कितना ज़्यादा हम सच में महान हैं। यानी महान बोल देने से महान तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ अगर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक अनजान शख्स को भी हम ऐसी चीज़ों की कोई तकलीफ नहीं देते जितना मुमकिन हो सके, भाई सामने वाले की जो भी चीज़ें हैं वो अपनी आज़ादी से अपनी चीज़ों को करे और किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं होते जिससे किसी को कोई परेशानी हो रही हो, तो डेफिनेटली फिर हम वो महानता का ही काम कर रहे हैं। एंड यस, इसीलिए आज का दिन ये और भी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि आज जैसा कि मैंने बताया भाई इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में मनाया जाता है और ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में सभी देशों में आज का दिन ये मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सभी को इस बात की कहीं ना कहीं जानकारी भी है और इस बात का आभास भी है कि हाँ भाई अगर सिद्धांत जिंदा रखेंगे मूल्यों का और हम अपने सिविलियंस के लिए बेहतर कर पाएंगे तो डेफिनेटली मेरा राष्ट्र, हमारा देश महान बनेगा।
एंड यस, इन मूल्यों को जिंदा रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो भाई, एक बात जो पेरेंटिंग में होती है और वो क्या होती है कि बच्चों को दूसरों के सामने शर्मिंदा करना जो है वो कोई डिसिप्लिन नहीं है, उसके दिल पर असर छोड़ सकता है। जी हाँ, आइए क्या है पेरेंटिंग की ये विधा, चलिए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। यस, और फिलहाल वापस से हम बताने वाले हैं और आप जरूर बने रहिए अपने 89.6 एफएम पर।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

जी अक्सर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो रोज़मर्रा की हम अपने आसपास की जगहों में देखते हैं और अपने घर में भी शायद ये सुनते ही होंगे कि हमारे घर का जो छोटा बच्चा है उसको क्या कहा जाता है, देखो ये कितना बदतमीज़ बच्चा है, तुमसे तो कुछ नहीं होता है, सबके सामने मेरी नाक कटवा दी, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो वाक्य बोले जाते हैं। जब आप कहते हैं कि बच्चा सिर्फ आपकी बात नहीं सुनता, वो खुद के बारे में कहानी बनाने लग जाता है। वो कहानी क्या होती है? शर्मसार होना, बदतमीज़ होना, नाकाम होना, मैं बुरा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बच्चा ये समझने लग जाता है, वो अपने आप को बताने लग जाता है और अपने आप को ट्रेन करने लग जाता है कि हाँ उससे कुछ भी नहीं हो सकता, वो नाकारा है, वो बदतमीज़ है, वो ऐसा ही है। तो हमको जो लगता है कि उसको कह करके शायद हम बेहतर कर देंगे, लेकिन ये एक्चुअल में बिल्कुल उल्टा और पॉइजन का काम करता है, जहर का काम करता है परवरिश में। सो बार बार पब्लिक शेमिंग से बच्चा जो है सोच सकता है शायद मुझ में ही कुछ गलत है। यानी अगर आप किसी के सामने उस बच्चे की बेइज्जती कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं डांट रहे हैं और बदतमीज़ या कोई भी ऐसा वर्ड या ऐसा वाक्य यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चा ये बिल्कुल मानने लग जाएगा कि शायद मुझ में ही कमी है और धीरे धीरे वो अपनी फीलिंग्स और मिस्टेक्स आपसे छिपाने लग जाएगा ताकि आप उसको ना बोलें। तो सबके सामने नहीं, जी हाँ, सबके सामने नहीं। पहले सिचुएशन को संभालिए, जो भी सिचुएशन है, फिर बच्चे से अकेले में बात कीजिए। करेक्ट बिहेवियर क्या है? व्यवहार को सुधारना है, बच्चे पर हमला करना नहीं है। यानी आपका जो अल्टीमेट गोल है वो बच्चे को अच्छी चीज़ों को सिखाना है, ना कि बच्चे पर अटैक करना। ऑफ कोर्स, और तुम कितने बदतमीज़ हो ये नहीं बोलना है, बल्कि तुम्हारा ये बिहेवियर ठीक नहीं था, आओ इसे बेहतर तरीके से करते हैं। गलती गलत है, बच्चा नहीं गलत है। यानी जो उसने गलती किया है वो गलत है, आपका बच्चा नहीं गलत है। तो ये बात कहने के बजाय कि तुम कितने बदतमीज़ हो, बल्कि तुम्हारा ये बिहेवियर ठीक नहीं था और इसे बेहतर तरीके से करते हैं, इस तरह से हम बच्चे को अगर समझाते हैं तो यकीनन बच्चे पर बहुत असर होता है।

और क्या आपके घर में बच्चों को ऐसे बोल दिया जाता है? अगर बोला जाता है तो शायद आज से वो दिन हम चेंज करने वाले हैं और अब ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले हैं।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारीगानसली PG कॉलेज, गोंडा।
3: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं, जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है, और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: मेहमान ने कहा पप्पू से,
6: और बेटा आगे का क्या प्लान है?
7: ज्यादा कुछ नहीं सोचा है अंकल जी, बस आपके जाते ही मैं बिस्कुट खाऊंगा। नमकीन तो आपने वैसे भी नहीं छोड़ी।
8: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। इतनी बेहतरीन बातें आपने बताई है, और देखिए चैट बॉक्स की तरफ चलिए रुख कर लेते हैं। सो और भी मैसेजेस उसके बाद आए हैं। यस ऑफ कोर्स, संजय जी हैं फ्रॉम पटना, गुड मॉर्निंग ऑल दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गीता श्रीवास्तव जी हैं, गुड मॉर्निंग आरजू सर, गुड मॉर्निंग टू यू। अरविंद जी हैं फ्रॉम मनकापुर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अरविंद जी। एंड यस, आपने बोला कि सर जी आज के गाने झक्कास, थैंक यू सो मच महेंद्र की, आपको आज के गाने बहुत पसंद आए। गीता जी ने बोला बिल्कुल सही कहा सर आपने, मैंने कभी अपने बच्चों को किसी के सामने कुछ नहीं कहा, और ना ही अपने बच्चों को किसी दूसरे बच्चे से, उतना ही उनके पापा को भी बता दिया ऐसा नहीं करना है। वाओ, दिस इज़ कॉल्ड पेरेंटिंग, और ये पेरेंटिंग बहुत सीरियस लेने वाला है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये खुद भी फॉलो करने वाला, और घर में कोई भी है तो उनको भी ये समझाने वाला कि आप बच्चे से जो बात करेंगे वो तरीका ऐसा नहीं ऐसा होगा, क्योंकि बच्चे पर इसका सीधा सीधा साफ साफ असर पड़ता है। इसलिए इन बातों का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हम लगता है कि भाई छोटी सी तो बात है, बच्चे को डांट दिया, और अक्सर हम लोग गुस्से में ही करते हैं, गुस्सा अपना होता है, निकालते हैं उस मासूम से बच्चे पे हैं, और कहेंगे नकारा हो तुम, ऐसे हो तुम, वैसे हो। बच्चे को लगता है कि हाँ वो सच में ना कह रहा है, या सबके सामने जानबूझ के करेंगे ताकि वो डरे, उसके अंदर डर पैदा हो, उसके अंदर वो शर्म आए। हम उसको कोशिश करते हैं कि इसको जलील कर दे, ताकि इसको थोड़ा सा लगे कि अरे सबके सामने बेइज्जती हो रही है, लेकिन सोचिए उस पर कितना बुरा असर पड़ता है। हम बच्चे नहीं हैं, हम तो समझदार कहलाते हैं, उसके बावजूद हम उस मासूम से बच्चे के साथ, बच्चे से भी गई गुजरी हरकत कई बार कर जाते हैं। सो पेरेंटिंग एक आर्ट है, अगर इसको थोड़ा सा भी चेंज किया जाए तो इसका लाइफ टाइम बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। और इस बात को जितनी जल्दी हो सके हम समझ लें, क्योंकि हमारे घर के जो बच्चे हैं उनको अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर पेरेंटिंग के साथ ये बढ़ें, ये पले बढ़ें, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन सभी चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना। और इसमें ज़्यादा नहीं, बस छोटी छोटी सी चीज़ है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना। उसकी छोटी सी भी कहानी जब वो खुशी खुशी आके सुनाए तो उसको बहुत ही सीरियसली और बहुत ही हैप्पीली सुनना, अच्छा फिर क्या हुआ। और इसके अलावा बच्चे को जलील नहीं करना, बल्कि अलग ले जाकर के कहना कि बेटा ये तुम्हारा बिहेवियर सही नहीं था, चलो इसको बेहतर तरीके से करते हैं। और उसके बाद बच्चे को ये रियलाइज़ होने लग जाता है कि बच्चा जो कर रहा है वो गलत था, इसके अलावा जो चीज़ करना है वो सही है। तो उसके अंदर सेल्फ़ डिसिप्लिन जैसी चीज़ डिवेलप हो जाती है। लेकिन अगर हम जलील करते हैं तो बच्चे की जो है वो कॉन्फिडेंस तो जाता ही जाता है, एक दिन बच्चा हमारे हाथ से भी चला जाता है क्योंकि इतना आदी हो जाता है और वो मान जाता है कि वो नकारा है। और जब सच में अब उसको बढ़ाने का वक्त आता है, हम ढकेलते रह जाते हैं बच्चे को, तब तक हम इतना डैमेज कर चुके होते हैं कि बच्चे को वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। सो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ये बड़ी विडंबना है। और स्पेशली अपने आसपास के अगर हम बात करें माहौल की, तो शायद कहीं ना कहीं हम लोगों को भी कई बार ऐसे ही कहा गया, लोगों के सामने जानबूझ के कहा गया कि भाई ये सीख लेगा समझ लेगा, लेकिन दरअसल इसका उल्टा कई बार हो जाता है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना ज़रूरी। फ़िलहाल आज का शो कैसा था ये हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं। और फिलहाल आरजे अदनान को दीजिए इजाज़त, अब मिलेंगे आपसे जल्द ही।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: श्वेता, देख रहे हो क्या हो रहा है?
6: क्या हो रहा है, हवा चल रही है?
5: नहीं, रमेश भैया आ गए हैं, ड्राइवर जी हमारे।
6: ओके।
5: और कितनी जोर से हॉर्न बजा रहे हैं, जरा उनको बोलो ना कि आ रही हूँ, बोलो।
6: रमेश भैया रुको जरा, हम आते हैं। और हाँ, आज गाड़ी में ज्यादा लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए गांव।
5: हाँ बिल्कुल, हम कुछ नए लोगों को चल रहे हैं लेकर के। अच्छा ये बताओ श्वेता, गेस करो।
6: जी,
5: एक कोई मेरा बहुत बहुत बहुत खास, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड चल रही है, बताओ कौन से फ्रेंड हो सकते?
6: वो गाँव वाली चाची क्या?
5: नहीं यार,
6: गांव वाली में क्यों जाएंगी?
5: हाँ।
6: यानी यहीं से आप किसी को ले जा रही हैं?
5: और अच्छी बात क्या है कि वो पहली बार गांव जा रही हैं और मेरे साथ जाने को तैयार हो गई।
6: जो इतने दिनों से कह रही थी। हाँ। कि तुम लोग अकेले अकेले चले जाते
5: करो,
6: हो।
5: गेस करो।
6: गेस करना है तो उनका नाम है गीता दीदी।
5: यस, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने, बिल्कुल सही। लो आ गई दीदी।
7: क्या तुम लोग क्या आपस में बात कर रहे हो?
6: वाओ, हमने सुना है कि आज हमारे साथ आप भी चल रही हैं गांव घूमने।
7: हाँ तो इतने दिन से तुम लोग जो है टाल मटोल लगाए हुए थे ना।
5: नहीं
7: आज
5: दीदी,
7: तो मैंने जिद पकड़ ली कि मैं जा के ही रहूंगी।
5: आज ये मान के चलिए कि आप पहली बार गांव जा रही है ना।
7: जी,
5: तो आप चलेंगी तो आपको कितना मजा आने वाला। और गीता दी, आपने तो साड़ी डाल रखी ग्रीन कलर की, बहुत बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल जैसे चंदा।
7: अरे देखो, गांव में बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना।
5: हाँ हाँ हाँ,
7: तो उनके सामने थोड़ा साड़ी में जाना अच्छा लगता है, ये हमारी संस्कृति है।
5: क्या बात क्या बात।
7: और जो तुमने कहा ये चंदा जैसी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हूँ चंदा जैसी नारा।
5: क्या बात क्या बात क्या बात।

0: श्वेता
1: जी जी,
0: अरे ये डिब्बा तुम रखो यार, पैक करो इसको।
1: इस डिब्बे में क्या है बताया नहीं आपने?
0: इसमें मैंने आलू के पराठे रखे हैं और गीता जी भी लेकर के आई हैं। क्या लाई गीता दी, आप बताइए जरा।
2: आज तो मैं खीर बना के लाई हूँ।
0: क्या बात, मजा आ जाएगा। तो हम लोग गाँव चलते हैं और ये सारे सामान उठाकर तुम फटाफट गाड़ी में रखो।
1: ओ, गाँव के साथ साथ आज खाने को भी यम्मी यम्मी मिलेगा।
0: और गीता दी आप एक काम करिए, आइए आगे आइए और आगे वाली सीट पे आप बैठ जाइए। रमेश भैया जरा सा उधर के सकिए।
2: ये क्या भाई, मुझे आगे वाली सीट पे बिठा रहे हो? हम तो आप लोग के साथ बैठना चाहते हैं।
0: तो ठीक है, कोई बात नहीं श्वेता, इनको हम लोग पीछे बिठा लेते हैं अपने साथ। आइए आइए।
1: तो डिब्बे को आगे रख दे क्या?
0: अरे अभी भैया रामकरण भैया भी मिलेंगे आगे।
1: अच्छा हाँ, उनको भी तो जाएंगे हमारे साथ।
0: उनको भी तो लेना है। तो तुम जरा से किसको यार शिफ्ट हो जाओ उधर से।
1: अच्छा अच्छा, जरा सकती हूँ।
0: हाँ किसको? गीता दी
2: जी जी,
0: आइए मैं शिफ्ट हो गई इधर। आइए आप भी।
2: बस बस बस, इतनी जगह मेरे लिए, हाँ इतनी जगह काफी है।
0: क्या बात है। तो ये बताइए जी कि लगता है जीजा जी बहुत पैसे कमाने लगे हैं अब।
2: ये कैसे कहा आपने?
0: इसलिए कि आप इतनी बढ़िया साड़ी पहन के आई है। आपकी ये साड़ी जहाँ तक मुझे लगता है, क्यों श्वेता?
1: हाँ बिल्कुल।
0: एक गेस करो कितने की होगी साड़ी है?
1: ये कम से कम 1000 के तो ऊपर होगी ही,
0: है ना? हाँ। तो मुझे तो लगता है सिल्क की है, तो ये 4000 मान के चलो,
1: 5000 तक होगी। हाँ।
2: ये तो भाई गलत बात है, आप लोग मेरी साड़ी को इस तरह से जज कर रहे हैं।
0: अरे साड़ी,
2: करोड़पति लखपति हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल दी, क्यों नहीं। हम तो भैया यही कहेंगे कि भैया कमाए आपके हस्बैंड नोट और आप ऐसे ही ऐश करें, क्या बात।
2: चलिए आपकी शुभकामनाएं, हमारे साथ है।
0: बिल्कुल है, बिल्कुल है मैम।

0: बैठी दीदी, बैठ गई ना?
1: बिल्कुल आराम से।
0: तो आइए चलिए चलते हैं। श्वेता,
2: हाँ हाँ
0: दी, बहुत प्यारी लग रही है ना।
2: अरे ये तो हम लोगों ने जब गाड़ी में नहीं बैठे थे हम, तभी ये बात सोच रहे थे, और हम दोनों सहेलियां आपस में कितना कह रहे थे, कितनी हाँ, प्यारी लगती है गीता दीदी, और ऊपर से ये साड़ी, ये क्या जच रही है।
0: ये जरा पूछते हैं इनके हस्बैंड के बारे में।
2: हाँ हाँ
3: क्या तुम लोग बात कर रहे हो,
2: आपने हमारी बात सुन ली क्या?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: दीदी ये बताइए, जीजा जी कैसे?
3: अब कहा तो जाए हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है।
0: अरे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है श्वेता।
2: कोई नहीं, हमने तो गाना सुना, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले तो दिल उनका तो बहुत अच्छा है, ये अलग
3: तो
2: की बात है।
3: ये कि तो जोड़ियां ऊपर बनती है, और मुझे भगवान ने बहुत गोरा बना दिया और आपके जीजा जी को काला बना दिया, तो क्या किया जाए।
0: ओह माय गॉड, कोई नहीं जी, मन अच्छा होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, गोरे काले की तो कोई बात ही नहीं है।
2: तो एक गाना मुझे याद आ रहा है।
0: कौन सा गाना?
2: मैं गोरी सैया काले मिले, तो क्या ना गाते हुए चलते हैं।
0: चलिए दीदी ये गुनगुनाते हुए हम लोग गांव पे चलते
3: बिल्कुल,
0: हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: रमेश भैया, हाँ हाँ हाँ, बस बस बस यही रुकिए, यही रुकिए। श्वेता देखना, यही गांव है ना?
1: हाँ लग तो रहा है, और गांव कितना हरा भरा लग रहा है। चलिए उतरते हैं।
0: कितनी साफ सफाई है दी।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मन तो जैसे मयूर हो गया है कि अभी मैं यहाँ पर घूमूंगी फिरूंगी नाचूंगी गाऊंगी भी।
0: क्या बात है, क्या बात है श्वेता।
1: और पूरा साथ देगी आपकी आज श्वेता?
2: बिल्कुल।
0: अच्छा ये भी बात है, आप श्वेता अपने आप को आरजे भी बताने लगी है, जरा देख लीजिए मैम। क्या होता है कि मैम हो गई हैं, आरजे मैम हो रही हैं भाई। क्या बात है, तरक्की होनी चाहिए, अच्छी
2: तो
0: बात।
2: उसकी आवाज इतनी प्यारी है कि वो आरजे लायक है भी।
0: तो खुद ही कह रही है गीता दी, वो खुद ही कह रही है आरजे श्वेता। ओए हेलो।
1: हाँ मेरा ध्यान तो इस गांव को देखने में लगा हुआ है। चलिए पहले जो करने आए हैं वो करते हैं, बातें तो हम गाड़ी में बैठते करेंगे।
0: तो नौकरो नौकरो देखो कोई है घर में क्या? दरवाजा बंद है।
3: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते चाची, कैसी हैं आप?
3: ठीक है भाई। नहीं अपन बताओ।
2: ये वही कजरी चाची जिनकी बात कर रही थी।
0: गाती वाती बहुत यही है कजरी चाची।
3: कजरी है मैडम जी।
2: नमस्ते चाची जी।
3: नमस्ते नमस्ते
0: चाची। ये सब हमारी सखियां हैं, श्वेता को तो आप जानती हैं।
3: हाँ नमस्ते चाची जी। हाँ नमस्ते बहनी, नमस्ते, तो हमेशा आवती।
0: और ये जो है हमारी स्पेशल दीदी है, गीता दीदी है। और चाची ये पहली बार आई हैं गांव।
2: आपके बारे में मैंने बहुत सुन रखा कि आप बहुत सुरीला गाती हैं।
0: हाँ बहुत अच्छा गाती हैं चाची हमारी, और ढोलक भी पीट पीट के गाती हैं भाई।
1: बहुत दमदार गायकी है हमारी चाची।
0: हाँ जबरदस्त चाची है हमारी ये। और चाची आपकी बहू कहाँ है जो बहुत प्यारी सी है?
3: बुलाई, रुको बहनी बुलाई थे। सुनीता।
4: हाँ माँ जी।
3: आओ तनी देखो मेहमान लोग आए हैं।
4: प्रणाम चाची।
0: खुश रहो खुश रहो।
2: कितनी प्यारी बहू है ना।
0: हाँ हाँ दी, ये भी बहुत अच्छा गाती है, थोड़ी पढ़ी लिखी है, गांव में है।
3: अरे बहनी हमार बहुआ बहुत पढ़े लिखे ही।
0: हाँ
3: गांव से ना आए ही, शहर से ही।
0: कौन है शहर से है चाची ये?
3: हम बरेली।
0: बरेली से हैं।
2: हाँ, हाँ। आवाज कितनी प्यारी है इसकी ना,
1: जैसे लग रहा है लता दीदी बोल रही
0: हाँ,
1: है।
0: हाँ सच्ची कह रही हो सच्ची। पर ये तो चाची हमेशा कहा करती थी कि हमारी बहू की जो है वो जुबान बिल्कुल कैंची जैसी है और बहुत बोलती है। हाँ चाची क्या?
3: अरे तो कहा करी बहनी, सहरिया तो है ही, तो सहरिया वाला काम है, जुबान लड़ावा कर थी।
0: हाँ नहीं पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं है। क्यों क्यों अनीता भाभी?
4: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
0: आपका नाम अनीता है भाभी की? सुनीता।
4: सुनीता है।
0: अच्छा सुनीता है। कितना पढ़ा आपने भाभी?
4: मैंने बीए कर रखा है।
0: बीए कर रखा, तो कोई आगे कुछ नहीं करना चाहती?
4: जी कर रही हूँ बीएड।
0: बीएड कर रही हैं। तो आप ये बताइए गांव में आपको कैसा लग रहा है?
4: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: साफ सफाई बहुत रहती है ना?
4: जी।
0: गांव की साफ सफाई देखकर क्यों दी आप बताइए कुछ अपने?
2: बस मैं तो इसकी बातों में खो गई हूँ ना।
0: हाँ।
2: इतना प्यारा बोल रही है कि इसकी आवाज इतनी मीठी लग रही है, लगता सुनते ही जाएं।
0: और मेरी चाची क्या कहती है दी? मेरी चाची क्या कहती है कि इसकी जुबान तो पूरी कैची है।
2: देखिए किसी बात का तर्क देना कैची नहीं कहलाता है, वो लगता है उनको कि ये बराबर बोल रही, लेकिन वो तर्क देती है।
0: हाँ, अपनी बात रखती है
2: और
0: तो इसलिए कैची से जुबान होना कोई बुरा नहीं।
3: लेकिन बहनी ये तो कहा करती कि मेरी कैची से जुबान रुकती ही नहीं।
0: हाँ गाने भी गाती है। तो चलो भाई एक सुनीता की आवाज में गाना भी सुन लेते।
1: हो जाए भाई, हो जाए
0: बिल्कुल।

0: दुल्हन दुल्हन तने चावा हुआ लाओ, मैडम जी को लग का सत्कार करो।
1: जी माँ जी लाई लीजिए, आप दे दीजिए इन लोग को।
2: नहीं नहीं नहीं, आप ही लेकर आइए भाभी, आप ही लेकर आइए। आपसे मिलके अच्छा लग रहा है। और आपने जो ये खेती पाती आपने खुद लगाया, ये सारे पौधे आपने लगाए हैं?
1: जी मेरी माँ जी ने लगाए।
2: अच्छा चाची, आप पे लगे उन्हें बानी का?
0: हाँ बहनी, पूरा दिन खलिए तो रही थे करी का, लड़के बच्चे कोनो है ना है कि बहन साथ खेली
2: ना ही
3: तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बाग बगीचा इतने सुंदर सुंदर आपने फूल लगा रखे हैं, मन खुश हो रहा है देख कर।
2: ये हरियाली कितनी अच्छी लग रही दीदी।
3: और देखिए शहर में है, हम लोग गमलों में थोड़े से फूल लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कितना हरा भरा एकदम बगीचा बना रखा है हमारे, ये क्या नाम है इनका, कजरी चाची।
2: कजरी चाची, कजरी चाची। आपकी बहुत बहुत आपकी बड़वर्गी कर रही है हमारी गीता दीदी।
3: नहीं नहीं ये सच है। हाँ। नहीं मैं कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ, आपने बहुत अच्छा काम कर रखा, आपने अपना आंगन बहुत अच्छे से सजा रखा है।
2: और जानती है दी, इन्होंने मच्छर देखिए, मच्छर ना इसके लिए छिड़काव कर रखा, जाली जैसा लगा रखा, ये देखिए।
0: बहुत मच्छर रहती है मामा, तो हम सब तनी संभाल के सुरक्षित रही थे।
2: चाची जानती नहीं है इससे मलेरिया हो जाता है, क्यों दीदी बताइए।
3: बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो आपने उपाय कर रखा ये बहुत अच्छा, हमारे शहरों में लोग नहीं जानते हैं इसको।
2: हाँ आजकल देखिए कितना फीवर चल रहा है।
3: बिल्कुल अब ये मलेरिया का सीजन ही आ रहा है,
2: मलेरिया का सीजन है और टाइफाइड बुखार हो रहा है आजकल, पानी वानी पीने में। और ये घड़े में आपने पानी भर के रखा है?
0: हाँ बहनी।
2: अच्छा इसमें कुछ डाल भी रखा है, फिटकरी वगैरह जिसे डालते हैं?
0: हाँ बहनी, अरे वो आज दुल्हनिया रखी सी तो पूछो इसका डाली सी।
2: तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी बहू बहुत अच्छी है।
3: और घड़े का पानी तो हमें बेहद पसंद है, हम लोग बचपन में जब अपने गांव जाया करते थे तो ऐसे ही घड़े हमारे यहाँ रखे रहते थे। और श्वेता कितना अच्छा लगता है ना, सोंधापन होता है।
4: मेरा तो मन करता है कि मैं फटाफट सेल्फी ले लूं सभी के साथ।
2: लो कर लो,
4: क्योंकि हम ना बचपन में फ्रिज के पास जब आता था नया नया फ्रिज घर में, तो फ्रिज के पास लोग फोटो खिंचाते थे।
2: हाँ,
4: ये घड़े के साथ तो कोई फोटो नहीं लेता है,
3: घड़े के साथ खिंचाते हैं हम लोग,
2: बिल्कुल खिंचाएंगे बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है चाची, आपका ये द्वारा मोहारा और आपका ये घर और ये गाँव बहुत बहुत मतलब पीसफुली हवा जो कहते हैं,
4: शांति
2: शांति। और कितना मतलब मुझे क्या कहूँ, मेरा मन कहता है मैं यही रह जाऊँ।
3: हाँ तो बिल्कुल, गांव में कितना कोलाहल होता है, एकदम शोर शराबा।
1: आप लोग यही रुक जाइए कुछ दिन के लिए।
2: अरे भाभी कैसे रुक सकते हैं, आपने तो कह दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: लेकिन कोशिश करेंगे हम आया करेंगे बीच बीच में, लेकिन अभी गाना सुन लिया जाए।
0: हम सब तो हंसे बोले थे, तू है का होगा मुँह का बनाए हूँ।
1: माँ जी हमने आपसे कहा था ना कि मेरे लिए एक चुनरी मंगा दीजिए। अरे
2: काहे, क्यों भाई काहे ऐसा करती हैं आप काम, आप कहीं होती तो हम ही लोग ले आते, क्यों श्वेता?
4: और क्या, हमारे पास तो बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है चुनरी की।
2: भाभी आपको कैसी चुनरी चाहिए, किस तरह की चुनरी?
1: जैसे ये पहनी हुई है ना, एकदम चमकीली।
2: अच्छा
3: मेरी साड़ी देख करके।
2: हाँ, चुनरी कह रही है। चलिए चलिए, ये पक्का वादा है, अगली बार जब आऊंगी तो आपके लिए रेड कलर की बहुत प्यारी सी चुनरी लाऊंगी। और तब तक आ जाएगा नवरात्रि का त्योहार,
3: और तब तक ये वाला गाना गुनगुना दीजिए ना।
2: कौन सा?
3: ये चुनरी वाला गाना जो आप गाती थी।
4: हाँ किरण दीदी गा दीजिए।
2: अरे हम का चुनरी बिना तरसौले
4: बलवा, क्या बात, हो जाए ये गाना।
3: बहुत मजा आ गया।

0: चाची।
1: हाँ बहनी।
0: ये बताइए कि ये जो आपका बिटवा है कितना कमाता है महीने में?
1: अरे बहनी 2-4 हजार जोन कमाए ले खेती बेड़ी से।
0: अच्छा, तो ये आपकी बहू संतुष्ट है उससे?
2: अरे मैं संतुष्ट हूँ।
0: संतुष्ट है आप?
2: जी।
0: तो अच्छी बात है, क्यों की दादी?
3: बिल्कुल।
1: अरे चाची, अरे बहनी तेरे मुँह कहा थी बदियम हमसे लड़ा थी।
0: काओ कहती हैं, काओ कहती हैं।
2: नहीं चाची, ऐसा कुछ बात नहीं है।
0: हाँ,
2: अब जैसा जो है वैसे तो हैंडल करना
3: चाची
2: पड़ेगा।
3: आवाज से तो नहीं लगता है कि आपकी बहू लड़ती होगी।
0: सही कहा श्वेता।
1: नहीं बहनी, बदियम कहा थी कि पैसा सब यहाँ बाहर उड़ाए देते हैं और इनके मन के काम ना आए होते हैं।
0: तो ये सुनिए, आप ये गाना सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भाभी जी, आप भी सुनिएगा ये गाना।
2: ठीक
0: है, अब आप सुनिए फिर आप बताइएगा कैसा है।

0: कैसा लगा चाची जी आपको ये गाना कैसा लगा?
1: अरे बहुत नेक लाग बहनी, इनका हाँ? समझाओ कुछ, अब समझ गए हुई हैं।
0: अच्छा भाभी जी आप भी गाती हैं गाना वरना?
1: जी।
0: क्या गाती हैं?
1: भजन वगैरह।
0: अच्छा
1: भजन। अरे बहनी वैसे तो बहुत गावत हूँ, मेहमान लोग आए ही उनके सामने गाए दो एक दो टू भजन। चाची लोग आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप सुना दीजिए ना।
0: एक सुना दीजिए, आप भी सुना दीजिए ना, हम तो सुना ही रहे हैं।
2: आपकी आवाज इतनी मीठी है, हम लोग सुनना चाहते हैं।
1: ठीक है तो हम सुना देंगे आपको। एक तो बहनी जो कृष्णमाला गावत रहो वही गाए दो बहनी। हाँ
0: चाची जी, ये आपकी बहनी है या बहू है?
1: अरे बहनी को वो बहनी कह ली थे, जब मुहाई थे तो बहनी कह ली थे, जब ऋषि आई थे तो दुल्हनिया कह ली थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलिए भाभी जी आपका एक गाना सुनते हैं। हाँ श्री कृष्ण भगवान जी का, हम तो कृष्ण के भक्त हैं भाई।
3: अब सुना दीजिए, फिर हम लोग का भी मन कर रहा है कि कुछ हो जाए भजन टाइप भी।
0: कुछ हो जाए।

0: बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत प्यारा गाया.
1: थैंक यू. क्यों, क्यों? आवाज तो मतलब हम तो दीवाने हो गए इनकी आवाज.
0: अच्छा गीता दी एक बात बताइए, आप हमारे साथ गांव आई, आप गांव में घूमी भी हैं, अभी चाची हमारी घुमा के लाई हैं.
2: कितना अच्छा नाश्ता खाया हमने. हाँ,
0: बहुत अच्छा भाई, भाभी बहुत अच्छा. कैसा आपको कैसा फील?
1: बहुत अच्छा, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था कि पुराने समय में जब हम अपने गांव जाया करते थे.
0: हाँ,
1: नानी के घर, तो ऐसा ही हमने खाना खाया. और ये बहुत दिनों बाद हमें इस तरीके का खाना आज फिर खाने को मिला.
0: क्या बात. तो अब जब जब मैं आपसे कहूंगी कि गीता दी गांव चलना है,
1: बिल्कुल तैयार एकदम.
0: क्या बात है श्वेता,
3: एकदम. फिर तो हम तीनों की जोड़ी भी मजेदार हो जाएगी, और अच्छे अच्छे नाश्ते के साथ गाने बजाने, और देखिए फोटोज कितनी अच्छी अच्छी हमने निकाली है.
0: और ये चाची, ओ चाची.
4: हाँ बहनी.
0: क्या कर रही है, सैतने उतने लग गई, घर वर साफ करने लगी? अरे रुक जाइए.
3: अरे तो अब शाम हो गया है ना, हम लोग अभी इजाजत दीजिए. हाँ, चाची
0: हम लोग निकलने वाले. और एक बात आपको और बताएं कि आपकी बहू ने जो अभी सब साग वाग मिक्स करके ना खेत से तोड़ के लाई है, जो मिक्स करके पकौड़े खिलाए, वो हमारी गीता दीदी को और श्वेता को हम लोग
1: बहुत अच्छे लगे.
4: धन्यवाद.
0: और अच्छी बात
3: ये चटनी,
0: चटनी सिलबट्टे की पीसी है श्वेता.
3: यम यम, बहुत अच्छी
0: मजा आया भाई.
3: और चाची अगर हो तो थोड़ा डिबियम पैक कर दीजिएगा.
0: ये बस ऐसी ही है, जब इसको कोई चीज अच्छी लगती है तो मांग ही लेती है.
4: हाँ. बिल्कुल बहनी, अपने से मैं नहीं मांग ही लेते है, अपन समझती तो मांग लेती.
0: चाची एक बात और बताएं, एक बात और कहें आपसे.
4: हाँ,
0: अभी आम का सीजन गया है, आपने खटाई जरूर डाली होगी, क्यों दीदी?
1: बिल्कुल आप, अरे गांव का आम. हाँ, का अचार
0: तो दीदी थोड़ा लिया जाए है.
4: बिल्कुल बिल्कुल दुल्हन जाओ तो नहीं डब्बम ले आओ. ठीक है, ला रही हूँ.
0: हाँ, एक छोटे छोटे उसमें जो है बांध दीजिए. हम तीन जगह, हम तीन थोड़ा. क्यों श्वेता,
3: आप दो ही रखिए, आप बनाइएगा, हम खुद ही खाने आ जाएंगे आज.
0: चलिए ठीक है, हमारी गीता दीदी बनाने में एक्सपर्ट है. और भाभी आपको मैं बुला रही हूँ, और मैं चाची आपको बुला रही हूँ. जैसे आप लोग आई है ना
4: जी,
0: आप लोग आएंगी क्योंकि हम लोग आए हुए हैं गांव घूमने के लिए, ऐसे आप लोग शहर आइए, हमारा शहर देखिए, और आपको हमारे यहाँ भी मजा आएगा. हम लोग भी साफ सफाई रखते हैं, लेकिन अब ये है कि आपकी तरह तो नहीं है.
4: बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप लोग खूब अच्छे से.
0: हाँ, तो जैसे हमारे पास सुविधाएं होती है और आपके पास सुविधाएं नहीं है, क्यों दीदी?
1: बिल्कुल, अब देखिए गांव में भी कितनी सुविधाएं होने लगी.
0: अब धीरे धीरे होने लगी. अब मिट्टी का घर है, कितना अच्छा, इसको गोबर से सैत वैत के रखा है, कितना प्यारा लग रहा है.
3: चिकना चिकना
0: चिकना, और ये बाहर द्वारा मोहर, और ये फूल पौधे कितना बढ़िया लग रहा है.
3: इतनी शांति शहरों में कहाँ होती,
0: होती है.
4: और गांव शहर में यही तो अंतर है.
0: और एक भी मच्छर काटे तुमने?
3: एकदम नहीं. और वो आम का पेड़ देखिए.
0: हाँ, तो मच्छर ही मच्छर होता है. तो सुनिए, आपकी बहू को कृष्ण के गाने बहुत पसंद है, और चाची आपको भी बहुत पसंद है.
4: हाँ,
0: तो एक गाना मुझे भी याद है, और हमारी दीदी को भी याद है, और श्वेता को भी याद है. तो चलते चलाते, क्योंकि चलने का टाइम है. हाँ हाँ, खटाई यहीं रख दीजिए भाभी, खटाई यहीं रख दीजिए.
4: लीजिए, रख देते हैं.
0: दीदी रख लीजिए आप.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो एक गाना दीदी, जो हम लोग गाते नहीं थे जन्माष्टमी में, ओ मुरली वाले जादूगर यमुना से निकल कर आ जा रही.
4: अरे बहनी बोलिए, इतना नहीं खे गाय तो तनी मन कह दिए.
0: तो यही गनवा आपको सुना के और फिर हम लोग चले चलते हैं.
4: जी,
0: अच्छा भाई, सबको राम राम.
3: राम राम चाची,
1: राम राम चाची, और बहू को ढेर सारा आशीर्वाद.

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9216-9976-9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

क्रोध बन के यहाँ रे, करता साया तेरा देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, बिल्कुल देवा श्री गणेशा। और इसी के साथ हो चुका है आगाज गणेश उत्सव का, यानी कि गणपति महोत्सव का, और आ चुके हैं गजानन, बिल्कुल पंडाल सज गए हैं। और कहते हैं कि हमारे गोंडा में भी, और बाकी मुंबई की बात करें तो वहाँ भी हमारे जो गणपति हैं वो आ चुके हैं, और गणपति महोत्सव जो है वो शुरू भी हो गया है। तो इसी सॉन्ग को, इसी प्यारे से सॉन्ग को हम सुनेंगे और कंप्लीट करेंगे लिसनर्स। लेकिन उससे पहले वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम और वॉर्म वेलकम, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही पसंदीदा और प्यारा वाला प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो भाई कैसे हैं आप सब, और क्या है आप सभी का हाल चाल, फटाफट से बताएं, क्योंकि दिन जो है वो तो है बहुत ही ज़बरदस्त। आज का दिन यानी कि हमारे गणपति बप्पा जो हैं वो पंडाल में विराज चुके हैं, और उनका जो सभी उनके दर्शन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बिल्कुल करता रखवालियां तेरी, जिसकी रखवाली उनका साया करे वो भला क्यों ही डरे। बिल्कुल बहुत ही प्यारा सॉन्ग, और इसे हम पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे, आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं और शुरुआत कर लेते हैं बहुत ही प्यारा सा, जो कि हमारा कहीं ना कहीं दिन है आज का, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं, और उसके बाद फिर हम इस सॉन्ग को पूरा सुनेंगे। सो आइए लिसनर्स चलते हैं सीधे और बताते हैं आपको आज के दिन के यानी कि गणेश उत्सव के बारे में कुछ जानकारियां हैं हमारे पास, कुछ है हमारे गणपति बप्पा को लेकर के, कुछ कहानी है, तो सारी ही चीज़ें बताएंगे। तो आइए करते हैं आगाज़ और बताते हैं आपको, और फिर ये सॉन्ग मैं पूरा पूरा आपको ज़रूर सुनाऊंगी। तो आज ज्ञान असली लाइव में बनी रहने वाली है बप्पा की कृपा, क्योंकि आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी जो है वो भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। ये उनके स्वरूप को कहीं ना कहीं सम्मान देने के लिए मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी का ये जो त्यौहार है ये हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी में कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे पास पेशेंस है यानी कि धैर्य है, और हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तो हम हर चुनौती से ऊपर उठ सकते हैं, यानी कि हर चुनौती हम जीत सकते हैं। ये जो उत्सव है ये मुख्य रूप से जो मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है कि हम आत्ममंथन करें और नई शुरुआत करें। जीवन में आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है उन सभी को मिटा करके सफलता की तरफ जाएं, नई चीज़ों को सीखें, और पहले से कहीं ज़्यादा हम शक्तिशाली बने, यानी कि पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर बने, इसी का संकल्प है जो कि ये सिखाता है कि कहीं ना कहीं हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती, हर चीज़ को नेगेटिविटी के तौर पर नहीं लेना चाहिए। एक नई शुरुआत, एक नया आज हमेशा आप तभी पाते हैं जब आप आत्ममंथन करते हैं, और कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना, एक नई शुरुआत करना और हर सिचुएशन में खुश रहना, यही सिखाता है गणेश उत्सव। और यही है गणेश उत्सव मनाने का कहीं ना कहीं एक मोटिव कह लें, या ये कह लें कि नई खुशी हम लेकर आते हैं। आप देखिए कि अपनी डेली लाइफ में हम परेशान होते हैं, बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारी हमें चिंताएं होती हैं, मन में होता है ये करना है, वो करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन जब बप्पा का दिन आता है और बप्पा को लेकर हम आते हैं और उन्हें पंडालों में विराजमान करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी टेंशन, वो सारी तकलीफ़ें कुछ दिनों के लिए दूर हो जाती हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से उनकी सेवा में हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भी खुश रहते हैं और खुशियां मनाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हम तब करते हैं जब हम बप्पा को लेकर के आते हैं। इसीलिए समय समय पर फेस्टिवल, समय समय पर त्यौहार मनाए जाते हैं, ताकि हम अपनी टेंशन भरी लाइफ से निकल करके थोड़ा वक्त खुश रह सकें, बप्पा का को लाएँ, खुशियाँ मनाएँ, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं बहुत सारा कहते हैं ना, बहुत सारी हम खुशियाँ खुद ब खुद मिल जाती हैं। तो उन्हीं खुशियों को ढूंढना है, अपने भीतर ढूंढना है, और छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना है। और इसी के साथ हमारे चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ कि आ चुके हैं महेंद्र जी, जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया आरजे अंशिका मैम, शुभ दोपहरिया आपको भी महेंद्र जी, कैसे हैं आप। और इसी के साथ जो भी चैट बॉक्स से सुन रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी से, जो रेडियो गार्डन से, उन सभी का स्वागत स्वागत स्वागत, तहे दिल से है स्वागत, क्योंकि आज
गणपति बप्पा की धूम है और आज हम बात भी बप्पा को लेकर के ही कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के पीछे की पौराणिक कथा आखिर है क्या। इसके पीछे की पौराणिक कथा जो है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं संकल्प को जगाती है। अगर पौराणिक कथाओं की माने तो माता पार्वती ने अपने शरीर की ऊर्जा से निर्माण किया था भगवान श्री गणेश का, उसमें प्राण डाले, उनके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी थी उससे उन्होंने भगवान गणेश का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं और सुखकर्ता कहते हैं, यानी कि विघ्नों को हर लेते हैं और आपको सुख ही सुख देते हैं किया था। उन्होंने बालक गणेश को गुफा के द्वार पर पहरा देने के लिए कहा और किसी को अंदर नहीं आने देने का आदेश दिया। जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। अपने कर्तव्य के प्रति बालक की अटूट निष्ठा को देखकर शिवजी क्रोधित हो गए और उन्होंने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को ये पता चला तो वो बहुत दुखी और क्रोधित हो उठी। संसार को उनके क्रोध से बचाने के लिए और बालक को पुनर्जीवित करने के लिए शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर यानी कि गजमुख, इसीलिए उन्हें गजानना यानी कि गजमुख वाले भी कहा जाता है, गजमुख जो है वो बालक के धड़ से जोड़ दिया। इसी प्रकार गणपति का पुनर्जन्म हुआ जिसे शिव जी ने अग्रपूज्य यानी कि सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने और विघ्नहर्ता होने का वरदान भी दिया। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से जो गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ, फिर से उन्हें एक नई जिंदगी, एक नया नाम और एक नई उपाधि मिली जो कि थी अग्रपूजा, यानी कि सभी देवताओं में सबसे आगे और सबसे प्रथम पूजे जाने वाले हमारे विघ्नहर्ता गणेश प्रथम पूज्य, और उन्हें विघ्नहर्ता होने का वरदान भी मिला, यानी कि वो कहीं ना कहीं सभी के विघ्नों को हरते हैं। और ये कथा सिखाती है कि जीवन में कई बार हमारी पुरानी पहचान, पुरानी परिस्थितियां नष्ट हो जाती हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। अपने समझदारी से हमें नई चीज़ों को अपनाकर पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली और सफल बनना चाहिए। यानी कि अगर पुरानी चीज़ें छूट चुकी हैं तो कोई बात नहीं, हम नई चीज़ों को अपनाएंगे और पहले से और बेहतर और बेहतरीन बनकर दिखाएंगे। यही है आज के दिन की कहीं ना कहीं कथा हम कह सकते हैं, सीख कह सकते हैं, एक मोटिवेटिंग मैसेज कह सकते हैं जिसकी कि हम सभी को कहीं ना कहीं ज़रूरत है। सो आइए लिसनर्स, अब चलते हैं, बप्पा का नाम लेते हैं, हमारे विघ्नहर्ता को याद करते हैं और सुन लेते हैं बप्पा का ये बहुत ही प्यारा सा गाना जो है देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। आइए सुनते हैं सॉन्ग, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए सुने, इंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञान असली लाइव में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और हाँ अभी हम और भी बातें करने वाले हैं, लेकिन वो क्या है ये बताऊंगी इस प्यारे से सॉन्ग के बाद। स्टे ट्यून्ड।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में है
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा वाला प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो, हम बात कर रहे थे अभी लेकर के गणेश चतुर्थी को कि बप्पा जो हैं वो आ चुके हैं, आगाज जो है वो हो चुका है गणेश उत्सव का, यानी कि बप्पा के जन्म उत्सव का। और उसकी अभी अभी हमने ये भी जानी कि कहानी क्या है पीछे की, कि कैसे उनका पुनर्जन्म हुआ और उसी में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। आइए अब जानते हैं कि बप्पा के, जिसे कहते हैं ना कि हमारे जो बप्पा हैं उनका जो रूप है, उन रूपों में भी कई सारे मैसेज कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। तो आइए जानते हैं बप्पा के उस रूप के बारे में। सबसे पहले रूप की अगर बात करें तो बात आती है कि हमारे जो बप्पा हैं यानी कि गणपति गजानंद हैं, उनका सिर बड़ा है, यानी कि बड़ा सिर है। तो उनका बड़ा सिर हमें क्या सिखाता है? बड़ा सर सिखाता है बड़ी सोच रखना, यानी कि हमें हमेशा बड़ी और दूरदर्शी सोच रखने की प्रेरणा देता है बप्पा का बड़ा सर। जीवन में सफलता पाने के लिए हमेशा अपनी सोच का, अपनी बुद्धि का विस्तार करना चाहिए, और हमेशा जो कहते हैं ना कि छोटी सोच होती है उससे हमें ऊपर उठकर नया सोचना चाहिए, बेहतर सोचना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ें तो इसके लिए आपको अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। अच्छी रखने के साथ साथ हमेशा अपने विवेक और बुद्धि से ही काम लेना चाहिए, यही सिखाता है बप्पा का बड़ा सिर। और आपने देखा होगा कि बप्पा की मूर्ति में, गणपति की मूर्ति में जो बप्पा की आंखें होती हैं वो छोटी आंखें होती हैं, तो उनकी छोटी आंखें हमें क्या सिखाती हैं? उनकी छोटी आंखें सिखाती हैं फोकस रखना, यानी कि एकाग्रता रखना। अगर आंखें छोटी हैं और गहरी हैं तो ये कहीं ना कहीं एकाग्रता का प्रतीक है कि छोटी आंखों से हम उतना ही देख पाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये कहने का सेंस है कि फोकस से देख पाते हैं। आंखें अगर छोटी हैं तो आप फोकस से देख पाते हैं, इसका मतलब ये निकल करके आता है लिसनर्स कि अपने लक्ष्य के प्रति, यानी कि आपने अपना जो भी गोल बनाया है, आप बड़े होकर जो भी बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, उसके प्रति हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए और किसी भी तरीके के भटकाव से बचना चाहिए, कभी भी अपने गोल से पीछे नहीं हटना चाहिए, यही सिखाता है। कहीं ना कहीं फोकस रहना, हर दिन छोटी छोटी कोशिशें करना जिससे कि आप अपने गोल के और करीब जा सकें, ये सिखाता है बप्पा की जो छोटी आंखें हैं वो हमें यही सिखाती हैं कि अपने लक्ष्य से कभी भी भटकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे जाना चाहिए और बेहतर से बेहतरीन ही करना चाहिए। अब आते हैं कि हमारे पप्पा के जो कान होते हैं वो बड़े कान होते हैं, तो गणेश जी के बड़े कान क्या सिखाते हैं? गणेश जी के बड़े कान सिखाते हैं सहनशीलता और सुनना, यानी कि ये हमें ये मैसेज देते हैं कि एक अच्छा लीडर और सफल इंसान जो होता है वो वही होता है जो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है, अच्छी बातों को अपने अंदर ग्रहण करता है, यानी कि अपने अंदर लेता है, और जो बुरी और बेकार बातें होती हैं उन्हें बाहर ही छोड़ देता है। यही सिखाते हैं बप्पा के बड़े कान कि आप दूसरों की बातों को अच्छे से सुने, और जो आपको लगे कि आपको अपनाना चाहिए उसे अपनाएं, और जो लगे कि हमें छोड़ देना चाहिए उसे छोड़ दीजिए। अब आते हैं कि बप्पा की सूंड जो है वो काफ़ी लंबी और बड़ी होती है। क्या सिखाती है उनकी लंबी और बड़ी सूंड? तो आपको बता दूं कि हाथी की जो सूंड होती है वो बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ सकती है, और ज़मीन पर गिरी हुई छोटी सी सुई को भी उठा सकती है। ये हमें हर परिस्थिति में लचीला बनना सिखाती है। लचीला बनने का मतलब होता है कि जैसे कंफर्टेबल होना कहीं ना कहीं सिखाती है कि परिस्थितियां आपके वश में हैं नहीं हैं, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है, हर सिचुएशन में आप जी लें। कहने का सेंस ये कि हमारे साथ बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं तो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास मिनिमम चीज़ें हैं तो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। हर परिस्थिति में खुद को सामंजस्य से बिठा लेना, खुद को बेहतर बना लेना, यही सिखाती है बप्पा की बड़ी सूंड। और साथ में साथ ये भी सिखाती है कि हर परिस्थिति में जो कुशलता से खुद को संभाल लेता है वही आगे जाता है। यानी कि बेहतर रहना और हर वक्त अपनी बुद्धि का, अपनी सेंसेस का यूज़ करना, यही सिखाती है बप्पा की लंबी और बड़ी सूंड। अभी और भी हैं हमारे पास जिन पर कि हम बातें करेंगे कि क्या सिखाता है बप्पा का बड़ा पेट। भाई उनका पेट जो है वो बहुत ही बड़ा है और सब उन्हें इसीलिए, उनके बड़े पेट के कारण उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। लंबोदर तू विनायका तू सिद्धि विनायका, लंबोदर का मतलब होता है लंबा उदर यानी कि बड़ा पेट। लेकिन क्या सिखाता है बप्पा का ये बड़ा पेट हमें, बताएंगे ये भी बताएंगे। बातें अभी बहुत सारी हैं लेकिन साथ ही साथ भाई बप्पा का उत्सव है तो अगर उसमें गाने नहीं होंगे ना तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा बप्पा का ही सॉन्ग सुन लेते हैं और उसके बाद आते हैं। सुनिए, इंजॉय करिए और बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञान लाइव में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड, बस यू गए और यू आए।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद प्यारा वाला प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानश्री लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। बात हो रही थी कि बप्पा के रूप को लेकर के, कि उनके जो रूप हैं वो हमें किस तरीके से अलग अलग बहुत सारे मैसेजेस देते हैं, बस हमें समझने की देर होती है। तो आइए अब बात करते हैं कि हमारे जो विघ्नहर्ता सुखकर्ता हैं उन्हें लंबोदर क्यों कहा जाता है। लंबोदर तू विनायका तू ही बप्पा मौर्या, क्यों कहा जाता है उन्हें लंबोदर? आखिर क्या सिखाता है बप्पा का बड़ा पेट यानी कि उनका लंबा उधर? तो आइए चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो ये हमें पॉजिटिविटी सिखाता है। पॉजिटिविटी का मतलब होता है कि कैसे ना सहने वाली चीज़ों को, यानी कि कई बार हमारे साथ इतनी बुरी चीज़ें हो जाती हैं कि हमें लगता है कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, उन्हें भी सहना और सहकर बेहतर बनना और हर सिचुएशन में अपनी सोच को किस तरह पॉजिटिव रखना है, ये बप्पा का बड़ा पेट सिखाता है। ज़िंदगी के सभी कड़वे मीठे जो भी अनुभव मिले आपको, और जो लोग भी आपकी आलोचना करते हैं यानी कि आपको उल्टा सीधा बहुत कुछ कहते हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें सीक्रेट रखनी होती हैं, हम किसी से बता नहीं सकते हैं, उन्हें सहन करने की क्षमता को दर्शाता है बप्पा का बड़ा पेट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में आपको जो भी कड़वे मीठे अनुभव मिले, कोई आपको कोई बुरी बात कह दे, कोई ऐसी बात हो, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा है कि ये बात मैं तुमसे बता रही हूँ तुम किसी से मत बताना, तो वो आप कितने देर तक सहन कर सकते हैं, अपने अंदर रख सकते हैं कि अगर आपसे किसी ने कहा है कोई बात सीक्रेट रखने को तो मुझे कितनी देर तक सीक्रेट रख सकते हैं। उसे सीक्रेट रखना, हमेशा अपने अनुभवों को, अपने चाहे वो मीठे हों चाहे कड़वे हों, कोई कुछ भी कह दे, आपकी आलोचना कर दे, उन सभी बातों को सहन करने की क्षमता को दर्शाता है बप्पा का बड़ा पेट। और कहीं ना कहीं ये सिखाता है कि हर परिस्थिति में हंसते हंसते जीना चाहिए और शांत रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई कह दे, मान लीजिए किसी ने आपको कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको फील हो गई, आपको बुरा लगा, तो हमें उस बात पे रिएक्ट नहीं करना है, बस हमें उस बात को थोड़ी देर के लिए महसूस हुआ लेकिन उसके बाद हमें छोड़ देना है और हंसते हुए जीना है, खुश रहना है और अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। उन कड़वी बातों में भी हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ लेनी है, या फिर खुद को बस यही समझाना है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसे जो कहना है कहने दो क्योंकि वो उनकी सोच है, मेरी सोच तो साफ है ना। बस यही सोच करके आपको हर सिचुएशन को टालना नहीं है लेकिन उसे पॉजिटिव वे में लेना है, ना कि उसे हम नेगेटिविटी में लेकर खुद दुखी हो जाएं कि उन्होंने मुझे लेकर ये कहा वो कहा, ये सब कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। यही सिखाता है बप्पा का बड़ा पेट कहीं ना कहीं हमें। तो आइए अब बताते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि बप्पा का जो मुख होता है वो छोटा होता है, उनका मुख छोटा क्यों होता है और वो हमें क्या सिखाता है? तो मैं बता दूँ कि बप्पा का जो छोटा मुँह होता है वो हमें कम बोलना सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि कम और हमेशा सही बातें बोलनी चाहिए, अपनी जो भी एनर्जी है उसको कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए कोई झगड़ा हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, तो उसमें जाकर के आप उसका हिस्सा नहीं बन जाएं कि आप भी गए, आप भी बहस करने लगे, आप भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, बातें करने लगे, ऐसा कुछ नहीं। यही सिखाता है कि हमें अपनी एनर्जी को कभी भी इधर उधर की फालतू बातों में, फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करना चाहिए, कम बोलें लेकिन हमेशा सही बोलें, और हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान लगाना चाहिए और पूरी लगन से अपने काम को करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम ही होता है जो कहीं ना कहीं हमें सही और गलत के स्टेप्स पर ला कर के खड़ा करता है। तो बप्पा का मुख जो है, छोटा मुख, वो हमें कम बोलना लेकिन सही बोलना ये सिखाता है, ये मैसेज देता है। अब आते हैं बप्पा के दांतों पे, कि गणेश जी का आपने हमेशा देखा होगा कि दांत जो है वो टूटा हुआ होता है, तो क्या सिखाता है बप्पा का ये टूटा हुआ दांत हमें? तो मैं बता दूं कि गणेश जी का एक दांत जो टूटा हुआ है वो ये दिखाता है कि अपने गोल के लिए अगर कोई बलिदान भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, और हमेशा हर सिचुएशन से परे जा करके एक निष्ठ होकर कोशिश करनी चाहिए, ये उसका प्रतीक है।
बप्पा का एक दांत हमें यही सिखाता है कि मान लीजिए आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ सोचा हुआ है कि मुझे मेरा ये सपना पूरा करना है, तो अगर एक बड़ा सपना पूरा करने के लिए छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस करने पड़े, अपनी छोटी छोटी खुशियों से समझौता करना पड़े या अपनी रोज़ की चीज़ों में हमें कुछ कटौती करनी पड़े, तो उसके लिए कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बलिदान देकर, छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस कर कर ही हम कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ पा सकते हैं। चलिए इसे मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि मान लीजिए आपने सोचा है कि आपको एक घर लेना है, आपने ऐसा सोचा है कि मुझे एक घर लेना है, उसके लिए आप रोज़ अपनी शॉपिंग में थोड़ा सा कट करते हैं कि नहीं मुझे जितनी चीज़ों की ज़रूरत है बस वही लेना, कुछ घर खर्च में आप कटौती करते हैं कि नहीं इतनी चीज़ों की ज़रूरत है तो इतना ही लेंगे, और धीरे धीरे कर कर आप इतना पैसा अर्न कर लेते हैं कि आप एक घर ले सकें। तो कहीं ना कहीं हमने छोटी छोटी चीज़ों को सेक्रीफाइस किया, लेकिन उन छोटी छोटी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके हमने एक बड़ी खुशी हासिल कर ली। यही सिखाता है बप्पा का टूटा हुआ एक दांत हमें कि अपनी छोटी छोटी एक बड़ी खुशी के लिए, एक बड़े लक्ष्य के लिए अगर छोटे छोटे बलिदान देने भी पड़े तो उनसे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और हमेशा एकनिष्ठ होकर यानी कि एकाग्र होकर मेहनत करनी चाहिए। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, सुनते हैं बप्पा का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, इंजॉय करते हैं। बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बेहद पसंदीदा प्यारा प्रोग्राम ज्ञानस्थ लाइव। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए सुनते हैं बप्पा का ये प्यारा सा भजन और इस भजन के बाद मिलती हूं आपसे लेकर के कहानी बप्पा के एक टूटे हुए दांत की। भाई ये तो सभी जानते हैं कि उनका दांत टूटा हुआ था, लेकिन उसके पीछे की कहानी आखिर क्या है तो ये बताएंगे, लेकिन इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद सुने, इंजॉय करें। स्टे ट्यून्ड।

बिल्कुल, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, बहुत ही प्यारा सा अभी अभी हमने भजन सुना। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा वाला प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए चलते हैं, अभी और भी भजन गणपति जी के सुनना बाकी है, लेकिन उससे पहले आइए कर लेते हैं बात कि आखिर क्या है कारण, यानी कि क्यों गणपति जी का जो दांत होता है वो क्यों एक टूटा हुआ होता है। ये तो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इस पे पीछे की कहानी क्या है ये भी बताते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे की कहानी आखिर है क्या। भगवान गणेश जो थे उनका टूटा हुआ दांत है वो इस कथा के अनुसार है कि महर्षि वेदव्यास जो थे वो महाभारत जैसे महाकाव्य को लिखने के लिए एक ऐसे लेखक की तलाश कर रहे थे, एक ऐसे लेखक को ढूंढ रहे थे जो बिना रुके भी लिख सके और तेज़ गति से भी लिख सके। उन्हें किसी ऐसे की तलाश थी कि जो बिना रुके लिखे और तेज़ी तेज़ी भी लिखे, यानी तेज़ से लिख सके। तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, तो इस काम के लिए वो भगवान गणेश के पास गए और उन्होंने भगवान गणेश से कहा कि तुम्हें मेरे लिए एक महाकाव्य लिखना है। तो वो गणेश जी ने कहा ठीक है मैं लिखूँगा, लेकिन जो व्यास जी थे उन्होंने एक शर्त भी रखी। उन्होंने शर्त रखी कि तुम्हें बिना रुके लगातार मैं जो कथा सुनाता जाऊँगा तुम्हें उसे बिना रुके लिखना है। गणेश जी ने उनकी शर्त मान ली, उन्होंने कहा ठीक है मैं बिना रुके लिखूँगा। लिखना शुरू हुआ, दोनों अपने काम में पूरी तरह डूब गए। गणेश जी की लिखने की गति इतनी तीव्र थी कि महाकाव्य को लिखते लिखते अचानक उनकी कलम जो थी वो टूट गई। अब जब कलम उनकी टूट गई तो काम में बाधा ना आए, इसलिए व्यास जी की लय न टूटे, इसलिए उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपने एक दांत को तोड़ दिया और उसे कलम बनाकर महाभारत लिखना शुरू कर दिया। यही है उनके एक टूटे हुए दांत की कथा, जो कि हमें ये सिखाती है कि कहीं ना कहीं सफलता जो है, सक्सेस जो है, वो आपको ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके पास चीज़ें नहीं है, यानी हमारे पास संसाधनों की कमी है तो हम रुक जाएं। रुकना नहीं सिखाता है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको लगातार कोशिश करनी है और कोशिश करने के लिए अपने रास्ते खुद ही बनाने हैं। ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपका रास्ता रोकेंगी, लेकिन आपको खुद अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। जब हम किसी बहुत बड़े गोल की तरफ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पढ़ाई या करियर की ओर बढ़ते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी बात

उन्होंने सोचा कि अगर उनका दांत टूट गया था, अगर कोई और होता तो वो रुक सकता था कि भाई मैं मेरा दांत क्यों ही तोड़ूं। वो आसानी से कह देते कि मेरे पास जो है पेन नहीं है तो मैं कैसे लिखूं। लेकिन हमारे गणपति बप्पा जो थे उन्होंने बस ये सोचा कि वो किसी भी तरह महाकाव्य को पूरा करें, और इसलिए उन्होंने ऐसा किया भी। और इसीलिए कहते हैं विघ्नहर्ता सुखकर्ता रिद्धि सिद्धि सहित पधारो गौरी पुत्र गणेश। बिल्कुल, तो आज उन्हीं की बातें हैं और आगे भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं बप्पा का एक प्यारा सा भजन। सुनते हैं और मिलती हूँ आपसे इस भजन के उस पार। सुनिए, एंजॉय करिए और बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

गुलशन सा मेरी सरकार आए हैं, बहुत ही प्यारा सा ये गणेश जी का भजन। और आइए अब आगे बढ़ते हैं आपके अपने पसंदीदा प्यारे वाले प्रोग्राम ज्ञान असली लाइव के साथ। और बताती हूँ आपको मैं आगे की बातें। आगे की बातें यानी कि भाई अभी तक हमने गणेश जी को लेकर बहुत सारी बातें की, उनकी एक दंत यानी कि एक दांत को लेकर जो कथा थी वो भी जानी, लेकिन अभी तक हमने उनके वाहन यानी कि मूषक राज पर बात नहीं की। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गणेश जी की बात हो और उनके वाहन यानी कि मूषक राज की बात ना हो। तो आइए बताते हैं कि गणपति जी की जो सवारी है यानी कि हमारे मूषक राज, वो क्या सिखाते हैं। क्या है गणेश जी की सवारी यानी कि मूषक राज की जो कह लें कहानी कह लें या एक मैसेज कह लें जो वो हमें देते हैं, हमें सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो मैसेज ये है कि आपने देखा होगा चूहा बहुत चंचल होता है, वो हर चीज़ को कुतर देता है। अगर हम इसे इस तरीके से लें तो हमारा बिल्कुल हमारे भटकते हुए मन और इच्छाओं की तरह। तो चूहा जो होता है वो चंचल होता है, हर चीज़ को कुतरता है, ठीक उसी तरह यह कहीं ना कहीं एक प्रतीक होता है हमारे भटके हुए मन और ज़्यादातर बढ़ती हुई इच्छाओं का। आज आपने देखा होगा कि हमारा जो मन है वो हमेशा हर चीज़ पे भटक जाता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि छोटी छोटी चीज़ों में हम खुशी पा लेते हैं तो कभी छोटी छोटी बातों पे गम आ जाता है, कभी हमारी इच्छाएं बहुत कम होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी हमें लगता है हमें सब कुछ चाहिए और कभी लगता है कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक इसी तरह मूषक राज इसी का प्रतीक है यानी कि हमारे भटकते हुए और चंचल मन का। कहते हैं जिसने मन को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। कभी भी आपका मन चंचल नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ पे, मतलब कहने का सेंस है कि हर बात के लिए तुरंत मान जाएं हम, हर चीज़ को किसी को सीरियस कुछ ले ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ मन में चंचलता होनी चाहिए वहाँ एक जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए, हमें थोड़ा सिंसियर भी होना चाहिए। यही सिखाता है गणेश जी के वाहन यानी कि मूषक राज का रूप। और आपने देखा होगा कि गणपति बप्पा जो है हमारे वो चूहे के पैरों पर बैठते हैं यानी कि उसे कंट्रोल करते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं। और यही सिखाता है कि हमें हमेशा अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। यानी कि अगर आपकी इच्छाएं आपके कंट्रोल में हैं तो बहुत अच्छी हैं, आप हमेशा आगे जाएंगे, बहुत एक लाइफ को अच्छी तरीके से लेंगे। लेकिन अगर वो अनियंत्रित हैं, आप सब कुछ पा लेना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी पहुंचाएंगी। अगर हम इसे आज के स्टूडेंट्स के लिए लें तो आज के दौर में मोबाइल, सोशल मीडिया, रील्स, वीडियो गेम, ये सारी चीज़ें उसी चंचल चूहे की तरह कहीं ना कहीं होती हैं जो आपके फोकस को पूरी तरीके से कुतर जाती हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा डिस्ट्रैक्शन ना लें, हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन रखें और उसके ज़रिए आगे बढ़ें। यही सिखाते हैं हमें हमारे मूषक राज। तो मैं यही कहती हूँ, यही आप सभी को मैसेज भी देना चाहती हूँ कि इस गणेश चतुर्थी हमें सिर्फ बप्पा से बुद्धि मिले यही प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि उनके स्वरूप से सीख लेकर के खुद के भीतर कुछ बदलना भी है। कहीं ना कहीं फोकस जगाएं खुद के भीतर। और अभी आपने सुना ना कि बप्पा का रूप क्या बताता है, वो सारी चीज़ें सीखें। और कहीं ना कहीं अपनी चंचलता को छोड़ना नहीं है लेकिन उसे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और बहाना जो हम बनाते हैं ना कि मेरे पास ये होता तो वो हो जाता, वो होता तो वो हो जाता, उन सभी बहानों को छोड़ें और अपने हर विघ्न को हरने की और ख़ुद को बेहतर बनाने की ताकत जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप में है। लेकिन उसके लिए ढेर सारी कोशिशें करें और अपने गोल के प्रति कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समर्पित रहें। यही मैसेज है और यही इस गणेश चतुर्थी हमें बप्पा से प्रार्थना भी करनी है कि वो हमें इतनी सारी शक्ति दें ताकि हम ये सब सारा कुछ कर सकें। तो विघ्नहर्ता आए हैं, विघ्नों को हरेंगे और बहुत सारी खुशियां देंगे, लेकिन तब जब आप उन खुशियों को लेना चाहेंगे। सो बप्पा के रूप को लें, उनकी खुशियों को लें, उनसे खुशियां लें और उनसे ढेर सारी खुशियों की प्रार्थना करें। इन्हीं सारी बातों के साथ लिसनर्स आज और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, गणपति उत्सव मनाते रहिए और हमारी बातों को भी याद रखिएगा और रेडियो ज्ञान असली को सुनते रहिएगा। बाय बाय, अब मिलती हूँ आपसे आपके अपने बेहद पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सुन सहेली में।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। सभी श्रोताओं को हमारी सेहत की श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के नए एपिसोड में हम स्वागत करते हैं और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। दोस्तों, अब पोषण माह की बात हो रही है और एनीमिया जैसे संगीन मुद्दों पर चर्चा ना हो ऐसा हम होने नहीं दे सकते, जिसके लिए इस एपिसोड में हम लाए हैं सेहतिया भैया को और साथ एक पोषण विशेषज्ञ को, जो कि हमें बताएंगे बहुत सारी बातें सेहत को लेकर, जिसका मुख्य विषय होगा एनीमिया। सेहतिया भैया, कल मैंने ना एक पत्रिका में रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे काफी चिंतित कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी NFHS 5 2019-21 के अनुसार हमारे देश में एनीमिया 6 महीने से 5 साल तक की उम्र के 67.1% बच्चों में पाया गया है। पढ़कर काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ मुझे, लेकिन इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये बात समझ में नहीं आई।
3: जी हाँ, और ये सच्चाई या परेशान करने वाले आंकड़े यहीं तक सीमित नहीं हैं। आपको पता है 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में 59% से भी ज़्यादा लड़कियां एनीमिक हैं, यानी हर 10 में से 6 लड़कियां। और गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उनमें 52% यानी आधी से ज़्यादा महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं।
1: ओहो, और 5 से 9 साल के बच्चों का क्या, क्या उनके लिए कोई जानकारी है आपके पास?
3: NFHS में इस उम्र के बच्चों का डाटा सीमित है, लेकिन अलग अलग अध्ययनों के अनुसार इस आयु वर्ग के लगभग 23.5% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हो सकते हैं।
1: मतलब ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हम अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा है, लेकिन क्या पुरुष भी एनीमिया से प्रभावित होते हैं?
3: जी हाँ, ऐसे पुरुष जिनकी उम्र 15 से 49 वर्ष के बीच में है, इनमें 25% पुरुष और किशोर लड़कों में लगभग 31% भी एनीमिक पाए गए हैं, यानी यह एक पूरे समाज की समस्या है।
1: तो क्या आपके पास केवल बिहार में ही एनीमिया के आंकड़े हैं?
3: जी हाँ, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 70.4% बच्चे जिनकी उम्र 6 से 59 महीने है और 63.6% गैर गर्भवती महिलाएं और 63.1% गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं। कुल मिलाकर 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में यह दर 63.5% है। किशोरियों में जिनकी उम्र 15 से 19 साल है यह और भी ज़्यादा खतरनाक है और इसकी प्रतिशतता लगभग 65.7% है। पुरुषों में भी 30.8%, यानी जिन पुरुषों की उम्र 15 से 49 साल है उनमें 30.8% है और 35.6% ऐसे पुरुषों में है जिनकी उम्र 15 से 19 साल है।
1: यानी ये एनीमिक है?
3: बिल्कुल सर,
1: बिल्कुल। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो क्या स्थिति है?
3: यहाँ भी स्थिति चिंताजनक है। 67.5% 50.6% गैर गर्भवती महिलाएं और 45.9% गर्भवती महिलाएं एनेमिक हैं। 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में यह 50.4%, किशोरियों में 52.9% और पुरुषों में 22.2% और 28.9% ऐसे पुरुषों में जिनकी उम्र 15 से 19 साल है।
1: सेहतिया भैया, हमारी दोस्त प्रियंका अभी जल्द ही एनीमिया को लेकर के डॉक्टर अमर निधि से मिली थी, सो क्यों ना हम एक एक्सपर्ट के दृष्टिकोण से भी जान ले।
3: अरे नेकी, और वो भी पूछ बिल्कुल सुनते हैं डॉक्टर अमर निधि का एनीमिया पर क्या कहना है।
4: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV/AIDS और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमर निधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
5: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूँ जिससे वो लाभ उठा सकें।
4: हमारा पहला सवाल है कि एनीमिया की समस्या काफ़ी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
5: ये बहुत ही अहम सवाल है। एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी एनीमिया का कारण हो सकती हैं।
4: क्या एनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि एनीमिया है?
5: एनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को एनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें, इसीलिए एनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
4: जी, तो क्या एनीमिया को रोकने या एनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
5: जी हाँ, बिल्कुल। एनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की एनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
4: तो मैम, एनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी एनीमिया पाया जाता है?
5: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी एनीमिया से प्रभावित होते हैं, इसलिए समय समय पर सभी को एनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
4: तो मैम, मतलब एनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
5: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
6: मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है।
5: ये आसान है। परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या PHC में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं।
4: तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि एनीमिया, मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निशुल्क जांच कहाँ होती है? तो इसके बारे में
5: इसको मैं दो भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या PHC या आंगनवाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है तो उसको बार बार आशा और आंगनवाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं। घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है, वो सबसे नज़दीकी सब सेंटर, PHC, CHC या ज़िला अस्पताल में जाएं, तो वहाँ हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं उनको आगे रेफर कर दिया जाता है।
4: जी, तो मैम, जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज़्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है? कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके होता है?
5: जी हाँ, बिल्कुल होता है। ICDS और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलियाँ, स्वास्थ्य की जाँच और सलाह दी जाती है।
6: मैम, एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं?
5: थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है।
4: तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें?
5: आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है लेकिन ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते, इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, मोमोज, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को, ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें, लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें, इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा।
4: एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं, और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में?
5: आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर ANM द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं, 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं, जो भी माँ बनने की आशंका हो सकती है, उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेकिन ये एक ज़रूरी बात है कि स्वयं से इसको लेकर इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती, इसको किसी ना किसी जांच के बाद ही, और जो भी हमारे जो चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे वो हमारे ANM हो, वो एक बार जब उनका पर्ची पर उसको लिख दें उसके बाद ही आशा और आंगनबाड़ी भी उनको आगे उनका वितरण करती है। तो स्वयं से इसको लेना उचित नहीं है।
4: थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे श्रोताओं को काफी बातें बताई और आशा है कि वो सुनेंगे अच्छे से, उसको अमल भी करेंगे। धन्यवाद मैम।
5: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो सुना ना दोस्तों, एनीमिया क्या है और क्यों होता है? तो इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सेहतिया जी से पूछते हैं कि आखिर उनकी भतीजी आरती दीदी को क्या हुआ था। मुझे पता लगा था कि उनको काफी खून की कमी थी और उनके प्रसव में काफी दिक्कत भी हुई थी।
3: हाँ भैया अदनान, क्या ही बताऊं, तुम्हें तो पता है कि आरती कितनी खाने पीने की शौकीन थी। मोमोज हो या चाउमीन, मिठाई हो या सूखे चने, हर चीज काफी शौक से खाती थी। पर इतने चटोरेपन का क्या ही फायदा होता जब वो उसका खाना पौष्टिक ना होता।
1: क्यों भैया, वो तो काफी हेल्दी थी, फिर उनको आखिर किस चीज की दिक्कत हुई?
3: यही चाउमीन और मोमोज खा खा करके उसको लगता था उसका सारा पोषण पूरा हो रहा है, पर गर्भावस्था में ज्यादा नमकीन और तेल वाली चीज खा खा करके उसका ब्लड प्रेशर अलग बढ़ा, ऊपर से एनीमिया यानी खून की कमी। 6 महीने में डॉक्टर ने तो सख्ती से कह दिया था कि अब अगर पोषण का ध्यान नहीं दिया तो प्रसव के समय काफी दिक्कत हो जाएगी।
1: हाँ, तो आपकी भतीजी है ना, समझदार तो होंगी, ख्याल तो रख ही लिया होगा।
3: इसी चीज का तो दुख है, मेरी भतीजी होने के बावजूद डॉक्टर की बातों को अनसुनी करके लापरवाही करती रही और प्रसव के समय कितनी दिक्कतें आई यह बस या तो डॉक्टर साहब जानते हैं या आरती।
1: पर फिर भी बताएं तो ऐसा आखिर हो क्या गया?
3: होना क्या था, प्रसव के समय जहां खून की मात्रा अधिकतम होनी चाहिए उसको जब भी कमी थी, धर्मवीर भैया और मुझे एक एक यूनिट खून देना पड़ा, तब जाके उसकी बेटी का जन्म हो पाया। पर सिर्फ आरती पर असर नहीं पड़ा, अब उस आने वाली नन्ही सी जान भी काफी दुबली पतली खून की कमी से ग्रसित है।
1: हाय, ये तो काफी चिंताजनक मामला हो गया। तो अब कैसी है आरती दीदी?
3: अब तो काफी बेहतर है, हमारा जमाई काफी समझदार है, उसने डॉक्टर से सलाह ली और जिस तरह से डॉक्टर ने खाने पीने का बोला था वैसे वैसे ध्यान रख रहा है। अब चाहे सप्लीमेंट देना हो या टाइम टाइम से पौष्टिक आहार या दवाएं, सब कुछ खुद संभाल रहा है ताकि आरती की हालत सही रहे और उसकी नन्ही परी की भी।
1: ये तो अच्छी बात है काफी। आरती दीदी को सोचना चाहिए था कि पोषण की कमी सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहेगी, हमारी गुड़िया भी झेल सकती है। अच्छा सिहतिया भैया, तो क्या कोई सरकारी रुझान है इस पर?
3: अरे सरकार बहुत सक्रिय है, पोषण अभियान और अनीमिया मुक्त भारत, पोषण पखवाड़ा, सुपोषित पंचायत जैसी योजनाएं चला रही है जहां आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से IFA की गोलियां दी जाती हैं और पोषण पर सलाह भी दी जाती है।
1: मुझे याद है भैया, भारत सरकार ने 2018 में एनीमिया मुक्त भारत यानी AMB अभियान शुरू किया था और इसका उद्देश्य जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर एनीमिया को कम करना है।
3: बिल्कुल भैया, इस अभियान के प्रमुख घटक हैं आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, नियमित डीवॉर्मिंग, व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान, आयरन युक्त भोजन का सेवन बढ़ाना, डिजिटल तरीकों से एनीमिया परीक्षण और उपचार, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव के बाद देरी से कार्ड क्लैपिंग सुनिश्चित करना। इस अभियान का लक्ष्य हर साल एनीमिया की दर को 3% तक कम करना है।
1: सेहतिया भैया, ये योजना तो बहुत ही व्यवस्थित योजना है, और भी क्या कोई कार्यक्रम है?
3: हाँ अदनान जी, और भी कई योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि RKSK। इसमें खास ध्यान किशोर लड़के लड़कियों पर है, खासकर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों पर। इसमें WIFS यानी हफ्ते में एक बार आयरन की गोली, पोषण शिक्षा और परामर्श शामिल है। ऐसे ही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि RBSK बच्चों में 30 बीमारियों की पहचान और इलाज का कार्यक्रम है, जिसमें एनीमिया भी शामिल है, स्कूल और आंगनबाड़ी के जरिए किया जाता है। ऐसे ही स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम यानी कि SHWP ये स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा देता है, जिसमें एनीमिया की जानकारी भी शामिल है। ICDS आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों और माताओं को पोषण मिलता है, जिसमें फोर्टिफाइड खाना और टेक होम राशन भी शामिल है। ऐसे ही पोषण अभियान पोषण 2.0 ये पोषण को लेकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें सभी योजनाओं को जोड़ा गया है और रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। ऐसे ही PM पोषण योजना ये स्कूल के बच्चों को पौष्टिक मिड डे मील देती है, जिससे एनीमिया और अन्य कमियों को रोका जा सके।
1: शुक्रिया भैया, आपने तो इतनी सरलता से और फिर भी इतनी गहराई से ये सब जानकारी दे दिया। सो दोस्तों, अब बात करते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की। ये सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। यहाँ कई और सुविधाओं के साथ अगर हम सिर्फ एनीमिया की बात करें तो आपको कई सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे मुफ्त हीमोग्लोबिन परीक्षण और एनीमिया उपचार, IFA गोलियों का वितरण भी होता है, पोषण संबंधी परामर्श और आयरन युक्त भोजन की जानकारी भी यहीं से मिल जाती है। और तो और, इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के तहत गंभीर मामलों में कैशलेस इलाज भी उपलब्ध कराया जाता है।
3: मैं तो महिलाओं से कहना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा और खुशहाल रहेगा। आप खुद सोचिए कि एक माँ अगर थकी होगी तो बच्चे की देखभाल कैसे करेगी? खेत में काम करने वाली महिला अगर चक्कर खाकर गिर जाए तो फसल कैसे काटेगी? अपना ध्यान आपको खुद ही रखना है।
1: बिल्कुल सही कहा भैया। तो श्रोताओं, सुना आपने, संतुलित भोजन, नियमित रूप से आयरन व फोलिक एसिड की गोलियां, समय समय पर कीड़ा मारने की दवा, किसी भी संक्रमण का इलाज और कोई भी एनीमिया के लक्षण दिखाई देने पर स्वास्थ्य कर्मियों की सलाह मानना ही आपको एनीमिया के दुष्परिणामों से बचा सकेगा।
3: बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है और इसकी शुरुआत होती है सही खून से।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम फिर आएंगे सेहत से जुड़ी नई जानकारी और सुझावों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खून बढ़ाइए, आपका स्वास्थ्य ही आपकी ताकत है। तो साफ है कि जानकारी, जागरूकता और सही इलाज से एनीमिया को हराया जा सकता है।
3: बिल्कुल अदनान जी, और इस लड़ाई में हम सबका साथ जरूरी है, घर में, स्कूल में, पंचायत में और पूरे समाज में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। सो बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया सिंह जी भैया। और दोस्तों, सेहत से जुड़ी ऐसी ही जरूरी बातों के लिए सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
7: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे।
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
7: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
1: प्राथमिकता देंगे।
7: प्राथमिकता देंगे।
1: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
7: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे। और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे। ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे। और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे। ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335484। अब बारी है आपकी।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे समता और साथ में है हमारे अंशिका, यानी कि मैं हूँ आपकी आरजे समता
6: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
5: जी हाँ, तो आपका बेहद पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
7: सुन सहेली।
5: तो भाई, इस प्यारी सी दोपहर में अभी बारिश की बूंदें भी हुई, यानी कि कहा जाता है कि इस बारिश में, यानी नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में कहा जाता है कि अगर आप लोगों ने कुछ भी मांगा तो वो आपका पूरा हो जाता है। ये जो बूंदें है ना, वो आपके बॉडी पर पड़नी चाहिए अंशिका।
6: ओके।
5: आपको पता है ये बूंदें जो होती है ना, ये बहुत ही प्रभावशाली बूंदें होती है। तो ये जो बारिश आज अभी हुई है, क्योंकि 15-16 बता रहे थे
6: जी,
5: आज 15 और 16 के बीच में जो भी बारिश होगी उसको अगर आपने अपनी बॉडी पे ले लिया ना, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और मुझे किसी खास अपने ने कहा था कि वो ग्लास में पानी भर कर रखे
6: जब हम आएंगे तो यूटिलाइज कर लेंगे
5: उसको, फिल्टर करके पिया जाएगा।
6: पिया जाएगा? अच्छा, मुझे लगा कुछ और था।
5: अजीबो गरीब नुस्खे आते हैं लोगों को, कुछ लोगों को।
6: लेकिन देखिए मैम, कितने अच्छे, मतलब ऐसी चीजें यूटिलाइज भी हर कोई नहीं कर पाता है। कोई और होता तो कहता हो जाएगी बारिश, अब मैं तो हूँ नहीं कि भीग पाऊंगा। और लेकिन देखिए कितना उन्होंने
5: कॉन्फिडेंट, कैसे कह रही हूँ कि पाऊंगा ही है, कोई पाऊंगी भी तो।
6: आई मीन टू से वो ठीक है,
5: ठीक है।
6: मैं तो जैसे एग्जाम्पल दे रही थी कि जो भी मतलब हो, गाय
5: उसमें चैट बॉक्स में एक प्यारा सा नाम आ रहा है, किरण कुरकुरे। कुरकुरे। मैं सोच रही हूँ कि अपनी किरण मैम का नाम, जो हमारी गांव की गूंज पे आती हैं, उनका नाम किरण किरण कुरकुरे ही रख देते हैं, उनका नाम किरण किरण कुरकुरे ही रख देते हैं।
6: हाँ, ये तो अच्छा है,
5: वो लिख रही है इंटरेस्टिंग शो। तो किरण कुरकुरे जी, आप हमारे शो को भी एक बार सुने एंड उसको भी कुरकुराइए एक बार, और आप फिर हम लोगों के लिए
6: टेस्ट
5: जरूर दीजिएगा एंड प्यारा सा फीडबैक भी दीजिएगा एंड टेस्ट बताइएगा। तो आइए इस प्यारे से दोपहर में विश कर देते हैं एक साथ एक ही फ्रेम में,
6: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया दोस्तों, और मौसम है मस्त, बारिश हो रही है जबरदस्त, और हम दोनों भी हैं बहुत ही मस्त। और मस्त होने का आज एक राज है, और राज ये है कि अपनी तो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला, ये कभी कभी होता है, और आज हमारा वही दिन है। यानी बाकी दिन क्या होता है ना, कि बाकी दिन हमें समझदार बनना पड़ता है, सिंसियर बनना पड़ता है, समझदारों वाली और सिंसियर वाली बातें भी करनी पड़ती हैं। लेकिन एक दिन होता है जिस दिन हम थोड़ा सा बचपना कर सकते हैं।

0: हैं, थोड़ी सी बच्चों वाली बातें भी कर सकते हैं और बहुत सारी नहीं।
1: क्योंकि दिल तो बच्चा है जी।
0: बिल्कुल, दिल तो बच्चा है जी, और दिल जो है वो बच्चा है, और बच्चे जो है वो बहुत मासूम बहुत क्यूट होते हैं।
1: नहीं, वो जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं अब। गांव की
0: जैसा कि हमारा दिल होता है। सो आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे सबसे पहले वाले सेगमेंट की तरफ, जो कि होती है बहुत ही प्यारी सी कविता।
1: शुरू करें?
0: शुरू करते हैं।
1: रास्ता।
0: रास्ता। तो रास्ता ये
1: आज
0: भी
1: कविता कुछ बड़ी नहीं आई है मेरे पास, मतलब बड़ी आई है, काफी बड़ी आई है आज। 8, 9, 10 जी
0: जी। तो कविता की करते हैं शुरुआत और चलिए आइए। हो रही है रिमझिम रिमझिम रिमझिम बरसात, हो रही है रिमझिम रिमझिम बरसात, कोई तो है जो करता है इस बरसात का भी इंतजार। नहीं मिलते हैं वो, नहीं मिलते हैं वो, नहीं मिलती है बारिश की बूंदें, और सब मिल जाता है तो तुम्हें पता है क्या नहीं मिलता, वो है तुम्हारा साथ जिसके लिए मन तरसता रहता है। नहीं मिलता जो, वो है तुम्हारा साथ जिसके लिए मन तरसता रहता है, कोई तो है जो बस यूं ही हमारे मन में बसता रहता है, कोई तो है जो यूं ही हमारे मन में बसता रहता है। तो आइए चलिए इन्हीं प्यारी सी लाइंस के साथ करते हैं प्यारी सी कविता की शुरुआत, आपकी अपनी प्यारी सी आरजे समता के साथ।
1: सिर्फ हूँ तुम्हारी पोयम में, मैं तुम्हारी पोयम के रास्तों में मैं इतनी खो जाती हूँ ना कि मुझे लगता है कि मैं उसको सुनूं कि अपनी कहूँ कुछ समझ में नहीं आते हैं।
0: नहीं, आप मेरी भी सुने और अपनी भी कहें।
1: जी तो शुरू करें।
0: जी।
1: नन्हे कदम सुनहरी यादें, आज की जो टॉपिक का, आज की जो पोयम का टॉपिक है वो है नन्हे कदम और सुनहरी यादें। सुनहरी यादें इसलिए होती है क्योंकि बचपन की जो यादें होती है ना, हम उसे कभी भी भुला नहीं पाते। आज भी बचपन की बहुत सारी यादें हैं जो हमने अपने दिलों में संजो के रखी हैं, उसे छिपा के रखी हुई हैं, क्योंकि वो यादें, जैसे कहते हैं ना कि बुरी आदतों को हमेशा से हम भूल जाया करते हैं, पर बचपन की वो यादें होती हैं कि हम लोग उसे कभी भी भूल पाते ही नहीं और ना ही भूलना कभी चाहते हैं।
0: बिल्कुल सही।
1: अब जब उम्र बढ़ रही है ना, तो अब बचपन लगता है कि यार वो फिर से क्यों नहीं आ जाए, फिर से लौट आए बचपन, वो बचपन की गलियां, वो बचपन के दोस्त, वो बचपन की किताबें, वो बचपन का घर परिवार जो कि अब बिल्कुल भी नहीं रहा है, और अपनों का साथ, अपनों का प्यार, कोई चिंता नहीं कि बड़े होंगे तो ये होगा, बड़े होंगे तो ये होगा, कुछ नहीं, बस जो चाहिए होता था बस पापा से मांग लेते थे। पर समय बदला, रूप बदला, और पैसे देने के हाथ बदले, हालात बदले, सब कुछ बदल जाता है जब एक इंसान बड़ा हो जाता है। तो नन्हे मुन्ने बच्चों से मेरा आज का यही एक मैसेज है कि अभी जो आपके पास जो लाइफ चल रही है ना नन्हे मुन्नों को, वो जिंदगी उन्हें खुल करके जीने दें उनके पेरेंट्स, और उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करें। क्या पता ख्वाहिश पूरा करने वाला वो इंसान ही ना रहे उनकी लाइफ में। तो अभी जिनके भी लोग हैं ना, जिनके पास बच्चे हैं, आप उनकी हर एक ख्वाहिश, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया करिए। तो इस प्यारी सी बात के बाद शुरू करते हैं आज की पोयम को। कागज की कश्ती और बारिश का पानी, हर रोज नई एक परियों की कहानी, न कल की फिक्र थी न आज का था रोना, बस मिट्टी के घर में खुशियों को पिरोना। वो बचपन के दिन भी कितने कमाल थे, बिना बात हंसना बस यही तो हाल थे, तितली के पीछे वो दीवाने होकर भागना, माँ की थपकी से सोना, गोदी में जागना, एक छोटी सी जिद पर पूरी दुनिया भुलाना, रूठना फिर पल में हंसकर मान जाना, खिलौनों की दुनिया में राजा थे हम, जहां छू भी ना पाता कोई भी गम, जेबें भरी थीं बस कंचों और धागों से, रिश्ते जुड़े थे सब सच्चे अनुरागों से, चोट लगती थी घुटनों पर दिल मुस्कुराता था, हर एक दोस्त बस अपना भाई नजर आता था, धूल से सने चेहरे पर वो सादगी का नूर था, अमीरी गरीबी के भेद से बचपन बहुत दूर था, वक्त की आंधी में वो गलियां कहीं छूट सी गई, कागज की वो नावें जाने कहां डूब सी गईं, दौड़ने लगे हम जिंदगी के इस रेस में, ढूंढते हैं खुद को आज बड़े भेस में, लौट आए काश वो मासूमियत सा साया, जिसने जिंदगी का असली मतलब सिखाया, ढूंढते हैं खुद को आज बड़े के भेस में, जिसने जिंदगी का लौट आए काश वो मासूमियत का साया जिसने जिंदगी का असली मतलब सिखाया।
0: वाओ, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फीलिंगफुल। कहीं ना कहीं जो सारी शिकायतें नहीं कहेंगे, जो सारे मन में कसक होती है ना, जो मैम ने अभी बताई कि काश बचपन लौट आए, बिल्कुल सही कि कंचों और धागों से ही भरा होता था और एक पतंग भी मिल जाती थी ना तो ऐसा लगता था कि खजाना मिल गया।
1: हाँ।
0: और जो कटी हुई पतंग होती थी उसे लेने के लिए हम गली में बेतहाशा भागते थे, ये नहीं देखते थे कि हमने चप्पल पहनी है नहीं पहनी है, सड़क में धूल है क्या है कुछ भी नहीं। बारिश होती थी तो हम बारिश के कीचड़ में, मतलब पानी वहां जमा होता था और हम ऐसे खेलते थे कि लगता था बस ये बस यही एक पल है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हमेशा शरीर से बड़े ही बड़े हो जाएं, मन से बड़े हो जाएं, अपनी जिम्मेदारियों को आप लेने लगे, लेकिन उस बच्चे को कभी मारे नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमारे अंदर का वो बच्चा मैम जिंदा हो जाता है।
1: हाँ।
0: जब हम किसी को कागज में नाव बना के डालते हुए पानी में देखते हैं तो हमारा भी मन करता है लाओ एक नाव हम भी बना लेते हैं। कभी हमारा भी मन करता है कि बच्चों के साथ बच्चे बन के थोड़ी देर खेल ले, अच्छा लगता है। तो अपने उस बचपन को कभी नहीं मारिएगा, क्योंकि जिस दिन वो बचपना खत्म हो जाता है उस दिन इंसान कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो जाता है, और मुझे लगता है कि उतना बड़ा होने की कोई जरूरत नहीं होती, थोड़ा छोटा आप रह सकते हैं।
1: अपने दिल के बच्चे को कभी भी मरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर दिल में जो बच्चा जीवित है ना तो मुझे लगता है कि हर एक चीज को हम किसी भी उम्र में पा सकते हैं। लेकिन जिस दिन वो मासूमियत चली गई, जिस दिन वो भरोसा चला गया, जिस दिन वो एक जिद चली गई किसी चीज़ को पाने की जैसे बच्चे करते हैं, तो हम फिर एक बेसहाय के रूप में फिर हम जीना शुरू कर देते हैं। तो आज की जो पोयम थी तो यही सिखाती है कि जिनके भी घर बच्चे हैं ना उनकी हर एक बात को बहुत ही से कहते हैं ना कि दिल से लेना चाहिए, उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। तो चलिए सुना देते हैं एक प्यारा सा गाना और उसके बाद आते हैं हम आज के बहुत ही प्यारे वाले टॉपिक पर।
0: सो आइए लिसनर्स चलते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
6: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
5: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बच्चों के सेक्शन, यानी कि ट्यूसडे के दिन हम लेकर के आते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें। तो भाई बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, आप सभी को पता है। एंड आज का मेन टॉपिक क्या है वो बताएंगी आपको आरजे अंशिका।
6: तो आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स साइकोलॉजी पर।
5: ओके,
6: आपने देखा होगा कि मनोविज्ञान जो है उसे हम कहते हैं कि ये मानव के व्यवहार का विज्ञान है।
5: हाँ।
6: यानी कि एक इंसान के व्यवहार को देखकर हम ये जान जाते हैं। अगर जैसे कोई मान लीजिए मैम किसी को मेंटल कोई इशू है।
5: हाँ।
6: तो उसका बिहेवियर देखकर हम ये जान जाते हैं कि इन्हें ये मेंटल इशू है।
5: हाँ।
6: क्योंकि वो उसके व्यवहार में पता चलने लगता है। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को जल्दी दिखाते नहीं है, जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, इसलिए हम जान नहीं पाते कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो आज रिवर्स साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है बच्चों पे और कैसे उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम में काम आती है, जो कि होती है पढ़ाई। कई बार होता है ना मैम कि बच्चों को हम कितना भी कहें कि बेटा पढ़ लो, थोड़ा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, लेकिन वो नहीं करते हैं। मतलब जब हम कहते हैं तब वो नहीं करते हैं और बाद में चाहे खुद की मन से बैठ के आधा घंटा एक घंटा जो भी है वो पढ़ाई कर लें।
5: बिल्कुल।
6: लेकिन माँ बाप को ये लगता है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जाम्स आएंगे, नंबर कम आए, या नंबर कम नहीं भी नंबर का इशू नहीं है, हम ये सोचते हैं कि कहीं बच्चे का लॉस ना हो, भाई वो पढ़े मेहनत करे। लेकिन आज रिवर्स साइकोलॉजी आपको बताएगी कि आपको इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। तो सबसे पहले आते हैं बताते हैं रिवर्स साइकोलॉजी होती क्या है। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे आप जैसे जो काम आप करने को कहते हैं वो आप असल में नहीं चाहते हैं कि बच्चा करे, और जो करवाना चाहते हैं वो कहते नहीं हैं। ये है रिवर्स साइकोलॉजी। यानी कि किसी को जैसे मान लीजिए आपको चाय पीनी है, ठीक है, आपको चाय पीनी है, तो किसी से सीधे ये कहने की बजाय कि मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी, आप उसका उल्टा करिए, यार मुझे तो चाय पीने का मन ही नहीं कर रहा है, एकदम बहुत गर्मी लग रही है आज, तो ऐसा करो चाय मत बनाओ, आज कोल्ड ड्रिंक ले आओ, आज चाय पीने का मन बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे तो सामने वाला क्या होता है, उसको लगता है अरे नहीं कोल्ड ड्रिंक कौन पिएगा, गला खराब हो जाएगा, चलो चाय पीते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपने सीधे नहीं कहा, आपने रिवर्स साइकोलॉजी का यूज किया और आपका काम हो गया। ठीक यही हमें बच्चों के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के मन में जो होता है ना वो रिएक्शन होता है। रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर सीधे आवाज़ में उनको कहा जाए कि जाओ चलो बैठो पढ़ाई करो तो वो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से कहिए अरे बेटा रहने दो, अभी मत पढ़ाई करो, एक डेढ़ घंटे एक काम करते हैं, चलो कहीं बाहर घूम आते हैं, और उसके बाद जब आना तो एक डेढ़ घंटे बाद पढ़ लेना, अभी मत पढ़ो, अभी पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, कल टेस्ट है तो क्या हुआ, थोड़े कम नंबर आ जाएंगे, अब तुम्हारे फ्रेंड के ज़्यादा आएंगे, वो तुम्हें कहेगा तुम्हारे कम आएंगे, कोई बात नहीं, पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं है, चलो घूम आते हैं। तो बच्चे के मन में क्या आएगा कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगा तो मेरे फ्रेंड के ज़्यादा नंबर आएंगे और वो मुझे फिर चिढ़ाएगा, तो उसके मन में क्या क्लिक हुआ, वो तुरंत कहेगा नहीं पापा मुझे घूमने नहीं जाना, कल मेरा टेस्ट है, हम जा रहे हैं प्रिपरेशन करने।
5: बिल्कुल।
6: यही होती है रिवर्स साइकोलॉजी, यानी कि जो आप करवाना चाहते हैं आपको रिएक्शन ठीक उसका उल्टा देना है, और फिर जो आपका रिजल्ट होगा वो 100% नहीं 200% आएगा। और इसे हम बड़ों पे भी यूज कर सकते हैं और ये बड़ों पे ज्यादा इफेक्टिव होता है। यानी कि अगर किसी से करवाना है कोई काम तो उसे सीधे ना बोल करके आपको उसे दूसरे तरीके से टेक्निक से उसको बोलना है ताकि आपका काम भी हो जाए और जल्दी से उस पर असर भी ना हो, इफेक्ट भी ना हो। बच्चों के लिए ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल होती है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि कभी भी इसे आदत नहीं बनानी चाहिए।
5: ओके।
6: क्योंकि अगर हम इसे आदत बना देते हैं मैम, जैसे कि मान लीजिए आपने 3-4 बार बच्चे से यही कहा तो उसके मन में क्या आ जाता है कि मम्मी पापा कह रहे हैं तो सही ही होगा।
5: हाँ।
6: फिर धीरे धीरे वो अपने कामों को टालना शुरू कर देता है,
5: बिल्कुल,
6: जो कि हमें नहीं करना है। इसे एक आदत नहीं बनानी है, इसे एक टेक्निक के तौर पर यूज करना है बच्चे को पढ़ाई में मोटिवेट करने के लिए, स्पोर्ट्स में मोटिवेट करने के लिए और उसकी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए। ये सिर्फ एक टेक्निक होती है जो साइकोलॉजी में बहुत बेहद काम आती है और कई बार हम इन्हें जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं उन पर भी यूज करते हैं।
5: जैसे घर में हम कई बार छोटे बच्चों को ऐसी जो कि क्या कहते हैं रिवर्स टेक्निक से काम करवाते हैं, एक्चुअली मैं तो बहुत ही करवाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सीधे मुंह से अगर काम नहीं होगा तो उंगली को टेढ़ी करना ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि घी अगर सीधे मुंह से ना निकले तो उसको टेढ़ा करना ही पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के बच्चे हैं ना कि थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं कि यार सुनो तुमने जो वो बनाई थी ना एक बारी बड़ी अच्छी बनी थी, तो ऐसा है ना हम लोग उसको नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट सैटरडे हम लोग फिर से बनाएंगे, तो तुरंत जवाब क्या आता है, अरे नेक्स्ट वीक क्यों, आज ही बना लेते हैं।
6: हाँ, हाँ।
5: और इनफैक्ट अभी बना लेते हैं
6: और मैं ही बनाऊंगी
5: तो मन में क्या होता है, मैं यही तो चाह रही थी ठीक है। तो ये क्या होता है कि हाँ वो काम भी हो जाता है और मतलब उनको मोटिवेशन भी
6: मिल जाता है।
5: तो मोटिवेशन तो बिल्कुल रियल अच्छा वाला होता है, ऐसा नहीं होता है कि हमने कोई ऐसे झूठ और पॉलिसी करी कि यार तुमने मैगी बड़ी अच्छी बनाई थी तो क्या करेंगे ना इस सैटरडे की नाइट को लोग फिर से बनाएंगे, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग आज ही बनाएंगे और अभी बना देती हूँ, रुक जाओ 10 मिनट के लिए। तो भाई मेरा काम भी हो जाता है, उनकी तारीफ भी हो जाती है। तो ये रिवर्स वाली जो टेक्निक है ना, आई थिंक सभी को अपनानी चाहिए और अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए हर एक काम के लिए। कहते हैं कि जब हम किसी को पुश करते हैं ना किसी अच्छे काम के लिए तो उसमें एक अच्छे काम करने की और ललक पैदा होती है, स्पेशली बच्चों के साथ में। बच्चों के साथ में क्या होता है कि अगर बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, मान लीजिए आपके घर अपने घर के बच्चे की हैंड राइटिंग थोड़ी सी अनबन है, खराब है, कुछ है, तो क्या करना है आपको किसी और बच्चे से उसका कंपैरिजन नहीं करना है, आपको खुद को अपनी स्टोरी बतानी है। क्या बताना है कि पता है मैं जब लिखती थी ना तो मेरी मैम मुझे बहुत अच्छा सा हर एक पेज पे गुड दिया करती थी और जब भी कुछ क्या कहते राइटिंग कंपटीशन होता था, कुछ भी कहीं ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता था तो मैम मुझे ही बुलाती थी। तो आपका बच्चा आपकी बात को कंपैरिजन में नहीं लेगा, आपकी बात को ये सोचेगा ओके मुझे भी अपनी मम्मा की जरा क्या कहते हैं बनना है ठीक है। तो ये जो टेक्निक होती है ना आपके बच्चों को मोटिवेट भी करेगी, पुश भी करेगी और उनकी अच्छी आदतों को आगे लाने के लिए आपको वो खुद को प्रेरित भी करेगी।
6: बिल्कुल, और इसीलिए हमेशा ख्याल रखें और अपने बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। फिलहाल हमें जरूरत है मोटिवेशन की।
5: हाँ।
6: तो आइए चलिए चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9970931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशन्स ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840 3395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुन सहेली विद आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जो कि वापस से हाजिर हो चुकी हैं बातों को बताने के लिए और बहुत सारी बातें करने के लिए।
1: जी
0: अच्छा, क्या होता था मैम कि पहले हम एक थिंकिंग लेके चलते थे कि स्ट्रेस जो होता है वो सिर्फ बड़ों को होता है। हाँ। क्योंकि बड़ों को बहुत सारा काम करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया है। आजकल तो स्ट्रेस बच्चों को भी बहुत हो रहा है,
1: बहुत ज्यादा। और पता है किस चीज का स्ट्रेस?
0: किस चीज का?
1: मुझे याद है ट्विंकल जब छोटी थी, ट्विंकल नहीं छोटी थी, हमारे घर का कोई और एक बच्चा था, वो छोटा था, तो मेरे बाबूजी हुआ करते थे, तो मैं उनके साथ में और वो छोटा बच्चा कोई था, शायद चाची का बेटा था कि बेटी थी, तो हम लोग गए तो डॉक्टर के पास गए, वो बीमार थी तो उसको लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा कि बाबा ने कहा कि ना इसको ना वो इसको टेंशन है, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको टेंशन है, डॉक्टर ने कहा इसको टेंशन है, बोला किस चीज की टेंशन है, बोले टेंशन है, तो उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि मेरा बैग भारी हो गया है कॉलेज और मैं स्कूल कैसे जाऊं, मुझे ये टेंशन है। तो इसका मतलब ये है कि ड्रेस नहीं सूखी है, मेरा होमवर्क नहीं पूरा है, मेरे पास पेंसिल नहीं है, कल पापा ने मुझे चॉकलेट नहीं लेके दिया, तो इस वाली टेंशन को भी हल्के में ना ले आप।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों की शिकायतों को शिकायतें क्या, जब भी वो हमें कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो हम कहते हैं यार ये बच्चों वाली बात है ना, दो दिन में भूल जाएंगे या दो दिन में नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। छोटी छोटी बातें ही बड़ी बन जाती हैं, जैसे कि हमारे लिए होता है। तो आइए बताते हैं इसको कहते क्या है और इसके कारण क्या है। इसे कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि जो हमें लगता है कि बिल्कुल कोई बात नहीं है, वो बच्चे के लिए बहुत बड़ी बन जाती है, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट मैम ने आपको अभी बताया कि बैग भारी हो जाना, मेरा होमवर्क नहीं कंप्लीट है, मुझे चॉकलेट नहीं मिली है, और अब इसमें कुछ चीज़ें जुड़ गई हैं जो कि होती हैं यार वो तो पढ़ने में बहुत अच्छा है,
1: हाँ।
0: मेरे फ्रेंड को इतने मार्क्स मिले,
1: कंपटीशन एक कंपटीशन लेवल हाई हो गया है,
0: हाई हो गया है, मुझे इतने कम मिले, मम्मी मैं दिन भर पढ़ाई करती हूँ लेकिन देखो मुझे इतने कम आए। पहले क्या होता था कि पहले अगर हमारे दोस्त को अच्छे नंबर मिलते थे और हमें उससे कुछ कम मिल जाते थे तो हम सीख लेते थे कि अच्छा ये बताओ यार तुमने पढ़ाई कैसे की, तुम्हारे टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स आए, मुझे भी बताओ मैं भी उसी मेथड से पढ़ूंगी और देख लेना पिछली बार तुमसे ज्यादा।
1: अच्छा, हम लोग के पढ़ाई के टाइम पता है क्या अंशिका होता था, एक कॉम्पिटिशन की भावना ज्यादा होती थी। अगर हम लोग चार फ्रेंड्स थे और अगर फ्रेंडशिप में भी हम लोगों के नंबर ना हम लोग एक दूसरे को छिपाते थे, और हम लोगों में दोस्ती इतनी गहरी थी जो आज तक तस्वीर चलती आ रही है
0: जी।
1: लेकिन पढ़ाई के टाइम पर कोई मतलब किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मतलब अगर एक के नंबर ज्यादा आ गए, अगर किसी का 91 आ गया है तो लगता था यार 90 मेरा क्यों आया, 92 ही आना चाहिए था।
0: बिल्कुल सही
1: कहा आपने। तो इस कंपटीशन की भावना से हम लोगों की दोस्ती पे कोई असर नहीं होता था, पर हम लोग एक दूसरे से एक्सपर्ट बनते जाते थे। मतलब ये लगता था कि हाँ एक कंपटीशन का लेवल हाई होता जाता था
0: क्योंकि हम उसे पॉजिटिविटी में लेते थे। हमें लगता था कि हमारे कोई बात नहीं, हमारे दोस्त को 91 मिले, हमें 92 मिलने चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें उसी के मेथड के साथ मेहनत करनी है।
1: बिल्कुल।
0: आजकल के बच्चों में क्या हो गया है कि वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना शॉर्टकट नहीं लेने चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे शॉर्टकट की तरफ भागते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर दो लकीर है और आपको अपनी लकीर बड़ी करनी है अपनी, तो उसके लिए दूसरे की छोटी नहीं करनी है, अपनी बढ़ानी है। लेकिन आजकल के बच्चों में क्या हो गया है कि हम इसे एनवायरमेंट का असर ही कह ले मैम, कि वो दूसरे की छोटी करने पर आ जाते हैं।
1: छोटी करने के चक्कर में क्या होता है कि वो अपनी तो बड़ी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगले का नुकसान करने के चक्कर में अपना भी नुकसान कर जाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम बड़ों के लिए कहते हैं ना मैम कि नेगेटिविटी सोचोगे तो नेगेटिव होगा, वही माइंडसेट बच्चों के लिए भी होता है कि अगर एक बार उनके मन में जेलसी गलती से भी घर कर गई किसी के लिए भी। कई बार क्या होता है कि हम अपने ही कजन से, अपने ही घर में चाचा मामा बुआ मौसी, इनके बच्चों से जलन करने लगते हैं कि तुमने देखा है अरे यार वो जॉब करता है, तुमने देखा है मेरी मौसी का लड़का 90% मार्क्स लाता है। वो हमारे अंदर अगर एक बार आ गई तो वो फिर कभी नहीं जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए अगर वो 90% लाता है तो आप उसके साथ बैठिए, उसके साथ बातें करिए, उससे पूछिए कि भैया ये बताइए आपको 90% कैसे आते हैं, आप क्या करते हो कि आपको 90% आते हैं, मुझे भी वो करना है, मुझे भी गोल करना है, आप भी सक्सेस हो जाएंगे। अगर किसी को साथ चलना ही है तो हाथ पकड़ कर चलिए ना, धक्का देने से थोड़ी ना होगा कि हम दूसरे को धक्का देकर आगे निकल जाएं।
1: बिल्कुल।
0: इससे तो अच्छा है कि हम दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे निकले, अपना भी अच्छा होगा और उस इंसान का भी।
1: हाँ जी।
0: ये होता है।
1: बिल्कुल, तो इस वाले टॉपिक से खाली यही नहीं एक मतलब बात निकल के आती है कि अगले को हमें छोटा दिखाने के बजाय अपने आप को बड़ा बनाने के लिए भी संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो होता है ना वो शॉर्टकट इंसान ज़्यादा अपनाने लगे हैं, खास करके अब जो मैथमेटिक्स होने लगे हैं अंशिका या फिर एग्जाम्स होने लगे
0: जी मैम,
1: कुछ सिलेबस ऐसे हो गए हैं कि जहाँ पर केवल ऑप्शनल ही होते हैं, बस टिक लगाया खत्म। लेकिन जो हम लोगों ने पढ़ाई की है वहाँ पर ऐसा कुछ भी मैटर नहीं होता था, मतलब आपको उतनी मतलब जैसे लेंथी क्वेश्चंस का आंसर देना है तो देना है, तो सोचो कि जहाँ 4 और 5 पेज के क्वेश्चन में कुछ तो बातें हमारे दिमाग में बैठी होंगी ना, तभी तो हम उसका आंसर कर पाते होंगे ना।
0: आप लिख खुद सकते हैं।
1: हाँ, खुद सोचो कि अगर हमने किसी एक हेडिंग्स को पढ़ा तो उस हेडिंग्स के अंतर्गत हमको उतना वो पढ़ना पड़ा होगा, तभी हम उसके अंदर उसको इतना ज्यादा डीप में हम उसको एक कॉपी के पेज पर उतार पाएंगे। लेकिन आज क्या है, आज है जो दुनिया ऑप्शनल की एंड कहते हैं ना कि वो शॉर्टकट की,
0: शॉर्टकट की बिल्कुल दुनिया है शॉर्टकट की, लेकिन आप क्या चुनना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। हमेशा बेहतर बने, और एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो बेहतर लोगों के साथ रहिए,
1: बिल्कुल
0: उनके साथ जो आपको आगे बढ़ाए, क्योंकि अगर उनके साथ रहेंगे तो हमेशा लाइफ में अच्छा ही करेंगे। मुझे लगता है हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं,
1: बहुत ज्यादा अच्छी बातें कर रहे हैं, और इसीलिए
0: इसका असर है मैम, पता है कि इसका असर है,
1: किसका असर
0: जो है? कल हुआ है उसका असर है।
1: कल क्या?
0: कल हमने कुछ किया ना साथ में एक साथ, तो उसका असर है।
1: अच्छा, तो आरके जी लिख रहे हैं कि वाह अंशिका क्या बात है, मतलब अंशिका बेटा भी अब बड़ी हो गई है।
0: बिल्कुल, मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं किसके साथ रहती हूँ, बड़ा तो मुझे होना ही होगा,
1: असर तो थोड़ा आना ही है,
0: असर तो आना ही है और बहुत अच्छा वाला असर आना है, और मैं तो चाहती हूँ पूरा आ जाए।
1: जी चले
0: चले, तो आइए लिसनर्स चलते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग स्टेडियम।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: Delicious.
4: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
4: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
7: सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
8: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में RJ अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं भाई। आज का जो टॉपिक है वो एनिमल्स के लिए भी है। अभी मुझे किसी ने कहा कि भगवान ने कितनी खूबसूरत चीजें बनाई हैं, तो मैंने कहा भगवान ने हर चीज खूबसूरत बनाई है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर। तो आइए कुछ जान लेते हैं आज के एनिमल्स के लिए, यानी कि पेट एनिमल्स के लिए।
9: तो आज पेट एनिमल्स में हम आपको बताने वाले हैं डॉग्स के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो मौसम चल रहा है बारिश वाला, इसमें उनके पंजों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, और कई बार अगर आप अनदेखी करते हैं तो वो ज्यादा बढ़कर बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन जाता है। तो सबसे पहले आता है कि क्यों होता है। तो आपने देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं वो बारिश में गीली घास पर, या गीली घास पर नहीं भी तो हमारे घर में जो गीली जगह होती है, जैसे बारिश होती है तो बरामदे वगैरह में पानी हो जाता है, तो उसमें वो चलते हैं, जिसकी वजह से उनकी उंगलियों में और बालों की जड़ों में फंगस जम जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ये इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा कारण होता है पसीना आना। डॉग्स को पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उनके पंजों में वो पसीना कहीं ना कहीं जम जाता है, मतलब रह जाता है, और उमस के कारण से ही, ज़्यादा पसीना आने से और उमस के कारण उन्हें पंजों में इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण होता है पंजों में चोट लग जाना।
8: चोट लग जाना।
9: कई बार आपने देखा होगा कि डॉग्स जो होते हैं वो बहुत उछल कूद करते हैं, मतलब घर में कोई भी आ जाता है तो वो सीधा अपने पंजों का यूज़ करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसकी वजह से, जैसे कहते हैं ना, घिस जाते हैं जब पंजे बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से चोट लग जाती है और उन्हें उस चोट का अंदाज़ा भी नहीं होता है, और धीरे धीरे वही चोट इन्फेक्शन बन जाती है।
8: मैंने सुना है अंशिका कि अगर डॉग को सर के ऊपर अगर चोट लग जाए तो मतलब फिर उसकी जो आयु होती है वो कम हो जाती है।
9: जी मैम,
8: सही बात,
9: ऐसा होता है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे सेंसिटिव एरिया जो होता है वो उनके सिर के ऊपर का एरिया होता है, ना उस पर कभी मारें। और जैसे बहुत लोगों को मैंने देखा है आदत होती है ऐसे ऐसे करने की, सर पे मारते रहने की, सर पे, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज होती है उनके कानों को कभी खींचना भी नहीं चाहिए।
8: ओके।
9: क्योंकि अगर आप कानों को खींचते हैं तो उसका सीधा प्रेशर उनके सर पे पड़ता है। आइए अब बात करते हैं कि चौथा कारण जो होता है वो होता है गंदगी। गंदगी यानी कि हाइजीन का ध्यान नहीं रखना। जैसे कई बार होता है कि हम पेट्स को सोचते हैं कि अरे बारिश है क्या नहलाना, रहने दो, बारिश के पानी में तो थोड़ा सा भीगा है, ऐसे साफ कर दो कपड़े से और बाद में हम फिर नहला देंगे। लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि बारिश का पानी उनके पंजों में भी जमा होता है और अगर वो भीग जाते हैं तो वो कानों में भी चला जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का कारण बनता है। इसलिए अगर आपका पेट बारिश में भीग गया है तो उसका ध्यान रखना है, फटाफट से उसको नहलाना है और अच्छे वाले एक जो साबुन आता है, मतलब डॉग्स के लिए स्पेशली आता है, उसको आप लें और उससे नहलाएं। इससे जर्म्स नहीं होते हैं और जो जर्म्स होते हैं वो निकल जाते हैं।
8: कुत्तों में सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है और याददाश्त भी इंसान से ज्यादा होती है, तभी तो किसी इंसान को एक बार पहचानने के बाद वो कभी भूलता नहीं है, ऐसा नागेश्वर जी कह रहे हैं।
9: नागेश्वर जी इस बार आप सही हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है।
8: वो हमेशा से सही रहते हैं भाई, क्यों आप ऐसे बोलते हो कि इस बार वो सही है?
9: हाँ, आप हमेशा सही हैं, बस कुछ शैतानियों को छोड़कर। बिल्कुल सही कहा आपने कि डॉग्स की जो याददाश्त होती है और सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर उन्हें एक बार किसी मतलब इंसान की स्मेल मिल जाती है तो फिर वो उसे स्मेल से ही पहचान लेते हैं। और ऐसे एक महानुभाव हमारे घर में भी मौजूद है।
8: हाँ।
9: जो कि मैम ऐसे होता है, मैं आपको बताऊँ कि अगर कोई नया सामान लेकर जाइए आप, मतलब घर में शॉपिंग करके जाइए, या हम बहुत देर बाद जाएं, जैसे मान लीजिए 2-3 घंटे बाद घर गए, तो वो जीने हैं, मतलब जो सीढ़ियाँ हैं वो सीढ़ियों से ही भौंकना शुरू कर देता है ऊपर से। उसे स्मेल मिल जाती है कि मतलब घर के अंदर कोई
8: आ रहा है,
9: एंटर हुआ है, और ये भी जान जाता है कि घर का मेंबर एंटर हुआ है या कोई बाहर का मेंबर एंटर हुआ है।
8: ऐसे तो कोई तुम्हारे घर आ ही नहीं सकता है, मतलब अगर हमें आना हो तो वो तो मुझे काट खाएगा।
9: नहीं, काटता नहीं है हमारे प्यारे
8: ये
9: से।
8: हर एक डॉग पालने वाले के जो मालिक होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि
9: नहीं,
8: वो काटता नहीं है।
9: सच में नहीं काटता है, बहुत अच्छा है। मतलब हाँ, ये है कि आपके ऊपर चढ़ेगा तो आपको सूंघता है, चढ़ता है ऊपर, लेकिन वो प्यार करता है, वो कभी काटता नहीं है। मतलब हाँ, हम लोगों को उसने कई बार छोटा था तो थोड़ा बहुत वो किया है, बट बाहरियों को नहीं करता है। और एक बार अगर आपसे मिल जाएगा तो फिर दोस्ती हो जाएगी, फिर तो बिल्कुल ही नहीं काटेगा, क्योंकि कुछ हमारे घर में ऐसे हैं।
8: तो यानी कि उससे दोस्ती करने के लिए आना पड़ेगा।
9: बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम, उससे दोस्ती करने आप जरूर आइए। और एक बार दोस्ती हो गई फिर तो इतना परेशान करता है सामने वाले को कि आपको पता नहीं है, मेरे यहाँ बुआ आती है, मासी आती है मेरी, वो कहती है पहले तुम उनको बांध दो जंजीर से, हम तभी आएंगे, नहीं तो हम सीढ़ी से जा रहे हैं वापस, हमको नहीं आना है। हम नीचे से ही, पता है वो लोग नीचे से ही कहती है कि मिल लो, जो तुम्हें गिफ्ट्स लेने हैं ले लो, जो करना है कर लो, हम ऊपर नहीं आएंगे, पहले बांधो। और पता है क्यों? इसलिए नहीं कि काटता है, इसलिए कि वो इतना ऊपर चढ़ता है, इतना उन लोगों के साथ खेलने के लिए परेशान रहता है कि वो लोग बिल्कुल वो हो जाती है, उससे बैठने नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं डॉग्स में ये होता है कि जब वो ज्यादा घुल मिल जाते हैं तो फिर आपको ज्यादा सा परेशान भी करते हैं,
8: और फिर वो आपको क्या कहते हैं ना कि अपना समझने लगते हैं कि
9: हाँ।
8: और ये तो बात बिल्कुल 100% है कि जो क्या कहते हैं डॉग्स में ना सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है और वो स्मेल से पहचान जाते हैं कि ये हमारा मालिक है, ये कौन है या क्या है। कई बार मैंने देखा है, वो बड़ी हंसी वाली बात है ये, कई बार ऐसे ही हुआ कि जो कबाड़ी वाले नहीं होते हैं, जो कबाड़ लेकर के चलाते हुए गली में जाते हैं, और एक बार क्या हुआ कि मैं मतलब आराम से आ रही थी, है ना, तो और मेरे ठीक बगल से एक जो कबाड़ी वाला था, जो वो छोटी वाली लड़िया होती है ना, उसके सामान सारे रखे थे, वो आराम से पीछे से चिल्लाता हुआ आ रहा था। अब कहीं कुत्ते ने वहाँ के जो गली के कुत्ता था एक, उसने वो मतलब सुन लिया होगा, अब वो लगा उसको भौंकने, पूरी गली तक उसको, बाहर तक उसको जब तक निकाल नहीं दिया तब तक वो आराम से डॉग बैठा नहीं जिसके घर का था, वो पूरा गली तक छोड़ने गया।
9: बिल्कुल।
8: और वही मैं आराम से आ रही थी, मतलब मैं तो मेरा रोज का आना जाना है, तो खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन और पता है चोरों को भी वो जल्दी पहचान जाते हैं
9: जी मैम,
8: उनकी आहट से।
9: बिल्कुल।
8: और जहां उनकी आहट उनको पता चल गई तो तुरंत वो भौंकना शुरू कर देते।
9: और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ लोगों को या चीजों को ही नहीं,
8: आशु जी शुभ दोपहरिया,
9: कुत्ते आहट से जानवरों को भी पहचान लेते हैं, दूसरे जानवरों को। अब जैसे मेरे यहाँ ब्लैकी है मैम, तो एक बार हुआ था कि नीचे हमारा कमरा बन रहा था छोटेले चाचा मतलब उनका, तो क्या हुआ कि उसमें बहुत टाइम से मतलब बहुत सालों से बंद था, तो छोटा सा कहीं पे सांप आ गया था उसके डोर में था, यहाँ नहीं है, तो वो ऊपर भी आ गया दरवाजे के थ्रू, मतलब वो दरवाजा निकाल के ऊपर शिफ्ट किया गया तो वो ऊपर भी आ गया, और बहुत छोटा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, तो लेकिन वो नीचे चला गया बेंच के और वहीं बैठा था, और ब्लैकी बार बार उसी बेंच के साइड में भौंक रहा था।
8: अच्छा। और हाँ, तो लोग समझ नहीं पा,
9: और हम लोग सोच रहे थे कि क्यों भौंक रहा है, फिर हम लोगों ने सोचा हो सकता है वो रखा हुआ है बेंच, इसीलिए उसके पीछे पड़ा हुआ है भौंक रहा है। हम लोगों ने उसको नोटिस नहीं किया, हम लोगों ने कहा भौंक रहा होगा भौंकने दो, लेकिन रेगुलर जब वो 1 घंटे तक भौंकता रहा तो मेरे यहाँ छुटेले चाचा ने बोला कि रेगुलर क्यों भौंक रहा है, कोई तो कारण है कि ये रेगुलर उसी बेंच की साइड में भौंक रहा है। तो फिर जब हम लोगों ने देखा तो वो छोटा सा उसके नीचे बैठा हुआ था। थैंक गॉड कि वो ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए छोटाले चाचा ने ही फिर उसको मतलब निकाल दिया। फिर हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं था, बच्चा था मतलब एक तरीके से, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आप सोचिए कि अगर वो बड़ा होता,
8: यानी वो स्मेल ब्लैकी ने, डॉगी ने वो पहचान
9: ली। लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे कि वो बच्चा बड़ा भी बन सकता था अगर वो लंबे टाइम तक एग्जिस्ट कर जाता।
8: नहीं, वहाँ क्यों रहता, वो तो चलता फिरता ना
9: मैम, घर में होता अगर किसी को काट लेता या कुछ भी, क्योंकि छोटा हो या बड़ा हो था तो मतलब जानवर ही। तो इसी वजह, हाँ वो भी सांप
8: फेवरेट है।
9: नहीं, मेरा फेवरेट बिल्कुल नहीं है, मैं उससे बहुत दूर रहती हूँ।
8: अभी मुझे याद आ गया एक इंसिडेंट, हम लोग अभी शिवरात्रि के दिन
9: मत याद दिलाइए,
8: शिवरात्रि के दिन जैसे मंदिर में ये एंटर करने लगी भोले बाबा के मंदिर में, वैसे ही इसने आगे जो वो बैठे रहते हैं उसकी उनकी उसमें क्या कहते हैं
9: वो लेकर के टोकरी में,
8: तो ये इतनी दूर भागी कि वहाँ से पूरा घूम के आई थी उधर से।
9: अरे मैं तो उसके बाद मंदिर में ही नहीं जाना चाहती थी कि पता नहीं और कहाँ लेकर के बैठे।
8: पता है कल श्रृंगार के टाइम पर भोले बाबा के ऊपर रियल का सांप मतलब वहाँ पर बैठाया गया था, रियल नेक मतलब कि क्या है स्नैक बैठाया गया था। कोई बात नहीं, जो अरे तो शिव भगवान के सोचो वो गले में रहता है, जैसे तुम्हारे गले में अभी वो हेडफोन है, सोचो सांप होता है इस समय तो।
9: मैम ये क्या कह रही
8: तो
9: है,
8: सोचो क्या होता मतलब, ये
9: वो भोले बाबा है और हम भोले बाबा नहीं है।
8: हाँ, ये तो बात है,
9: हम इंसान है, तुच्छ प्राणी है,
8: तुच्छ प्राणी।
9: तो इतना सारा बताने का सेंस सिर्फ इतना था कि आपके घर अगर ऐसे पेट्स होते हैं, बिल्ली, यहाँ तक कि बिल्ली भी अगर होती है तो वो स्मेल से दूसरे जानवरों को पहचान लेती है, इसलिए ये एक सेफ्टी पॉइंट भी है, अपने घर पेट्स रखने चाहिए।
8: और जो नहीं रखते हैं वो,
9: जो नहीं रखते उनको मतलब जस्ट ये,
8: और जो रख करके इतना कुछ उनके साथ हम लोग के साथ हो चुका है कई बार, डॉग्स को ऐसे भागते हुए देखा, मरते हुए देखा, तो अब ना दिल टूट सा गया है कि हम उन्हें इतनी प्यार से उम्मीद से लेकर के आते हैं और जब ऐसा कुछ हो जाता है ना तो बड़ा कष्ट होता है।
9: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि दिल से ज्यादा लगाव हो जाता है,
8: लगाव हो जाता है उनसे।
9: तो अगर आपके घर है तो आप उनका ख्याल रखें और जरूर से उनकी बहुत सारी केयर करें। इसी मैसेज के साथ आइए लिसनर्स चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। तो अभी मुझे मिला एक मैसेज जो कि आज मुझे सुन सहेली प्रोग्राम छोटा सा लगा। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू सो मच नागेश्वर जी। गीता जी लिख रही है कि समता मैम आप एक सॉन्ग पहले सुनाती थी, अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है बहुत प्यारा लगता था। अच्छा जी, तो आज ही सुना देते हैं गीता जी, बस छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी सुनते हैं और फिर मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है।
3: तो आइए स्टोरी सुनते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि गणेश उत्सव चल रहा है, यानी कि हमारे गणपति का दिन चल रहा है, तो विघ्नहर्ता सबके विघ्नों को हरें, यही एक हमारी विश है। और इसी के साथ आज हम आपको सुनाएंगे भगवान गणेश और कार्तिकेय की कहानी। तो आइए सुनाते हैं। भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच में एक दिन क्या हुआ कि ज्ञान प्रतियोगिता की कहानी है, जब देवऋषि नारद ने एक अत्यंत दुर्लभ ज्ञान पुस्तिका लेकर आए और दोनों भाइयों ने उसे पाने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने शर्त रखी कि जो भी अपने ज्ञान से भगवान नारद को प्रसन्न कर लेगा उसे ही ये किताब मिल जाएगी। इसलिए आपको अपनी सबसे सुंदर कला और सरल ज्ञान का एक प्रतिबिंब प्रस्तुत करना है। जो भी भगवान नारद के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा और देवऋषि जिसे चुनेंगे उसे उपहार स्वरूप ये ज्ञान पुस्तिका दे दी जाएगी। ये सभी जानते थे कि भगवान गणेश जो हैं वो तो बुद्धि में प्रथम हैं ही, जैसे उन्हें बुद्धिदाता कहा जाता है। तो सबको ये उम्मीद थी कि भगवान गणेश जो है वो जीत जाएंगे जी। कला प्रतियोगिता शुरू हुई। कला प्रतियोगिता में करना क्या था कि एक उनको पुस्तिका दी गई थी जिसे भरना था, और वो सिर्फ एक पेज की पुस्तिका थी। और उसे भरना कैसे था कि ऐसे शब्द हों जिनसे जो आप कहना चाहते हैं वो आपको अगले को समझ में भी आ जाए। लेकिन उन्होंने क्या कहा भगवान शंकर ने कि शब्द सिर्फ 5 होने चाहिए, यानी कि आपको अपना कोई ख्याल बताना है उसमें लेकिन सिर्फ 5 शब्दों में, और उसका अर्थ सामने वाले को बिल्कुल क्लियर समझ में आए, यानी कि देवऋषि नारद को। तो ठीक वैसा ही हुआ, 5 शब्दों में लिखना शुरू किया गया। और जब भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश दोनों ने लिख लिया तो भगवान शंकर जी ने कहा महादेव ने कि लाओ अब मुझे इसे पढ़ना है और देवऋषि नारद ही चुनेंगे कि क्या होता है। तो भगवान गणेश जो थे उन्हें ये पता था कि वो जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई कार्तिकेय को जता दूं, क्योंकि कार्तिकेय भगवान को वो ज्ञान पुस्तिका पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। इसलिए भगवान गणेश ने उसमें 5 शब्दों की जगह सिर्फ 1 शब्द लिखा और वो था ओम। उन्होंने 5 शब्द नहीं लिखे, उन्होंने 1 शब्द लिखा
2: और ये संपूर्ण रूप से इसमें हाँ, सब कुछ समाहित है।
3: लेकिन भगवान कार्तिकेय ने 5 शब्द लिखे जो कि उस प्रतियोगिता में वैसा ही होना था। जब नारद भगवान ने वो पुस्तिका देखी तो उनके समझ में आ गया कि भगवान गणेश चाहते हैं कि भगवान कार्तिकेय जीते, इसलिए उन्होंने कार्तिकेय के जो कि 5 शब्द थे उन्हें मूल दिया और उन्हें जिता दिया। उन्होंने घोषणा की कि कार्तिकेय जीतते हैं और उन्हें वो ज्ञान पुस्तिका मिलती है, और जिसके बाद उन्हें वो ज्ञान पुस्तिका मिल गई और वो बहुत खुश हुए
2: जी।
3: तो ये कहानी लिसनर्स हम बच्चों को ये सिखाती है कि कई बार दूसरों की खुशी के लिए हारने में भी अच्छाई होती है।
2: exactly.
3: जहाँ बात अपनों की हो वहाँ हारने में कोई हर्ज नहीं।
2: बिल्कुल। तो ये प्यारा सा जो कि अभी एक कथा के दरमियान एक स्टोरी निकल के आई है, आइए सुना देती हूँ, जो कि अभी अभी गीता जी ने ये सॉन्ग भेजा था तो मैंने सोचा आज ही सुना देते हैं। एंड नागेश्वर जी ने कहा कि जब वो मॉर्निंग में आएंगी तब सुनाऊंगी, लेकिन आइए सुन लेते हैं इसकी दो तीन लाइनें और कल इसको फुल सुनाऊंगी, ठीक है गीता जी।

0: बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है एंड मैं अभी से अंशिका को कह दे रही हूँ कि मुझे याद दिलाएगी कल ये गाना अजनबी कौन हो तुम, ये कल स्टार्टिंग में ही मैं सुनाऊंगी, लेकिन आपकी शर्त है कि हमारी एक शर्त है कि आप कल आप स्टार्टिंग में ही सुन सहेली में आ जाएंगी, ठीक है गीता जी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना,
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
6: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
5: सच में, क्या खास है वहाँ?
6: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
5: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
6: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
5: और फोटोग्राफी वगैरह?
6: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
5: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
6: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
5: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी यात्रीगण। कृपया ध्यान दें, अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि घड़ी में वक्त हो चला है 3:05 बाद स्टूडियो क्लॉक, और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्थली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आशुरती, मौजूद हूं आप सभी के साथ। और प्रोग्राम का वक्त हो गया है, यानी आपके फरमाइशों का वक्त हो चला है, जिसका नाम है कॉल ट्यून गोंडा, आपके कॉलिंग वाला प्रोग्राम, जिसमें आप करते हैं कॉल 6393316429 पर भेजने के लिए अपनी फरमाइशें। तो भैया, आज की फरमाइशों का जो सिलसिला है वो आइए शुरू करते हैं, और पहली फरमाइश को हम थोड़ा सा ट्यून करते हैं। पहली फरमाइश आई है हमारे सुनील जी की तरफ से, और वो सुनना चाहते हैं दूल्हे राजा फिल्म से बहुत ही जबरदस्त हिट गाना अखियों से गोली मारे, गोविंदा का सॉन्ग है। तो थोड़ी सी एनर्जी बरकरार रखिएगा, क्योंकि भैया यहीं से आज आपकी एनर्जी को हम खर्च करवाने वाले हैं। तो जिनकी फरमाइशें नहीं आई हैं वो अपनी फरमाइश भेजें और एंजॉय करते रहें।

और आप सुन रहे हैं सुनील जी की फरमाइश, अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल, लड़की अखियों से गोली मारे सोनू निगम, और जसपिंदर जी की आवाज में समीर साहब के लिखे बोल थे। और आपको पता है ये गाना सोनू निगम साहब से पहले किसके पास जाने वाला था? एनी गेस, अगर आप गेस कर सकते हैं तो चैट बॉक्स में बताइएगा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं बाद में बताती हूँ आपको ये गाना सोनू निगम साहब से पहले कौन गाने वाला था। फिलहाल वक्त है अब आपके चैट बॉक्स की तरफ नजर दौड़ाने का, यानी कि हमारे पास कुछ मैसेजेस, कुछ पैगाम आ चुके हैं, कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं। संदेश तो आया नहीं, संदेश ही सही। आइए मिठाइयों के सीजन में हम थोड़े से प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट से मैसेजेस को ले लेते हैं, जो कि हमारी गीता जी की तरफ से है। नागेश्वर धाकड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत करते हैं। नाजिया अंसारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो लिख रही हैं गुड आफ्टरनून टू यू, और इसके बाद लिखा है वेरी वेरी गुड आफ्टरनून अदी मैम। आज हमारी दो दो बार गुड आफ्टरनून हो गया है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, आपका स्वागत करते हैं हम कॉलर ट्यून कोडा में। महेंद्र दीपन हमारे साथ जुड़ गए हैं फ्रॉम राजस्थान, लिखा है गुड आफ्टरनून एंड वेलकम उन्नति मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू एंड आपका भी वेलकम करते हैं कॉलर ट्यून कोडा में। एंड इसके बाद मैसेज है हमारी गीता श्रीवास्तव जी का, जो लिख रही हैं गुड आफ्टरनून आज उन्नति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसी हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और इसके बाद मैम आज टाइम से बजा दीजिएगा मेरा बैंड बाजा बारात पूरी निकालेंगे आपकी, लेकिन बस अपना वक्त आने दीजिए। और इसके बाद के गुप्ता जी जुड़े हमारे साथ बहुत दिनों के बाद फ्रॉम तिरंगा कॉम्प्लेक्स, आपका भी स्वागत करते हैं। आप हमारे बगल में रहकर गायब हो जाते हैं और हमको दिखते नहीं हैं, ये कैसी बात हुई बताइए ज़रा। एंड साथ ही लिखा है आपने कि प्रिय और प्रिय आर शिवरती जी नमस्कार, मैम जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, आपका स्वागत करते हैं काफ़ी दिनों के बाद वापस से आपके अपने कॉलर ट्यून कोंडा में। एंड रिजु हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे मेरे शहर से आई है, यानी कि बरेली से आई है। मेरा शहर तो दो दो है, तीन तीन है, फिलहाल कोंडा भी मेरा शहर है, वो भी मेरा शहर है, तो समझ नहीं आ रहा कौन से वाले शहर को अपना बनाए। फिलहाल के लिए आप इंजॉय करते रहिए, क्योंकि मोहम्मद शाकिर जी ने हमसे फरमाइश की है अपने गाने की, तू है 16-17 साल की पर लड़की है कमाल की। तो सुनते रहिए, जरा मुस्कुराते रहिए, और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार अभिजीत भट्टाचार्य और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़।

और आप सुन रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में समीर के लिखे बोल, नदीम सैफी और श्रवण राठौड़ का संगीत, मोहम्मद शाकिर की फरमाइश फ्रॉम बरेली और तुषार कपूर करीना कपूर के ऊपर फिल्माया गया गाना आपने एंजॉय किया है। और हमने पूछा था कि अखियों से गोली मारी ये गाना किसके पास पहले गया था, तो हमारे महेंद्र दीपन जी लिख रहे हैं कि उन्नति मैम जी मैंने ढूंढ कर देख लिया है, अखियों से गोली मारे सुर निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने ही गाया था, लेकिन अगर ये दोनों नहीं गाते तो शायद आज हम किसी और से आंखों की गोली खा रहे होते। बात तो आपने बिल्कुल सही कही थी, लेकिन आपने सवाल पूरी तरीके से नहीं सुना। आप वो बच्चे हैं जो जवाब तो पहले देते हैं लेकिन सवाल नहीं सुनते हैं। सवाल था कि ये गाना किसके पास पहले गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये सॉन्ग किसके पास स्टार्टिंग में गया था। अगर ये गाना सोनू निगम साहब नहीं गाते तो सबसे पहले इस गाने को गाने वाले थे अल्ताफ राजा साहब, क्योंकि अल्ताफ राजा का एक एल्बम था तुम तो ठहरे परदेसी, ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था और लोगों को लगा था, यानी कि समीर साहब को लगा था कि इस गाने में अखियों से गोली मारे जो गाना है उसके ऊपर अल्ताफ जी की आवाज़ बहुत परफेक्ट बैठेगी, गोविंदा के ऊपर बहुत खूब नज़र आएगी। बट क्योंकि जैसे ये गाना उनके पास गया और उनका पहले एक एल्बम हिट हो चुका था तो उनके मैनेजर ने मना कर दिया ये कहकर कि या तो हमें इतनी भारी फीस दो अदरवाइज हम नहीं गाएंगे। अब समीर साहब के पास इतना बजट था नहीं तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम इतना फीस नहीं दे पाएंगे। और इसी गर्मा गर्मी में ये गाना उठकर चला गया सोनू निगम साहब के पास और जब ये गाना रिलीज हुआ और ब्लॉकबस्टर हिट गया तब अल्ताफ जी को थोड़ा सा बुरा लगा, अफसोस हुआ ये सोचकर कि अगर ये गाना मेरे पास आता तो शायद थोड़े पैसे और कमा सकते थे, एक और हमारी एल्बम हिट हो जाती। बट अफसोस की बात है, वो कहते हैं ना जो जहां जाना होता है वो वहीं जाता है, आपकी छोटी सी ना बोलने की जो आदत है वो कई बार आपको भारी नुकसान में भी डाल सकती है। तो ये थी पूरी कहानी इस गाने के पीछे जो मैंने आपको अभी अभी कॉलर ट्यून गोंडा में सुना दी है। एंड हमारे साथ विकास तिवारी जी जुड़ गए हैं फ्रॉम उन्नाव और

हैं हम हूँ आ गए हैं बरेली वाली मैडम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। एंड इसके बाद लिखा है के जी ने कि रति जी हम गायब नहीं होते हैं, बस काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हम आपकी बात पूरी तरह से समझ सकते हैं, काम का प्रेशर सच में बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, काम बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ आइए चलते हैं अगले गाने को ट्यून करने के लिए। अगला सॉन्ग हमारे पास है रिजु की फरमाइश का, तो इंजॉय करते रहिए और अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे थे हमारे रिजु जी की फरमाइश, बहुत ही प्यारा सा गाना आपने इंजॉय कर लिया। और ओके तो हम बोला करें, और ओके ठीक है तो हम बोलते हैं बहुत आराम आराम से, बहुत जल्दी जल्दी भी बोलते हैं, और इसी बोल चाल को मिक्स करते हुए आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है हमारे देवी प्रसाद जी की फरमाइश का, उम्र कैद होगी फैसला अदालत का। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गुंडा, और ये है आपका अपना रेडियो 89.6 FM विद राजयुनति। अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर।

और आप सुन रहे हैं देवी प्रसाद जी की फरमाइश, उम्र कैद होगी फैसला अदालत का। दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फ्रॉम हथियागढ़, आपका स्वागत करते हैं। और आपने लिखा है गुड आफ्टरनून आशुति मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप? एंड ओके, बहुत ही धाकड़ तरीके से एंट्री हुई है हमारे नागेश्वर धाकड़ जी की, जो लिख रहे हैं देखो मैं आ गई, मैं आ गई और मैंने आपको देख लिया कि आप आ गई, आपका स्वागत करते हैं हम कॉलोचून गोंडा में। इसी के साथ किसका यार किसका यार मनाया जा रहा है, भैया देवी प्रसाद जी की फरमाइश थी जो आप एंजॉय कर रहे थे। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। हमारी सविया जी के बेहद ही पसंदीदा सिंगर की आवाज़, राहत फतेह अली खान की आवाज़ में आप सुनने जा रहे हैं, ज़रूरी था, सुनते रहिए, इंजॉय करते राहत फतेह अली खान की आवाज़ में, राहत पाते रहिए। और हाँ, मिलेगी अगले गाने पर अगली फरमाइश को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और आप सुन रहे थे सबिया जी की फरमाइश, जरूरी था राहत फतेह अली खान की आवाज में। एंड ओके भैया हमारे साथ जुड़ गए हैं आइडल, आपका स्वागत करते हैं। और आपने लिखा है हाय हाय, कैसे हैं आप, आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं कॉल अच्छी उन गोना में। और क्या ख्याल है दोस्तों, अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए? बेशक बढ़ते हैं, क्योंकि फरमाइशों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा 3 से 4। और अगली फरमाइश हमारे पास बेहद ही खूबसूरत आई है, आशिकी 2 से आप इंजॉय करने जा रहे हैं। जीत गंगोली का म्यूजिक, अरिजीत सिंह की आवाज और पलक मच्छल की आवाज, बहुत ही प्यारा सा नगमा। एंड हम आपको बता दें ये मोहित सूरी की फिल्म है, इसलिए दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा सैड थी एंड द एंडिंग वाज सो डिप्रेसिंग। लोगों को मजा भी आया था, इवन आज भी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और सच बात तो ये है कि अरिजीत सिंह को इस मूवी ने बहुत नाम कमा के दिया था। तो आइए एंजॉय करते हैं वन ऑफ माय फेवरेट एंड योर फेवरेट सॉन्ग, प्लस अमित कुमार जी की पसंदीदा फरमाइश चाहूं मैं या ना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे कॉल अ ट्यून गोंडा विद राजू नती ऑन रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM।

sensation, the beautiful, the wonderful, the

0: मारन।
1: राहुल कैसा है बेटा?
2: और आप इंजॉय कर रहे हैं अमित कुमार जी की फरमाइश चाहूं मैं या ना। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और मैं चाहूंगी आप अपने अपने दिलों को थाम के बैठ जाएं क्योंकि अगली फरमाइश हमारे पास जो आई है ना जनाब वो आई है डेडिकेटेड वाली, यानी कि वो गाना जो आपको डेडिकेट किया जा रहा है हमारी गुलफशा जी की तरफ से। अब फरमाइश ये थी कि मैम आप अपनी तरफ से कोई 90s का सॉन्ग सुना दीजिए, तो आइए इंजॉय करते हैं साथ में मिलकर। और डेडिकेट सॉन्ग है, एक तो मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, दूसरा है हमारी रोशनी जी को और अनु पांडे जी को, और गाने का नाम है जो मैं अपनी तरफ से आपको सुना रही हूँ, लव तुझे लव मैं करती हूँ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत ही प्यारा सा गाना है। एंड कॉर्ड्स हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं लगातार, बहुत सैड सॉन्ग चल रहा है, कोई बात नहीं, आइए रोमांटिक गाना आपको सुनाते हैं। आइडल जी सैड सॉन्ग को साइड करते हैं।

और आप एंजॉय कर रहे थे हमारे गुलफ्शा जी की फरमाइश को। और नागेश्वर जी का लिखना है कि मैम गुलफ्शा जी को मेरा नमस्कार बोलना, बहुत दिन हो गए हैं उनको चैट में आए बोलना, उनका छोटा भाई उन्हें याद कर रहा है। अब इतनी जोर जोर से तो मैंने बोल दिया, आई होप गुलफ्शा जी तक मेरी बात पहुंच गई होगी और आपका छोटा भाई आपको मिस कर रहा है, तो आइए दर्शन दीजिए। और हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद कुमार जी फ्रॉम मनकापुर, लिखा है गुड आफ्टरनून एवरीवन, रति मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? देर आए दुरुस्त आए, आपका स्वागत करते हैं कॉल ट्यून गोंडा में। विकास जी ने लिखा है सुपर सॉन्ग, थैंक यू सो मच, इतना भी नहीं था लेकिन हाँ बहुत ही जबरदस्त गाना था। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने को ट्यून करने के लिए। यार पप्पू जी भैया आपको करना पड़ेगा कॉल, बिकॉज ये है आपका कॉलिंग वाला प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा। अगली फरमाइश हमारे पास आई है महेंद्र दीपन जी की फ्रॉम राजस्थान, और वो सुनना चाहते हैं साथ छोड़ूंगा ना तेरा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जमाना दीवाना 1995 से एंजॉय करते रहिए।

साथ। और आप सुन रहे हैं महेंद्र दीपन जी की फरमाइश जमाना दीवाना 1995 से हमारी सपना जी और उदित नारायण की आवाज में समीर साहब के बोल थे। नदीम सूफी और श्रवण राठौर ने दिया था इसको संगीत। एंड महेंद्र जी की तरफ से भैया मैसेज आया है बहुत लंबा वाला कि थैंक यू सो मच आशीर्वती मैम फॉर प्लेइंग माई सॉन्ग। आई एम ऑन बाइक बट आई हैड टू पुल ओवर एंड स्टॉप जस्ट टू टाइप दिस मैसेज आफ्टर ऑल माई सॉन्ग इज प्लेइंग। इसको कहते हैं शिद्दत वाले एफर्ट्स की भैया बाइक चलाते चलाते रोक दिया है सिर्फ इसलिए ताकि थैंक यू बोल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपके एफर्ट्स की बहुत कद्र है हमको। एंड इसके बाद लिखा है हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास और उनका मैसेज आ चुका है उन्नति जी नमस्ते क्वालिटी उन गोंडा में आपका स्वागत है और आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं इस्तकबाल करते हैं क्वालिटी उन गोंडा में। एंड क्या बात है आज मेरे फेवरेट गाने बज रहे हैं सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं क्या बात है भैया। विकास जी की तरफ से मैसेज आया है और डेडिकेट करती हूँ मैं इस मैसेज को क्योंकि क्रेडिट जाता है हमारे उनको ही जिनका ये गाना था यानी कि महेंद्र दीपन जी का। और अब आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और आप थोड़ा सा आपको हम झूमने पे कर देते हैं मजबूर क्योंकि लेकर आ चुके हैं शोले का सॉन्ग वो भी एहसान जी की फरमाइश पर इन योर कॉल ट्यून।

और इस गाने की फरमाइश आई थी हमारे पास एहसान जी की तरफ से। उन्होंने तो बस इतना कहा था कि शोले फिल्म से कोई गाना सुनाइएगा, और हमें लगा कि भैया आर डी बर्मन से ज्यादा खूबसूरत आवाज इस दौर में किसकी हो सकती है। एंड जैसा कि आपने इंजॉय भी कर लिया है इस गाने को, तो बाबू अंसारी जी आपका हम स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। और ओके मैम, सभी लिसनर्स की तो आज पसंद बिल्कुल धमाल सॉन्ग, बहुत बहुत शुक्रिया। लिसनर्स आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि हमारे बाकी लिसनर्स को आपकी फरमाइश बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तो अपनी फरमाइश पे थोड़ा इतराइए और आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास है रईस साहब का, और बहुत ही प्यारा सा गाना उन्होंने फरमाइश की है, इवन रोमांटिक गाना उन्होंने फरमाइश की है। जोश फिल्म से आप इंजॉय करने जा रहे हैं मेरे ख्यालों की मलिका, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में, अनु मलिका म्यूजिक, समीर साहब के लिखे बोल हैं, और आपकी ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया गाना है। तो सुनना मत भूलिएगा, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले गाने पर, जो कि हमारे बाबू अंसारी जी का ही है, जो मैं सुनते हैं बाराबंकी से। इसके बाद विकास जी, रफीक खान, आदर्श, सोनी उस्मान खान, रिया शर्मा, अरविंद मौर्या, सुनते रहिए।

और अब रखते हैं वक्त को थोड़ा मद्देनजर। ये एंजॉय कर रहे थे आप रईस साहब की फरमाइश, अब बारी है हमारी अगली फरमाइश को ट्यून करने का। बाबू अंसारी जी का फ्रॉम बाराबंकी से आ चुका है और ये गाना डेडिकेट किया है उन्होंने मुझे, महेंद्र दीपन जी को, रोशनी जी को और हमारे सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स को जिनका नाम उन्हें नहीं पता था, तो उन्होंने कह दिया कि आप सभी को डेडिकेटेड है। गाने का नाम है ढलने लगी है रात, अभी तो दोपहर भी ना हुई थी ठीक से लेकिन रात आ चुकी है, तो आइए एंजॉय करते हैं। शाम के आने का इंतजार कीजिए थोड़ा और रात तो आती ही रहेगी, फिलहाल एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए कॉलर ट्यून कोंडा।

और इस गाने को यहीं पर रोकने के लिए चाहेंगे आपसे माफी, लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए आप बढ़ेंगे अगले गीत की तरफ, अगले सॉन्ग की तरफ, अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे पास आई है उन्नाव से विकास तिवारी जी की, और वो बात करते हैं कि यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या प्यार का इरादा है, सच्चा झूठा फिल्म से आप इंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे अगले गाने पर, मोहम्मद रफी और आपकी प्यारी लता जी की आवाज़ है।

और भैया आप बढ़ेंगे अगले गाने की तरफ। ये गाने फरमाइश थी हमारे विकास जी की और के गुप्ता जी की फ्रॉम तिरंगा कॉम्प्लेक्स से। अगला सॉन्ग आपके लिए पेश करते हैं बगावत फिल्म से हमारे रफीक जी की फरमाइश है मेरे महबूब तुझे सलाम। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कॉल चुनगो ना मिलते हैं।

आप सुन रहे थे रफी खान जी की फरमाइश मेरे महबूब तुझे सलाम, और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गाने की ओर जो कि हमारे उस्मान खान और आदर्श सोनी जी की फरमाइश है, मेरी आशिकी तुम ही हो। सुनते रहिए आशिकी 2 से बहुत ही प्यारा सा नगमा अरिजीत सिंह की आवाज़ में, आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के ऊपर फिल्माया गया गाना।

और आप सुन रहे थे हमारे आदर्श जी और उस्मान खान की फरमाइश, क्योंकि तुम ही हो, बस तुम ही हो मेरी आशिकी, तुम ही हो। आइए ट्यून करते हैं अपनी अगली फरमाइश को, जो कि हमारी रिया शर्मा जी की है। कम से कम इतना तो कहा होता। एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि हमारे अरविंद मौर्य जी की, नरेश प्रजापति जी की है, सुरेश कुमार जी की है और हमारे नागेश्वर धाकड़ जी की है।

बहुत ही प्यारी थी, बीच में रुकने के लिए आपसे माजरत। फिलहाल आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश, जो कि हमारे अरविंद मौर्य जी की है, और इस गाने को साथ ही में मांगा है हमारे अपने धर्मेंद्र मोहन जी ने। गाने का नाम है तुमसे मिलने की तमन्ना है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून्ड। SP बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज़ है।

अब जाने क्या होगा, जाने जाना। और आप एंजॉय कर रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में हमारे अरविंद मौर्य जी और धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश को। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। नरेश प्रजापति ने भेजा है हमें इंदौर से इस फरमाइश को, और गाना डेडिकेट किया है राहुल जी को, अनु पांडे जी को, गजराज जी को और मंगली लाल जी को। तो भैया आइए एंजॉय करते रहिए, आप अपने दोस्तों को सुनाते रहिए, क्योंकि ये फरमाइश हमारे नरेश प्रजापति की है फ्रॉम इंदौर।

और ये फरमाइश तुम्हारे नरेश प्रजापति जी की। विकास जी लिख रहे हैं कि हम लोग नए जमाने के होकर गाने ज्यादा 90s के पसंद करते हैं। ये बात तो सही है भैया कि हम पैदा भले 2026 में हो चुके हैं, लेकिन हमारा दिल, हमारी रूह आज भी 90 के दशक में कहीं मंडरा रही है। नागेश्वर जी लिख रहे हैं नाइस फरमाइश इंदौर वाले भाई साहब की। तो भैया इंदौर वाले भाई साहब सुन लीजिए, आपकी ये फरमाइश को बोला गया है नाइस। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास है सुरेश कुमार प्रजापति का, और वो सुनना चाहते हैं ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें। एंजॉय करते रहिए।

और आप सुन रहे हैं इम्तियाज जी की फरमाइश। चलते हैं अब अपनी आखिरी फरमाइश को ट्यून करने के लिए, जो कि हमारे नागेश्वर जी की है, नाजिया अंसारी जी की है, और ये डेडिकेटेड है उन सभी लोगों को जो आज हम तक अपनी फरमाइश नहीं भेज पाए हैं, जिसमें एक हमारे आइडल भी हैं जो नए नए हमारे लिसनर जुड़े हैं। आई होप आज का शो आपने इंजॉय किया होगा, आपको पसंद आई होगी आज हर एक फरमाइश। अगर हाँ तो चैटबॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि भैया आज आपने कितना मज़ा किया है और कितना ज़्यादा आपको पसंद आया है आज का प्रोग्राम। फिलहाल अब चाहूँगी आपसे इजाज़त, वक्त है मेरा विदा लेने का, तो ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना FM रेडियो 11.89.6 FM।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आई के श्रीवास्तव
2: और मैं आयुषी,
1: लेकर हाजिर हूं गोंडा कल्चर। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा में सड़क पर गिरे पेड़ से टकराकर बाइक सवार दो दोस्तों की दर्दनाक मौत, वहीं हादसे में भाजपा के जिला कार्य समिति सदस्य की गई जान, चार लोग हुए घायल।
2: गोंडा में मंगलवार बुधवार दरमियान रात करीब 1 बजे बारात से लौट रहे बाइक सवार पेड़ से टकरा

0: श्री घनश्याम मिश्र, जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अकबाल बहादुर तिवारी, सांसद कैसरगंज के प्रतिनिधि श्री संजीव सिंह तथा जिला विकास अधिकारी आदि लोग मौके पर उपस्थित। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सामूहिक रूप से सुना, जिसमें शिक्षा मित्रों के योगदान और उनके मानदेय वृद्धि में संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। समारोह के मुख्य आकर्षण के रूप में उपस्थित शिक्षा मित्र को बढ़े हुए मानदेय के डेमो चेक वितरण किए गए। इस दौरान अतिथियों ने शिक्षा मित्रों के समर्पण, निष्ठा और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों के सम्मान से जुड़ा यह पहल उनके मनोबल को बढ़ाने वाला बताया गया है। कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अमित कुमार सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी आदि संबंधित लोग उपस्थित रहे।
1: गोंडा जिले में खाद्य पदार्थ में मिलावटखोरी का काला कारोबार चरम पर है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा हालिया आंकड़ों में आम जनता की सेहत को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी। 449 नमूने संग्रहित किए थे, इनमें से 334 नमूनों की प्रयोगशाला में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त रिपोर्टों में से लगभग 172 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं, जो दर्शाता है कि बाजार में उपलब्ध खाद्य सामग्री का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक।
0: जनपद गोंडा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़ी पहल की जा रही है। कटे ओठ व तालू वाले बच्चों के इलाज के लिए पंजीकरण शिविर 11 मई से 15 मई तक कराया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्माइल ट्रेंड संस्था के सहयोग से जन्म से कटे ओठ और कटे तालू वालों बच्चे के ऑपरेशन के लिए 11 मई से 15 मई तक निःशुल्क पंजीकरण शिविर लगेगा। बच्चों को मुफ्त इलाज का अवसर मिलेगा। सीएमओ डॉक्टर संतलाल पटेल ने बताया कि शिविर का आयोजन जिला मुख्यालय के साथ विभिन्न ब्लॉक में किया जाएगा। एसएमओ डॉक्टर सी के वर्मा ने बताया कि पंजीकरण के बाद चयनित मरीजों का इलाज लखनऊ के हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में सर्जन डॉक्टर वैभव खन्ना की देखरेख में किया जाएगा।
1: गोंडा के कटरा बाजार थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी में पिस्टल लहराने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास एक 12 बोर का अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। 2 मई को घटना की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। मंगलवार को ब्रह्मचारी बाबा स्थान के पास कच्ची सड़क से आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया गया है।
0: गोंडा में श्रमिकों के योगदान को किया गया रेखांकित। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जनपद में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशानुसार विभिन्न ग्राम पंचायत।
2: विज्ञानपुर की विज्ञानशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी आरजे बीना। और देखते देखते गर्मी का आलम भी बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ती गर्मी के साथ कुछ चीज़ें हैं जिसको बदलना नहीं चाहिए, बट फिर भी हम सभी ने उन्हें बदल दिया है। सो उनमें सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम सभी ने अपनी सेहत पर ध्यान देना कम कर दिया है। तो आप भी सोच रहे होंगे ये कैसे। अच्छा, गर्मी के साथ साथ हमारे कहीं ना कहीं चुनावी मतलब दौर भी रहा। हम सब इन सजों में इतने बिजी हो गए कि कहीं ना कहीं हम भूल ही गए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एज इट इज़ होनी चाहिए थी, बट स्टिल हम उन्हें फॉलोअप नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके डाइट की। सो आपने इस बढ़ती गर्मी के साथ अपनी डाइट को इग्नोर कर दिया है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। इसीलिए मौसम के साथ आपको कुछ ऐसा सेवन भी करना चाहिए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेस्ट रखे और आपकी जो कहते हैं ना कि पोषण की कमी, न्यूट्रिशन की कमी जो है उसे भी ना होने दे। तो सबसे पहले तो मैं बात कर रही हूँ कि गर्मियों के मौसम में जो हमारा शरीर होता है वो बीमार होने के रिस्क के आसपास ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी पहले तो डिहाइड्रेट हो जाती है और साथ ही साथ गर्मी की वजह से जो है इम्यूनिटी भी हमारी कमज़ोर हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम नहीं करते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशनस चीज़ें नहीं खाते, टेस्ट की किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कोई दिक्कत है, डाइजेशन की दिक्कत हो गई तो खाना ठीक से नहीं खा रहे, तो इम्यूनिटी का मतलब डिस्टर्ब होना तो नॉर्मल है। इसी के साथ हमारे जो त्रिदोष हैं यानी कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि हमारा बाइल भी इम्बैलेंस हो जाता है और इसके साथ ही हमारी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होते हैं उन पे काफ़ी गहरा असर पड़ता है। आपको पता है बाइल एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, किसी भी चीज़ को पचाने में मदद करता है, ठीक है। इसके साथ ही बहुत बार ऐसा होता है कि गर्मी में कुछ ऐसी चीज़ खाने के बाद हमें उल्टी हो जाती है या पेट में जलन होने लगती है या फिर उसके कारण मतलब उस चीज़ को खाने के बाद हमें डाइजेशन में दिक्कत आती है। और मौसम में केवल शरीर जो है वो हेल्दी चीज़ों को नीड करता है, बिकॉज आपको भी पता है इम्यूनिटी कम होना गर्मियों में लाजमी है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, कभी भी डायरिया हो जाता है, कभी उल्टियाँ आने लगती हैं, धूप लग गई एंड ऑल, इन सब चीज़ों से हमें बचना है। तो हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है और इन सब के लिए हमें सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे डिपेंडेंट होना चाहिए जिसमें पानी प्रचुर मात्रा में हो, बिकॉज़ हमारी डाइट तो फिलहाल बैलेंस हो नहीं पाती, इतनी ज़्यादा गर्मी है, हम बहुत लिमिटेड चीज़ें खाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आपकी डाइट में रायता ज़रूर होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट वो वेजिटेबल्स जो आपको अच्छे लगते हैं। आजकल तो रायता बहुत सारी चीज़ों को बनता है, लौकी का, खीरे का, जो भी आपका मतलब इवन ये आपका जो खरबूज होता है इसका भी लोग थोड़ा स्वीट रायता बना के खाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपका जो पेट के साथ साथ आपका जो न्यूट्रिशन है वो भी भर जाए तो आप रायते वगैरह का सेवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो गर्मियों में जो नॉर्मली इजीली अवेलेबल है वो है तरबूज, तो तरबूज का जूस बना के पी सकते हैं। इसके अलावा तरबूज को फ्रीज करके उसको शेक के फॉर्म में दूध के साथ शेक करके भी पी सकते हैं। इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि शरीर में आपके इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है, तो हो सके तो रोज़ एक तरबूज का सेवन ज़रूर करें। इसके साथ साथ खीरा तो मुझे लगता है सभी कंज्यूम कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे जिनको खीरा पसंद नहीं होता है बट स्टिल आप इसमें दही के साथ ले सकते हैं। इसमें कैलोरीज बहुत ना के बराबर होती हैं बट स्टिल तो मैं ये कहूँगी कि ये तापमान को आपकी बॉडी के मेंटेन रखता है, रेगुलेट करता है और टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको फ्लश करता है, यानी कि आपकी बॉडी में टॉक्सिक्स जो इकट्ठा होते रहते हैं एब्जॉर्प्शन के दौरान तो उनको ये ख़त्म करने में मदद करता है। इसके अलावा मैं बात करूँ नारियल का पानी, वैसे थोड़ा एक्सपेंसिव है, अगर हो सके तो वीक में एक नारियल पानी ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ नहीं तो हरा नारियल ही लेके भिगो के उसको कंज्यूम करें, उसकी चटनी वगैरह बना के खा लें। ये पसीने से आपकी बॉडी में जो फ्लूड्स की कमी हो जाती है उनको कम करने में मदद करता है। पुदीना तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है हमारी डाइट का, गर्मियों के दौरान पुदीना जो होता है वो रिफ्रेशिंग एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है, इसके साथ ही साथ शरीर को काफ़ी कूल रखता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है और इन्फ्लामेशन यानी कि बॉडी में जो गर्मी हमें फील होती है, टेम्परेचर महसूस होता है, उसको कम करता है। पुदीने को आप एज अ सलाद, ड्रिंक्स, चटनी इन सब के फॉर्म में ले सकते हैं। पुदीने को आप धनिया और आम के साथ पीस के पानी में, ठंडे पानी में मिला के हल्का नमक काला और हल्का सा नींबू मिला के पीजिए, मज़ा ही आ जाएगा आपको। ये जो जलजीरा वगैरह बनाते हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर टेस्ट होता है। तो चलिए एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक लेते हैं और बाकी की सारी चीज़ें जो आपकी बैलेंस डाइट को कंज्यूम करने में यानी कि गर्मियों में आपकी बैलेंस डाइट को प्रॉपर रखेंगे उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9861 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: तो स्वागत है आपका पुनः विज्ञानपुर की विज्ञानशाला में। हम लोग बात कर रहे थे बैलेंस डाइट की, कि बढ़ती गर्मी में कैसे अपनी बैलेंस डाइट को मेंटेन करें। कुछ स्पेशल खाने की चीज़ों के बारे में बात हुई थी, और गर्मी में वैसे खाने पीने की तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट स्टिल मैं ये कहूँगी आप दही का सेवन कर सकते हैं। दही में प्रोबायोटिक, इसके साथ साथ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि सच में आपके पेट के लिए लाभदायक होते हैं, शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करते हैं और पेट से सारी समस्याओं को जो जुड़ी होती हैं उन सबको कम करते हैं। स्नैक्स, सलाद के साथ इसको खा सकते हैं और आपके पेट को या आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण भी देते हैं। इसके अलावा मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग स्पाइसी और फ्राइड फूड बिल्कुल भी ना खाएं, जैसे कि बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला खाना हो गया, मोमोज लोग खाते हैं बहुत ज़्यादा, इसके अलावा फ्राइड चीज़ें, पकौड़े वगैरह आजकल तो बिल्कुल भी ना खाएं, अवॉइड करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पेट में एसिडिटी को बढ़ाता है। शराब वगैरह का सेवन बिल्कुल मत करें, ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, ठीक है, और इससे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो कोशिश करें कि शराब का सेवन भी ना करें। कॉफ़ी में जो होता है एक डायरेक्टिव का काम करता है, और ये जो डिहाइड्रेटिव प्रॉपर्टी रखता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके शरीर का तापमान परस्पर बढ़ता रहता है। शुगर से भरपूर ड्रिंक्स जो होती हैं उनको भी ना लें, क्योंकि जानते हैं चीनी कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जाकर डिपॉजिट होती है, ये ब्लड लेवल में शुगर को बढ़ाने का काम करती है, सो इसको भी अवॉइड करें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका सेवन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ये हमारी डाइट को पूरा करने में मदद करता है। और गर्मी में अगर मैं नाश्ते की बात करूं तो आप हल्की फुल्की चीज़ें बना के भी खा सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, एनर्जी देने वाली चीज़ें, जैसे कि आपका इडली हो गया और टमाटर की चटनी हो गई, जो कि काफ़ी कैलोरीज आपको देती है। ब्रेकफास्ट में ऊर्जा देने वाली चीज़ें ज़्यादा खाएँ जो कि लंबे समय तक आपको एनर्जी दें। इसके अलावा लंच की बात करें तो लंच में सलाद वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लें, इसके साथ साथ जिसमें फैट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, जैसे कि रोटी ले सकते हैं, एक कटोरी मूंग की दाल, एक कटोरी सलाद, गाय के दूध से बना दही, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बैलेंस डाइट की ओर ले जाती हैं। शाम को क्या खा सकते हैं, शाम को जंक फूड का सेवन बिल्कुल भी ना रहें, मतलब करें चाहे भूखा आप कितना भी फील करें। चिप्स वगैरह थोड़ा बहुत सेवन कर सकते हैं, लेकिन हल्का फ्राइड होना चाहिए। इस दौरान आप फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, आप सेब है इन सब का सैलड बना के खाइए, और साथ में छाछ वगैरह का सेवन ले सकते हैं। दूध पसंद है तो दूध में भी कोई ऐसी प्रोटीन वगैरह वाली शेक बना के उसे पी सकते हैं। दूध को एज अ मैंगो शेक, एज अ बनाना शेक, एज अ ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट दूध को कंज्यूम करना भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और रात की अगर मैं बात करूँ तो रात में भोजन बिल्कुल हल्का खाएं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें हो, क्योंकि रात में आप लेट जाते हैं एक जगह और डाइजेशन जो होती है वो क्रिया काफ़ी लंबी होती है। सो गर्मी के कारण आप डिनर में जो है ओट्स से बनी सब्जियाँ डालकर खिचड़ी बना सकते हैं, बाउल खिचड़ी बना सकते हैं, एक कप स्टीम की हुई ब्रोकली का सेवन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बैलेंस डाइट की ओर ले जाएंगी। सो मेरे हिसाब से आप सभी को अपनी बढ़ती गर्मी के साथ अपनी बॉडी में न्यूट्रिशंस की जो कमी है उसको पूरा रखने की ज़रूरत है। और मैं कुछ ऐसे पोषक तत्वों की बात करना चाहूँगी, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स की बात करना चाहूँगी, जो कि सच में गर्मियों में आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन सी आप सभी के लिए। विटामिन सी जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो खतरा होता है उससे आपको बचाता है। सो विटामिन सी के टैबलेट्स तो आते हैं, लेकिन आप नींबू और संतरे का सेवन करके या अमरूद हो गया, सूरजमुखी के बीज, इन सब से आप अपने विटामिन सी की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी मैं बात करना चाहती हूँ, जिनका सेवन आपको गर्मियों में ही करना है। मतलब वैसे तो आप आए दिन खाते पीते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में कहीं ना कहीं आप लोग अपनी डाइट से थोड़ा कतराते हैं, नहीं खाते हैं, पानी पी लेते हैं, जूस पी लेते हैं, बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सच में लेनी है, अंकुरित आहार ले सकते हैं जो कि आपको सच में पूरा पोषण देता है। सो आइए मिलते हैं छोटे से और म्यूजिकल ब्रेक के बाद और करते हैं और पोषक तत्वों की यानी कि न्यूट्रिएंट्स की बातें। स्टे ट्यून्ड।

सो वापस आ चुके हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और मैं आपसे बात कर रही थी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। भाई कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं ताकत अलग लेवल की देते हैं। जैसे कि प्रोटीन की अगर बात करूं तो हम सभी कहते हैं प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, लेकिन सच बताऊं तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल है बॉडी का, जो कि आपके शरीर को प्रचुर मात्रा में रिकवरिंग पावर, रिपेयरिंग पावर देता है। अगर मैं बात करूं, ये हमारे बॉडी का आधार है। गर्मी में अधिकांश लोग कमजोरी और थकान महसूस करते हैं, और इस परेशानी को दूर करने में प्रोटीन जो है एक कामगर खाद्य पदार्थों में से एक होता है, जो कि बढ़ती गर्मी में हमें ऊर्जा की कमी नहीं होने देता, साथ ही साथ रिपेयरिंग पावर को भी बढ़ाता है। तरह तरह के बीज, दाल, अनाज आदि के माध्यम से प्रोटीन को हम ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में सत्तू एक अपनी ही कह सकते वैल्यू रखता है, डाइट का हिस्सा अगर उसे हम बना लें तो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी है उसमें प्रोटीन की कमी नहीं होगी। सत्तू का पराठा, नमकीन, शरबत पीने से आपको कहीं ना कहीं पेट में काफ़ी आराम मिलता है। लू वगैरह से भी आप बच सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की बात करूं तो ये खाद्य पदार्थों में बढ़ाने के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर अपनी जो कह सकते हैं डाइजेशन को बेहतर करने के लिए भी लेना चाहिए। अब मैं बात करती हूं अपनी थकान और कमज़ोरी को दूर करने वाले न्यूट्रिएंट के बारे में, यानी कि पोटेशियम। सो पोटेशियम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से एक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गर्मी में ज़्यादा पसीना आने की वजह से हमारी बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कम हो जाते हैं। एक पोटेशियम की मात्रा की कमी आने की वजह से कहीं ना कहीं हम कमजोरी, थकान और क्रैम्प्स महसूस करते हैं। कहीं कहीं हाथ में दर्द, पीठ में दर्द, और ठंडा ठंडा पानी पीने से बाज नहीं आते। मैं बताना चाहूंगी कि जो पोटेशियम है ये खाद्य पदार्थों या डाइट का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है, जिससे पसीने के दौरान जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं वो बैलेंस हो सके। तो बेसिकली ये हमें केले में मिलता है सबसे ज्यादा मात्रा में, बीन्स में मिलता है, ब्रोकली, एवोकाडो, दाल और सूखे मेवों में होता है। तो सूखे मेवे गर्मियों में भी खाने चाहिए, हाँ ज़्यादा मात्रा में नहीं लेकिन थोड़ी मात्रा में। उसे भिगो के हम ज़रूर खा सकते हैं, रात में भिगो दें, सुबह खा लें, इसकी तासीर गर्म से ठंडी हो जाएगी। अगला है हमारा सूरज की किरणों से कैसे खुद को बचाएं। तो कैरेटिनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स का एक समूह है जो कि मुख्य रूप से लाल, पीली और हरे रंग की सब्जियों व फलों में पाया जाता है। इसके लिए हमें लाइकोप्रोटीन और ल्यूटिन नाम का खास तत्व पाया जाना ज़रूरी होता है, जो कि सूरज की किरणों से हमारी त्वचा को प्राकृतिक सुरक्षा परत देता है, यानी कि आप समझ लें सरल भाषा में तो एक नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, कैरेटिनॉइड के लिए आप डाइट में पपीता, तरबूज, गाजर, ब्रोकली, ये मौसमी हरी सब्जियों का सेवन ज़रूर करें। धूप में हर दिन आपको ज़्यादा वक्त बिताना होता है तो इन सब चीज़ों का नियमित सेवन करें, और एक ग्लास टमाटर का जूस का सेवन करने से आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं धूप से लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन को मात देने वाले कुछ ऐसी चीजें जो कि सच में आपको बताती हैं कि आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो पानी की कमी को दूर करने के लिए हमें मौसमी फलों को जरूर खाना चाहिए, जो भी अवेलेबल हैं वो आपके आसपास आप उन्हें टेक कर सकते हैं। लौकी में वाइटामिन बी पाया जाता है, वाइटामिन सी और आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। गर्मियों में ये प्यास भी बुझाता है हमारी और थकावट भी दूर करता है, तरोताजा भी रखता है। सुबह खाली पेट एक ग्लास लौकी का जूस पीने से, उसमें चुटकी भर नमक डालने से पूरे दिन ताजगी बनी रहती है एंड सोडियम की जो कमी है वो भी नहीं होती। इसके अलावा खरबूज, वैसे वजन कम करना चाहते हैं तो आप खरबूज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें 57 कैलोरी होती है एक प्याले जूस में, सो इसका जूस आप आसानी से बना सकते हैं। कब्ज है, इसके अलावा एसिडिटी को कम करने में काफ़ी मदद करता है। सो टमाटर तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, टमाटर को तो आपको अपनी डाइट में हमेशा रखना चाहिए एज अ सैलड, एज अ जूस, और जो भी आप अगर अंकुरित आहार भी खा रहे हैं तो उसमें भी काट के इसको डाल सकते हैं। अगला है खीरा। 98% पानी से भरपूर खीरा कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए एक सौगात है।
जी हाँ, शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए। और इसमें मौजूद जो फाइबर होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ करते हैं। इसमें विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। विटामिन के आंखों के नीचे आने वाले काले घेरों से हमें बचाता है, तो इसीलिए लोग लगाने को बोलते हैं। मैं तो कहूँगी कि कोई भी चीज़ लगाने से फ़ायदा उतना नहीं करेगी जितना खाने से करेगी। सो आप चाहें तो खीरा प्रचुर मात्रा में खाएं, आपके आंखों के नीचे के काले घेरे जो है वो सही हो जाएंगे। अगला है गन्ने का रस, जो कि जगह जगह मिल रहा है। गन्ने के 100 मिलीलीटर रस में 57 से भी कम कैलोरी होती है। ये विटामिन ए, सी, B12, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम का खजाना है। इतना ही नहीं, गन्ने के रस में पाई जाने वाली जो शुगर होती है वो पेट में जुड़ी तकलीफों को कम करती है। इसके अलावा संपूर्ण डी टॉक्सिक ड्रिंक है ये। मतलब आपको गन्ने का अगर नारियल का रस नहीं मिल रहा तो आप इससे काम चला सकते हैं, और लीवर और किडनी के रोगों को ख़त्म करने में ये कामगर है। इसके अलावा कुछ ऐसे नुस्खे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि आपको हेल्दी रखेंगे इस बढ़ती गर्मी में। तले भुने खाने वाली चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। इसके अलावा हर दिन 2 से 3 घंटे आप योगा वगैरह ज़रूर करें, और पानी जो है उसे 5 से 6 लीटर ज़रूर पिएं। पानी के अलावा नारियल का रस, लस्सी, छाछ, गन्ने का जूस, सत्तू का जूस जो है उसको पी सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह से दूर रहें। कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि आपको डिहाइड्रेशन का ख़तरा और बढ़ा देते हैं। और 5 से 10 तुलसी का पत्ता हर दिन खाएं, यह शरीर के भीतर की जो ठंडक है उसको मेंटेन रखता है। दिन में 2 बार दही ज़रूर खाएं। दही का सेवन गुड बैक्टीरियाज की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ाता है। इसके अलावा पाचन को दुरुस्त रखता है। एक मिथ है कि दही खाने से जुकाम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपके डिपेंड करता है कि आप किस रूटीन में उसे खा रहे हैं। अपनी रूटीन में खाएंगे तो कभी भी आपको जुकाम हो ही नहीं सकता। कच्चे आम का पना, इसके साथ साथ चटनी वगैरह बना के भी आप इसे डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। इससे लू लगने की शंका जो है वो कम हो जाती है। सोडियम को संतुलित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नमक वगैरह का सेवन भी रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन के बाद लो बीपी की प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सोडियम की कमी होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों या बच्चों के लिए नियमित रखनी चाहिए, कि उनको लस्सी वगैरह बराबर देते रहें, फल सब्जियां जो हैं वो सारी अपने बच्चों को दें। हमारे जो मतलब जो जूनियर ग्रुप है उसमें कहीं ना कहीं खाने पीने की चीज़ें ना खाने की आदत होती है। अगर आपके घर में चना है तो उन्हें भून के पीस के डायरेक्ट, ऐसा अगर सत्तू नहीं है तो उसका सेवन कर सकते हैं। सो ऊर्जा बढ़ाने वाली वो सारी चीज़ें आपको खानी हैं जो कि आपके अंदर एनर्जी को कम करती है। चने का जो आटा है, मतलब बेसन जो है, उसे आटे में मिला के सेवन लें, वो कहीं ना कहीं आपके पेट को स्मूथ करता है। सो दूध से बनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। और बच्चों की अगर थाली है, अगर छोटे बच्चों की थाली है तो उसमें पोषक तत्व ज़्यादा होने चाहिए। रंग बिरंगे फल हो, सब्जियां हो। इसके अलावा आपको प्रोटीन के सोर्सेज यानी कि दूध, दही, अंडा, दाल, जो भी आप अवेलेबल करा सकते हैं वो एक चीज़ ज़रूर रखें थाली में। इसके साथ ड्राई फ्रूट्स को भी उनकी थाली में ऐड करें। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए आप दाल, सब्जी, रोटी, जो भी देना चाहते हैं साथ में दे सकते हैं। चावल भी दे सकते हैं, मोटे अनाज भी दे सकते हैं। साथ ही साथ उनकी उम्र के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है फूड की उसको बढ़ाते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही डाइट आप उन्हें कई सालों तक दे रहे हैं, इससे उनके दिमाग और शरीर में कहीं ना कहीं कमजोरी देखी जा सकती है। सो युवा पीढ़ी की अगर बात करूं तो इन्हें मांस प्रोटीन से, मतलब प्रोटीन जो है मांस के थ्रू, मछली, अंडे, दाल, सोया मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सब से मिल सकता है, तो इसका प्रचुर मात्रा में सेवन करें। विटामिंस के लिए अनाज हैं, ब्राउन राइस हैं, गेहूं हैं, मोटे अनाज हैं, बाजरा, जौ, रागी आदि का जो कह सकते हैं ना आटा वगैरह सेवन अपने डाइट में बढ़ाएं, जिससे कि उनकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड रहे। अगर बूढ़ों की बात करें, वृद्ध है आपके घर में, तो उनको आप कौन सा फूड दे सकते हैं? तो उनको स्कीम्ड दूध दे सकते हैं यानी कि लो फैट दूध दे सकते हैं। दही, रायता, छाछ, पनीर, अंडे, बिना छिलके वाली दालें। इसके अलावा विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, इनके लिए आप सीजनल फल, सीजनल सब्जियां और अनाजों में शामिल करने के लिए आप चावल, दलिया और पतले अनाज दे सकते हैं। इसके साथ साथ रात को भोजन विशेष रूप से इन्हें हल्का दें, क्योंकि पाचन क्रिया इनकी वैसी नहीं होती जैसी इनकी पहले होनी चाहिए। और ना खाने की बात तो आप सभी को पता है हमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो कोशिश करें कि जो
फास्ट फूड है, फास्ट फूड से मिलने वाली साथ में चटनी, क्योंकि उसमें क्या होते हैं प्रिजर्वेटिव्स के साथ साथ कलर भी डले होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन को डिसबैलेंस्ड करते हैं। सो इन्हीं सारी जानकारियों के साथ मैं ये लास्ट में कहना चाहूँगी, खूब हाइड्रेटेड रहें, घर में अपने जो कहते हैं ना कि ORS वगैरह का घोल हमेशा रखें, नमक चीनी का पानी का घोल सबको दें और कोशिश करें कि हमेशा अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस रखें। सो इसी के साथ अपनी RJ बीना को दे इजाज़त। आप सुन रहे थे विज्ञानपुर की विज्ञानशाला। विज्ञानशाला का ये अंक मुझे पता है आपको बैलेंस डाइट को इम्प्रूव करने में ज़रूर मदद करेगा। बाय, टेक केयर। इसके बाद आप सुनिए अपना फेवरेट शो गोंडा मैसेज मसाला। स्टे ट्यून्ड।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM, और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
0: सभी विवाहित और अविवाहित हमारे फीमेल्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। और भाई आज है हरितालिका तीज, और इसके बारे में तो मुझे लगता है सबने बहुत कुछ जान लिया होगा, सबको बहुत कुछ पता चल गया होगा। एंड यस, पता भी चलना चाहिए, हरितालिका तीज साल में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है शिव जी के नाम, क्योंकि इस दिन कांवरिया लोग जल ले लेकर निकलते हैं। और भाई गोंडा शहर में तो तीन दिन से कांवरियों की ही धूम मची है, जहाँ देखो रंग बिरंगे कपड़ों में महादेव का नाम लेते हुए बोलबम करते हुए कांवरिया पूरी श्रद्धा से निकल पड़ते हैं। और निकले भी क्यों ना, शिव के लिए तो सब कुछ सर्वस्व लुटाने के लिए हम तैयार रहते हैं, क्योंकि शिव ही हैं जो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। और ये खास व्रत तो भाई औरतों के लिए होता है, फीमेल्स के लिए होता है, वैसे ये एक अवधारणा है हमारी। मेरे हिसाब से तो ये व्रत और ये दिन हर किसी के लिए है, अगर श्रद्धा से महादेव से कुछ भी मांगा जाए, महादेव सब कुछ देते हैं। पति की लंबी आयु हो, या मनपसंद पति हो, या आपके मनपसंद नौकरी हो, आपकी हर इच्छा को महादेव पूरा करते हैं। कहते हैं तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे, महादेव को गुस्सा जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी वो प्रसन्न भी हो जाते हैं। आपके एक लोटा यानी कि एक लोटा जल से ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। लोग ना जाने क्या क्या चढ़ाते हैं महादेव को, लेकिन महादेव तो हमारी श्रद्धा के भूखे हैं। और श्रद्धा दिख भी रही है पूरे गोंडा शहर में, नंगे पांव पैरों में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन जो बोल बम के नारे हैं उसमें तो कमी कहीं से भी नहीं दिख रही, और दिखनी भी नहीं चाहिए। वैसे आप लोग बताएं, आप लोगों ने कितनी पूजा की और कहाँ कहाँ पे महादेव को जल अर्पित किया? अलग अलग जगह अलग अलग शिव के प्रगट शिवलिंग की अवतारित प्रतिमाएं हैं और लिंग हैं, जहाँ पे शिव का अभिषेक किया जाता है। जल से, दूध से, शहद से, गन्ने के रस से, अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करते हुए नाना प्रकार से पूजा की जाती है। और मुझे लगता है कि शिव की स्तुति भी जगह जगह अलग अलग रूपों में होती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि महादेव की जो स्तुति है वो उनको प्रसन्न करने के लिए हम करते हैं, और हर प्रकार से कोशिश करते हैं कि महादेव हमारे प्रसन्न हो जाए और हमें मनवांछित वर जो है वो दे दें। और एक स्तुति जो मुझे काफी दिनों से याद थी और सोचा था आप लोग के साथ साझा करूंगी, वैसे स्तुति कुछ ऐसी है

शिव की स्तुति शिव को अर्पित करती हूँ मैं आप सभी श्रोताओं के तरफ से, और मैं चाहती हूँ शिव हमारे प्रसन्न हो जाए। आइए छोटा सा एक लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और फिर आते हैं शिव की धुन में, आज मगन हो जाते हैं।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन स्टेट्यून एवरीवन। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। कैसा लगा आप सभी को सरप्राइज, मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बता।

once again welcome back in your show Gunda Message Masala with your RJ Simple who is not so simple aur aap definitely sun rahe ho Radio Gyanasthali 89.6 FM Gonda Sheher ki Dhadkan. So dosto kehna hai ki dilon mein hausla aur soch mein tufaan rakhte hain. दिलों में हौसला और सोच में तूफान रखते हैं वो इंजीनियर ही हैं जो पत्थरों में भी जान रखते हैं। नमस्ते आदाब और सत श्री अकाल। शाम की इस आपकी बैठक में महफिल में गोंडा मैसेज मसाला के अपनी सब्स्टिट्यूट आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में आपकी हमनवा के साथ में आप सभी का स्वागत है आज 15 सितंबर के दिन। जी हाँ दोस्तों, कितने अच्छे अच्छे दिन मिलते हैं ना मुझे आप लोग के साथ में सेलिब्रेट करने के लिए। सच में आज का दिन भी बहुत स्पेशल है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों मैंने मतलब गणपति बप्पा गणेशोत्सव का आज दूसरा दिन है। हाँ है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है। आई नो आप लोग जानते हैं, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाइए और थोड़ा सा दिमाग को चलाने के बाद मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आखिर आज मेरे दिमाग में किस चीज का कीड़ा चल रहा है। लेकिन उसके पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। हरीश चंद्र सविता जी आपका स्वागत है। जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से आपका भी स्वागत है। धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, अरविंद फ्रॉम मनकापुर, सुरेश कुमार जी चौक से, निबर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी गोंडा से, सबीहा गोंडा से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो गोंडा मैसेज मसाला में। और हाँ दोस्तों, आज 15 सितंबर का दिन सच में बहुत खास है। एक तरफ हमारे प्यारे गणपत बप्पा की भक्ति का उल्लास और दूसरी तरफ हमारे देश के सबसे बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर्स यानी इंजीनियर्स का दिन। जी हाँ, तो चाय की चुस्की लीजिए और अगले कुछ मिनटों तक बस अपनी इस हमनवा अपनी इस खट्टी मीठी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि आज की शाम होने वाली है दो गुनी तीन गुनी जितना भी चाहे उतना ज्यादा स्पेशल। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में और आपके ऐसे म्यूजिकल गीतों का आगाज ऐसे होता रहेगा और आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल ऐसे ही नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की बौछार करने वाली है। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन अपने आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल।

वेलकम बैक इन योर शो गुंडा मैसेज मसाला वीडियो आर जस्ट सिंपल इज नॉट सिंपल और आप सुन रहे रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। कैसे हो आप सभी? और हरीशचंद सविता जी ने हमारे पास में अपनी फरमाइशी गीत को भी भेज दिया। बिल्कुल डेफिनेटली आपके गोंडा मैसेज मसाला में जब वक्त होगा आपके फरमाइशी गीतों का तो जरूर प्ले किया जाएगा। फिलहाल चलते हैं हमारे गोंडा मैसेज मसाला की इस बहुत ही खूबसूरत सी महफिल की तरफ, जहां सिर्फ और सिर्फ शांति, सुकून और जज्बात बिखरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, गणेश उत्सव का आज दूसरा दिन है। अक्सर हमारी पूजा पहले दिन की भव्य स्थापना, ओ माय गॉड, भगवान जी को हम लेके आते हैं, उनका वेलकम करते हैं और अंतिम दिन के भावुक विसर्जन पर केंद्रित हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि ये बीच का समय जो होता है, ये दूसरा दिन आध्यात्मिक रूप से हमारे जीवन के लिए कितना गहरा और महत्वपूर्ण है? नहीं ना, जिन लोग को पता होगा उनके लिए तो अच्छी बात। मुझे नहीं पता था, मुझे काफी कुछ बहुत बहुत बहुत टाइम बाद पता चल रहा है, लेकिन जो भी पता चल रहा है एकदम सटीक पता चल रहा है, इससे मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है। दोस्तों, शास्त्रों और लोगों की मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन स्थिरता और साधना और आत्मीयता का दिन है। पहले दिन जब ढोल नगाड़ों के साथ हम बप्पा को अपने घर की चौखट और अपने दिल के कोने में स्थापित करते हैं, तो दूसरे दिन से कोलाहल थोड़ा थमता है और एक शांत गहरा रिश्ता जन्म लेता है। और यही दिन तो हमें सिखाता है कि किसी शुभ संकल्प को सिर्फ शुरू कर देना ही काफी नहीं होता मित्रों, असली साधना तो उस संकल्प को अपनी रोजमर्रा की, अपनी डेली की दिनचर्या में ढालना और स्थिर रखना है। आपको पता है आज के दिन बप्पा को मोदक की मिठास के साथ साथ विशेष रूप से दूर्वा घास अर्पित की जाती है। अब इसके पीछे का भी लॉजिक देखिएगा। आपने कभी इस नन्ही सी दूर्वा पर ध्यान दिया है? कितनी भी कड़कती धूप हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, लेकिन दूर्वा कभी सूखकर खत्म नहीं होती है ना। इतनी कड़कती धूप होती है, हम सब सूख जाते हैं, हम सब मुरझा जाते हैं इतनी कड़कती धूप से, लेकिन ये दूर्वा घास कभी नहीं खत्म होती, ये नहीं मुरझाती, वो जमीन से जुड़ी रहती है और हमेशा हरी भरी रहती है। ठीक एकदम उसी तरह जैसे बाप्पा का ये दूसरा दिन हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है, जैसे दूर्वा घास पढ़ाता है। हालात चाहे जितने भी कठिन हो दोस्तों, हमें अपने उम्मीदों, अपने संस्कारों और अपनी मुस्कान को हमेशा दूर्वा की तरह हरा भरा रखना चाहिए। और अगर हम थोड़ा गहराई से, बहुत थोड़ा सा, बहुत तिन्नू सी इन्नी सी गहराई से सोचे ना दोस्तों, तो हमारे प्यारे विघ्नहर्ता बप्पा और हमारे देश के इंजीनियर्स, क्योंकि आज है इंजीनियर्स डे, इन दोनों में एक बहुत ही बड़ी सी इक्वालिटी है। ये बस मैं नोटिस कर रही थी ऐसे आज की इस शो में थोड़ा सा जान डालने के लिए, और जब मैं ये रिसर्च कर रही थी तो मैंने नोटिस किया कि हाँ, पापा भी हमारे विघ्नहर्ता हैं और इंजीनियर्स भी हमारे कम विघ्नहर्ता थोड़ी हैं, यानी जो हर अड़चन को हर ले, हर मुश्किल का रास्ता निकाल दे। और हमारे इंजीनियर्स का तो भाई काम ही यही है ना, चाहे कितनी भी जटिल तकनीक हो, कोई दुर्गम पहाड़ हो या कोई इम्पॉसिबल सा दिखने वाला ढांचा, वो अपनी सोच और अपनी लगन, अपनी हार्डवर्क से हर समस्या का समाधान ढूंढी लेते हैं एकदम विघ्नहर्ता बप्पा की तरह। तो ये इक्वालिटी मुझे दिखी, आप लोगों को दिखी कि नहीं दिखी मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और आप लोगों को, आप लोगों के आसपास, आप लोगों के घर में कौन कौन इंजीनियर्स हैं, आप मुझे ये भी लिख के चैट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। और आप लोगों ने बप्पा का कल वेलकम किया, लेकिन आज भाई मोदक खाने का लालच अभी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी मुझे लिख के जरूर बताना। और जिन मित्रों ने मेरे
अकेले अकेले मोदक खाने का सोच रखा है। मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि मोदक को ना मिल बांट के खाना, क्योंकि मिल बांट के खाने से प्यार और बढ़ता है और विघ्न हर्ता बप्पा हमारे और ज्यादा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सो चलिए चलते एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद में आएंगे अपनी गोंडा मैसेज मसाला की महफिल में, और आप सुन रहे हैं डेफिनेटली आपका अपना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: अगेन वेलकम बैक इन योर शगुना मैसेज मसाला विद योर हर्ट जस्ट सिंपल इज नॉट सो सिंपल। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो जग्गू दादा जी एमपी से श्याम नाम की पगली मींस सुमित्रा जी गोंडा से आपका भी स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने गोंडा मैसेज मसाला की महफिल में आपकी अपनी आज की सब्स्टिट्यूट आरजे सिंपल के साथ में। और दोस्तों आज की तारीख है 15 सितंबर। आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि आज पूरे देश में मनाया जा रहा है नेशनल इंजीनियर्स डे। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे। ये दिन भारत के सबसे महान सिविल इंजीनियर और भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें दुनिया सम्मान से सर एमबी भी कहती है। दोस्तों आज से लगभग एक सदी पहले, जब ना तो आज जैसी आधुनिक मशीनें थी, ना कंप्यूटर थे और ना ही 3D डिजाइनों का दौर था, उस दौर में सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने ऐसे ऐसे बांध, ऐसे ऐसे पुल और ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक बाढ़ द्वार बनाए और सिंचाई तंत्र बनाए जिनकी मजबूती और इंजीनियरिंग का लोहा आज भी पूरी दुनिया मानती है। मैसूर का वो मशहूर कृष्णराज सागर बांध हो या हैदराबाद शहर का वो बाढ़ से बचाने का मास्टर प्लान, सर एमबी की सोच अपने समय से दशकों आगे थी। मेरे मित्रों, उनका एक ही मंत्र था, काम करो बातें कम करो, और उनका जीवन अनुशासन की सबसे बड़ी मिसाल थी। लेकिन रुकिए, थमिए, क्या आप लोगों को लगता है कि इंजीनियर सिर्फ वही होते हैं जो IIT या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से डिग्रियां लेकर निकलते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियों के चमचमाते कांच वाले कैबिन में बैठकर भारी भरकम कोडिंग करते हैं? बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो इंजीनियर तो हमारे आसपास मौजूद हर वो इंसान है जिसके पास किसी समस्या को हल करने का जज्बा हो, जो अपनी समझ, अपने एक्सपीरियंस और हमारे खास देसी जुगाड़ से किसी बंद पड़ी या टूटी चीज को फिर से जिंदा कर दे, है ना? वो भी तो इंजीनियर है ना। अब आप खुद ही सोचिए, जब हमारी मम्मी टीवी का रिमोट ना चलने पर उसे जोर से ठोककर थोड़ा घुमाकर वापस चालू कर देती हैं, तो क्या वो किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से कम है? जब पापा साइकिल या बाइक की उतरी हुई चेन को एक पतली तार या पेचकस के सहारे दो मिनट में छक्के से जोड़कर चमका देते हैं, या जब घर का कोई सदस्य खराब हो चुके प्लग को टेप लगाकर काम चलाऊ बना देता है, तो यकीन मानिए वो भी हमारे घर के चीफ ऑपरेटिंग इंजीनियर ही हैं। भारत में तो हर घर में एक ऐसा हिडन इंजीनियर जरूर छुपा बैठा है। और अगर मैं एक पर्सनल बात बताऊं दोस्तों, तो मेरे घर में भी एक ऐसा हिडन इंजीनियर नहीं है, मतलब एकदम वो हिडन क्या, वो तो निकल के उमड़ उमड़ के उसकी इंजीनियरिंग आती है। प्रेस खराब है बना देगा, है ग्राइंडर खराब है बना देगा, मिक्सर खराब है बना देगा, जो चीज हम दुकान पे लेके जाएंगे वो कहेंगे इसका सामान ये चेंज होगा, वो जुगाड़ से ही घर में कहीं ना कहीं से ढूंढ के ऐसे छोटा सा DIY करके बढ़िया, बड़े कमाल का इंजीनियर है भाई, बहुत क्रिएटिविटी, वो आर्टिस्ट भी है वो इंजीनियर भी है, मेरा भाई है। तो ऐसे आप लोग के भी घर में कोई ना कोई होगा, और इनफैक्ट आपको तो आपको पता है क्या, वो इतनी इंजीनियरिंग करता है और मैं उसकी मतलब असिस्टेंट बनी रहती हूँ, तो मुझे भी थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग आ गई है। तो मैं अपना कूलर खुद ठीक कर लेती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ अगर टेबल फैन है तो उसको भी खुद सही कर लूँ, सीलिंग फैन नहीं सही कर पाती हूँ दोस्तों क्योंकि इतनी छोटी हूँ, पहुँचते मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर टपक के गिर गई तो पंखा ही रह जाएगा, है ना। तो ऐसे सबके घर में इंजीनियर्स होते हैं और उनके साथ में एक मेरी तरह असिस्टेंट इंजीनियर भी होता है। तो उन सभी इंजीनियर्स को आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से हैप्पी इंजीनियर्स डे। लेकिन दोस्तों मजाक से हटके अगर हम जरा ध्यान से अपनी सुरफ्तार भरी आधुनिक दुनिया पर नजर डालें तो एहसास होगा कि इंजीनियर्स हमारी सांसों की तरह हैं। दिखते नहीं लेकिन उनके बिना जीवन थम सा जाएगा दोस्तों। सुबह उठने के लिए जिस स्मार्टफोन में आप अलार्म लगाते हैं, जिस ऐप पर आप मेरा ये शो लाइव सुन रहे हैं, जिस आलीशान इमारत की छत के नीचे आप सुरक्षित बैठे हैं और इस भीषण गर्मी में जिस पंखे कूलर या एसी की ठंडी हवा आपको सुकून दे रही है, इस हर एक चीज के पीछे किसी ना किसी इंजीनियर की रातों की नींद, उनका डेडिकेशन और उनका दिमाग लगा है। सड़कें बनाने वाले सिविल इंजीनियर्स हों, हमारे डिजिटल वर्ल्ड को संभालने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हों, मशीनों में जान फूंकने वाले मैकेनिकल इंजीनियर्स हों, या जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को डिज़ाइन करने वाले बायोमेडिकल इंजीनियर्स, ये सब पर्दे के पीछे रहकर बिना किसी वाहवाही की उम्मीद किए हमारी और आपकी ज़िंदगी को हर पल आसान, सुरक्षित और बेहतर बना रहे हैं। और दोस्तों अगर सच कहूँ तो ये वो सिर्फ ढांचों या कोर्ट्स का निर्माण नहीं करते हमारे इंजीनियर्स, ये तो हमारे देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए आज का ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि उन सभी अनदेखे हाथों, दूरदर्शी दिमागों और उनके कभी ना हार मानने वाले जज्बे को दिल से सलाम करने का दिन है। तो आज अपने आसपास के हर उस इंसान को जो आपकी किसी मुश्किल को आसान बनाता है, जोर से बोलिए हैप्पी इंजीनियर्स डे टू यू एंड लव यू टू यू एंड थैंक यू सो मच टू यू एंड यस जस्ट और जो भी आप कुछ भी कहना चाहते हो एक्स वाई जेड। इनफैक्ट मेरी तरफ से तो मैं सबको बोल रही हूँ हैप्पी इंजीनियर्स डे। चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे अपने अपने अपने अपने गोंडा मैसेज मसाला की महफिल में अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों चलिए एंजॉय करते हैं ये थ्री इडियट्स का बहुत ही खूबसूरत सा गाना, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस वन ग्रो अप वंस अगेन, ला ला ला ला। Stay tuned.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

क्रिस्प म्यूजिकल ब्रेक के बाद में आपके अपने गोंडा मैसेज मसाला की महफिल में आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो मेरे इंजीनियर्स जाग जाओ, एक भी इंसान ये नहीं बोल रहा कि अपने घर का इंजीनियर मैं हूँ। अरे आप तो बताओ ना कि आप अपने घर के इंजीनियर हो, आप भी अपना वो पर्सनल एक्सपीरियंस साझा करो कि मैं ये सही कर रहा था, मेरी माँ ने बोला कि बेटा तू बिगाड़ देगा, खराब कर देगा तो तेरा सर फोड़ दूंगी या फिर तेरा हाथ तोड़ दूंगी, लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं होता, आप फटाफट से कोई ना कोई जुगाड़ लगा के वो चीज सही कर देते हो और आपकी मम्मा खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है जिसका जवाब नहीं है, कि खुशी में ही डांटने लगती है कि अरे कितना रायता फैला दिया एक काम करने के लिए, जाओ भैया फिर मम्मी वो रायता साफ करेंगे, है ना। बताओ ना ऐसी कुछ एक्सपीरियंस आप लोग भी अपने हैं, हर एक इंजीनियर है अपनी अपनी जिंदगी में अपनी अपनी जगह पे। और दोस्तों जब हम बप्पा की बात करते हैं तो हम उन्हें सृष्टि के रचयिता और प्रकृति से जुड़ा हुआ पाते हैं ना, बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही जुड़े हुए हैं हमारे गणपत बप्पा जी प्रकृति से। और जब हम इंजीनियर्स की बात करते हैं तो हम उन्हें भविष्य के निर्माता कहते हैं, लेकिन सोचिए क्या होगा जब बप्पा का ये प्रकृति प्रेम और हमारे इंजीनियर्स की नई सोच एक साथ मिल जाए, जैसे आज कैसा शुभ मिलन हुआ है ना दोस्तों। आज की तारीख में इंजीनियरिंग नाम ही कितना बड़ा है, सिर्फ बड़ी इमारतें बनाने या मोबाइल एप्स लिखने तक सीमित नहीं रह गई है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। एक तो पता नहीं क्या है, मोदी जी की आदत पड़ गई है मुझे दोस्तों मित्रों बोलने की। एक तो उनका मित्रों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं पसंद है, इसीलिए उनका मित्रों मेरे मुँह से निकला करता है फिलहाल। मित्रों है ना, अच्छी बात है, दोस्त की जगह मित्रों ही बोलना चाहिए। फिलहाल चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है हमारी धरती को बचाना, और मुझे ये कहते हुए बहुत ज़्यादा बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे देश के युवा इंजीनियर्स अब ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं। इस गणेशोत्सव पर ही देख लीजिए, पहले जहां प्लास्टर ऑफ पेरिस मींस पीओपी की मूर्तियों से हमारी नदियों और तालाबों को नुकसान पहुंचता था, वहीं आज हमारे युवा इंजीनियर्स और इनोवेटर्स ने ऐसी इको फ्रेंडली मूर्तियां डिज़ाइन की हैं जो मिट्टी, गोबर और पौधों के बीजों से बनी हैं। विसर्जन के बाद वही मूर्ति एक खूबसूरत पौधे का रूप ले लेती है। इसे कहते हैं सच्ची इंजीनियरिंग, जो समस्या भी हल करे और प्रकृति को मुस्कुराने का एक बहुत ही खूबसूरत सा मौका भी दे। दोस्तों सोलर एनर्जी से चलने वाले घर हों, सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां मींस ईवीज हों, या प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकल करके बनाई जाने वाली मजबूत सड़कें, ये सब इस बात का सबूत है, प्रूफ है कि आज का इंजीनियर सिर्फ मशीनें नहीं बना रहा है ना। प्रूफ तो है दोस्तों कि आज के इंजीनियर्स सिर्फ मशीनें नहीं बना रहे, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सांस लेने योग्य एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्लू स्काई मींस नीला आसमान और हरी भरी एकदम ग्रीनरी वाली धरती तैयार कर रहा है। कहते हैं ना कि तकनीक वही सही जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना इंसान का जीवन आसान बनाए, इसलिए आज के दिन हमें उन सभी यंग रिसर्चर्स, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स और इनोवेटर्स की सोच को सलाम करना चाहिए, जो दिन रात प्रयोगशालाओं में बैठकर हमारे कल को सुरक्षित बनाने की कोशिश में लगे हैं। अगर आपके घर में ये या पहचान में कोई ऐसा स्टूडेंट या युवा है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली तकनीक पर काम कर रहा है, तो आज उसे कॉल कर आप उसकी पीठ थपथपाइए, क्योंकि असली विघ्नहर्ता तो वही हैं जो हमारी धरती के विघ्नों को दूर कर रहे हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने, मेरी बातों से अगर आपके मतलब मेरे विचारों से अगर विचार मिलते ना हो तो आप तुरंत काउंटर कर सकते हैं कि हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं, ये भेजे मैंने गुस्सा है ना दोस्तों। सो चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में, और आपको भी मौका देती हूँ आपके दिमाग से जो भी निकल रहा हो उसको आपके चैट बॉक्स में लाने तक का। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में। स्टे ट्यून्ड।

किस बात से डर रहा है यार? एज डिफरेंस। हर लड़की है ना अपने होने वाले में फादर फिगर ढूंढती है। फिगर उसके पास है, फादर तू है।

आपकी नींद और आपके चैन को किसने चुराया है मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। फिलहाल एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शो गुना मैसेज मसाला में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। दोस्तों कैसा रहा आज का गोंडा मैसेज मसाला का सफर आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और मेरे प्यारे दोस्तों, बप्पा के इस पावन पर्व की मिठास, दूरबा से मिली अटूट उम्मीद और जीवन के जीने की प्रेरणा, और हमारे देश की प्रगति की नींव रखने वाले तमाम इंजीनियर्स के नाम सजी आज की इस ढलती शाम अब अपने खूबसूरत पड़ाव की ओर बढ़ रही है। क्यों, सही कहा ना मैंने? समय का पहिया कितनी तेजी से घूमता है ना, जब हम दिल से जुड़ते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता, लेकिन जाते जाते इस ढलती शाम और आपकी गहरी सोच के नाम मशहूर शायर अहमद फराज की एक बेहद खास और दिल को छू लेने वाली नज्म के ये पंक्तियां आपके दिल के सबसे करीब वाले कोने में छोड़ के जाना चाहती है आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल। तो क्या इरशाद इरशाद है दोस्तों? तो अर्ज किया है कि शमा हर रंग में जलती है शहर होने तक, शमा हर रंग में जलती है शहर होने तक, जिंदगी एक शबे गम है तो गुजर जाएगी, रास्ते में जो मिले हाथ मिलाते चलिए। ओ माय गॉड, रास्ते में जो मिले हाथ मिलाते चलिए, रास्ता कट ही जाएगा सफर करते करते। क्या खूब कहा है अहमद फराज जी ने, कितनी बड़ी बात कह दी है ना उन्होंने इतनी छोटी सी इतनी चंद लाइन में। दोस्तों, जीवन का ये जो सफर है ये किसी सीधी सड़क जैसी नहीं है, इसमें कभी धूप मिलेगी तो कभी घनी छांव, कभी रास्ते आसान होंगे तो कभी सडनली कोई बड़ा सा विघ्न, कोई ट्रेजेडी, कोई ना कोई ऐसा कुछ ऐसा सर्वाइवल मोड वाला सिचुएशन आ जाएगा कि आके सामने खड़ा हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। लेकिन याद रखिएगा, जैसा बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, मेरे मित्रों याद रखिएगा कि जैसे अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सवेरा भोर सवेरे की पहली किरण को रोक नहीं सकता अंधेरा, चाहे जितना घनघोर हो जाए। ठीक वैसे ही जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, या कोई अड़चन कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, बप्पा की असीम कृपा, हमारी अपनी ईमानदारी, हमारा हार्डवर्क और हमारे आसपास मौजूद किसी न किसी विघ्नहर्ता की मदद से हर बंदा अपने अपने आप अपने अपने बंद बंद रास्ते को खोल ले जाता है। बस जरूरत है तो एक छोटी सी दूरवा घास की तरह बने रहने की। कितनी भी कड़कती धूप पड़े, जमीन से अपनी जड़ें जोड़े रखिए, कभी मुरझाइए मत और अपनी उम्मीदों को हमेशा हरा भरा रखिए। अपने भीतर के उस विश्वास के दिए को कभी भी बुझने मत दीजिए, क्योंकि वही दिया आपकी सबसे अंधियारी रात में भी रोशनी का रास्ता दिखाएगा। सो आज के दिन हमने उन इंजीनियर्स को डेडिकेट किया है आज के इस दिन को, जो बिना किसी शोर शराबे के हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। तो आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं और सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें तो जरा ठहरिए और अपने आसपास के किसी ना किसी ऐसे इंसान को ज़रूर याद कीजिए जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ज़रा सी सहूलियत या आराम आया हो, चाहे वो घर का कोई सदस्य हो, कोई दोस्त हो या कोई अनदेखा हाथ। अपने दिल ही दिल में उन्हें एक सच्चा सा शुक्रिया ज़रूर कहिएगा। आभार व्यक्त करने से दिल का बोझ बहुत हल्का हो जाता है और रात की नींद बेहद सुकून भरी आती है। सो दोस्तों, अब घड़ी का इशारा बता रहा है कि आज के लिए मुझे अब आपसे चंद मिनटों में इजाजत लेनी पड़ेगी। तो इजाजत मैं आप सभी से लूंगी, लेकिन एक वादा है, मैं कल फिर लौटूंगी, लेकिन आपके अपने फरमाइशी की महफिल में, जहां गीत बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से। सो दोस्तों, चलिए इंजॉय करते हैं पहले हरीश चंद्र सविता जी ने एक छोटा सा
अपना डिमांडेड सॉन्ग भेजा है, तो उनके सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद में, और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ये डिमांडेड सॉन्ग है हरीशचंद सविता जी की तरफ से। ओ माय गॉड, इतना सैड सॉन्ग।

ये तो डिमांड थी हरीश चंद सविता जी की। बढ़ते हैं अगले डिमांडेड सॉन्ग की तरफ। अगली डिमांड हमारे पास में आई भी है गोंडा मैसेज मसाला शो में जग्गू दादा जी की तरफ से। उनको सुनना है गणेश उत्सव वाला, एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। तो एंजॉय करते हैं शहनाज अख्तर की आवाज में, माता है गौरा पिता महेश, सिर्फ और सिर्फ हमारे जग्गू दादा मीन्स जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दोस्तों ये डिमांडेड सॉन्ग था जग्गू दादा का, जुगल किशोर वर्मा जी का एमपी से। बढ़ेंगे हमारे आज के अगले डिमांडेड सॉन्ग की तरफ। श्याम नाम की पगली मीन्स सुमित्रा जी को सुनना है गाना घर में पधारो गजानन जी। सो एंजॉय करेंगे इनके डिमांडेड सॉन्ग को। और इसी के साथ में अब आपकी गोंडा मैसेज मसाला की महफिल से आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट्स को सिंपल लेना चाहेगी अलविदा। सो फरमाइशी की महफिल आपकी मतलब गीत आपके नाम से बजेंगे, जरूर बजेंगे, डेफिनेटली बजेंगे, लेकिन आपकी आरजे बीना के साथ में। सो चलती हूँ अभी अपनी आरजे सिंपल नॉट्स को सिंपल को इजाजत दीजिएगा। सो दोस्तों अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट्स को सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समोन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। लेकिन आपके अपनी फरमाइशी की महफिल में जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। तो कल मिलते हैं फरमाइशी में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बे इंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल, एंजॉय करते हैं श्याम नाम की पगली मीन्स सुमित्रा जी की फरमाइश घर में पधारो गजानन जी। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

रैबिट बनके जो घूम रहा है वो कोई और नहीं है, वो कोई अपना है। फिलहाल आज पूरे शहर में, क्या पूरे देश में, रैबिट के दोस्त यानी कि चूहा, चूहे का बोलबाला है, क्योंकि उसके जो कहते ना कि ओनर आए हुए हैं, यानी कि गणेश जी शहर में आ गए हैं और हर जगह चल रहा है गणपति बप्पा मौर्या का नारा। और इस नारे के साथ चलिए हम भी लगाते हैं जयकारा और गाना लेते हैं ये प्यारा सा महेंद्र का। कौन सा गाना है चलिए सुनते हैं।

ये बताइए, वैसे तो गाने सुनने का बड़ा शौक आप लोग रखते हैं, इसमें बताइए हीरोइन कौन है इस गाने में? मतलब दिल तेरा आशिक फिल्म का नाम तो मैं बता दूंगी तो आप लोग गेस कर लेंगे। आप बताइए कि इसमें हीरोइन कौन है? हीरो मैं बता देती हूँ, इसमें सल्लू भाई हैं। और अभी गाना सुनते हम लोग, चलिए आशु की फरमाइश का।

0: देखने के लिए, लेकिन क्या करें, हम जब जिसको पसंद कर लेते हैं उसको हम देखते ही रह जाते हैं।
1: किसी का ईमान बेईमान होने
0: अगला गाना सुनने की बारी है।
1: संभाली।

तो अगला गाना है बड़ा प्यारा सा, जिसकी फरमाइश है धर्मेश जी की। सुन लेते हैं, गाना है सपना चौधरी का, तेरी आँख्या का वो काजल। ओह

0: लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है और उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार के आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं और उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: I-20-26 में DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि एक ऐतिहासिक समझौता है।
3: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपए से ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपए और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 43 अरब 81 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर 26 अरब 86 करोड़ डॉलर पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सके और किसानों को लाभ पहुंचा सके। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
3: We need to develop sports infrastructure.
4: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
3: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
0: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और NEET प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
5: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल

0: सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने एचआईवी एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए लगाया गया है। इसमें राइड कन्फर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तो चलिए सुनते हैं अपने पसंद के गाने। है पूनम जी की, पूनम की फरमाइश का गाना ये आपके सामने।

पिया मोरे भोले भोले, कहाँ ले जा रहे हैं हमें तो नहीं पता, लेकिन दुनिया का हालत क्या हुई है ये गाने जानेंगे, फरमाइश विजय की।

अगला गाना, ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल, सोनिया की फरमाइश पे।

0: चलिए अगला गाना सुनते हैं। बड़ा प्यारा सा गाना है जो कि फरमाइश है हमें तुमसे। अरे ये कौन सा गाना है? गाना तो बहुत अलग सा है। तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ओहो क्या बात है, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, लेकिन मुझे ये गाना मिल नहीं रहा है। तो चलिए अगली फरमाइश की तरफ चलते हैं, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ये गाना तो मैंने नहीं सुना, लेकिन चलिए क्या करते हैं, अगला गाना सुनते हैं। पप्पू जी की फरमाइश का है गाना, गाना कौन सा है देखते हैं। गोविंदा रे गोपाला, क्या बात है।
1: गोविंदा रे गोपाला, गोविंदा।

0: हल्की बोलते भितर तारा तालवरी ढोलती गोविंद गोपाला नंदाचा कान्हा खाली धिंगाणा संगीताचा गोपाळांचा रंग तो मिळा।
1: तो चलिए अगला गाना सुनते हैं। ये गाना है हमारी प्रीति जी की फरमाइश का, प्यार की सच्चाई।
2: मेरी जिंदगी में अमावस से भी काली एक रात हुई, मेरी जिंदगी में अमावस से भी काली
1: सच्चाई बयां करता हुआ
2: उस रात केवल गम की ही बरसात हुई। ये कहानी उस रात की सच्ची घटना,
1: फिलहाल सच्चाई बयां करता हुआ सॉन्ग है, लेकिन गाना कौन सा सुनना है प्रीति जी को ये तो नहीं पता। हमने सोचा ये सच्चाई वाला कोई गाना है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये गाना तो नहीं है। हम अगला गाना सुन लेते हैं जिसकी फरमाइश आई है अभिजीत की तरफ से, और ये गाना है तुम अगर साथ देने का वादा करो। मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं जैसे कि आरजे आपका सुना रहा है। चलिए सुनिए ये प्यारा सा गाना।

अरविंद जी आपको लिख के भेजा तो बिल्कुल, लेकिन आपने अपने गाने की फरमाइश नहीं की। आपको अच्छा सा कोई भी गाना हमारी प्लेलिस्ट का सुनना है तो बिल्कुल आपके लिए बहुत प्यारा सा गाना मैं लगा के जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। जी हाँ, हमारे साथ उपस्थित धर्मेश त्रिपाठी जी सर आ गए। लव यू सर, राइट टू लव यू। धर्मेश जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगी। हमारी बहुत ही प्यारी बहन गीता जी हमको दिखाई पड़ रही हैं। शुभ संध्या जी, आपको भी प्रणाम। अरविंद जी हैं मनकापुर से भाई, शुभ संध्या। मनुष्य जी आपको भी शुभ संध्या। तेरे होकर भी तेरे हो न पाए, देख कितने बदनसीब हैं। क्या बात है। नहीं नहीं, बदनसीब आप नहीं हैं साहब, बदनसीब तो वो है जो आप, जिसने आपको खो दिया। छूट गया है साथ तुम्हारा, फिर भी जिंदा हूँ। तुम क्या जानो, मैं खुद से शर्मिंदा हूँ। आह, ये एक एहसास है साहब, और ये एहसास ही तो है जो एक इंसान को दूसरे इंसान के ख्यालों से जोड़े रखता है। आज जिस शायर को आपके बीच लेकर आए हैं, उनका नाम वर्तमान समय का एक बहुत ही मोहतरम नाम है। उनको हम सभी नदीम शाद के नाम से पुकारते हैं। उर्दू गजलों की और मुशायरों की दुनिया का एक ऐसा नाम जो बहुत ही कम उम्र में एक बहुत बड़ा नाम हो गया। मैं सत काका जी भी हैं, शुभ संध्या आपको भी। उन्होंने लिखा कि हम ये कैसा मलाल कर बैठे, हम ये कैसा मलाल कर बैठे, दिल का तुमसे सवाल कर बैठे। हम ये कैसा मलाल कर बैठे, दिल का तुमसे सवाल कर बैठे। प्यार करना हमें ना आया मगर, प्यार करना हमें ना आया मगर, इश्क में हम कमाल कर बैठे। खोए थे हम तेरे ख्यालों में, खोए थे हम तेरे ख्यालों में, पर हकीकत ख्याल कर बैठे। जिक्र तेरा जबान पर लाकर, जिक्र तेरा जबान पर लाकर, अपना चेहरा गुलाल कर बैठे। आपको चाहते हैं उनसे कहा, आपको चाहते हैं उनसे कहा, अरे हम भी कैसी मजाल कर बैठे। हमने उनसे कहा कि आपको चाहते हैं, और ये सुन करके मतलब सामने वाले का तो ये रहा होगा कि हिम्मत कैसे पड़ गई। लेकिन कभी कभी होता है कि जिंदगी में पूछ के देख लो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। उत्तर नहीं में मिलागा, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा है? जिंदगी में एक और तजुर्बा होगा, अगर कुछ खराब भी हुआ तो। वैसे ईश्वर न करे कुछ खराब हो किसी के साथ, सबके साथ अच्छा हो, लेकिन पूछ लेना बहुत जरूरी है। हम बिना पूछे ही अपने मन से अंदाजा लगा लेते हैं एक बार, और ये बात मैंने अपनी जिंदगी में सीखी। अपने कॉलेज की लाइफ में एक, हम लोग जब पढ़ते थे महाविद्यालय में, तो एक लड़की बाहर से पढ़ने के लिए आई, नवोदय से, नवोदय की टॉपर स्टूडेंट, और पढ़ने में भी अच्छी, और भगवान ने उनको सूरत भी अच्छी दी थी। हम कई सारे दोस्त थे, सब्जेक्ट एक हुआ करते थे, क्लास होती थी। तो ये हुआ कि भाई हम लोग को घास डालेगी, किसी ने हिम्मत नहीं की उससे बात करने की, उससे दोस्ती करने की। तो कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि एक लड़का जो हमारे बैच का
न पहने में अच्छा था, न बहुत ही मतलब शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी नहीं थी, और उसके साथ वो घूम रही थी, बात कर रही थी। तो भी हुआ कि अब आश्चर्य हुआ कि मतलब कैसे, ये रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ आप। तो अभी भी हिम्मत नहीं पड़ी तो सबके साथ गए, तो हमने कहा कि आपने इनसे मित्रता कर ली, लेकिन हम यहाँ नए नए आए थे, किसी को जानते नहीं थे और हमसे कोई बात भी नहीं करता था। ये इकलौता ही इस कॉलेज का एक लड़का मिला जो उसने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमसे मित्रता कीजिए, तो हम इसके साथ हो लिए। जिंदगी में एक सबक मिला कि पूछ कर देख लेना चाहिए कि क्या हमसे आप मित्रता करेंगे, और इस चीज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया। वैशाली से एक बार मैं जा रहा था तो वहाँ पर एक व्यवस्था है कि आपको एक बार चाय मिलती है सुबह, और मुझको थोड़ा सा बेड टी लेने की आदत है और चाय थोड़ी सी कम थी उसमें, तो मैंने चाय पी। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा एक प्याली और पीने की तमन्ना है, तो हमारे बगल में भाई साहब बैठे हुए थे, तुमने कहा कि यार भाई साहब चाहते हैं कि एक प्याली चाय और मिल जाए। तुमने कहा असंभव, हो ही नहीं सकता, यहाँ पर एक ही प्याली चाय मिलती है और यहाँ की व्यवस्था है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो याद था कि पूछ के देख लो। तो वो आया जो वेटर था, हमने उससे कहा कि भैया ऐसा है कि थोड़ा सा सर में दर्द है और क्या एक प्याली चाय मिल जाएगी। उसने कहा जी सर, अभी लाया। वो आया और चाय लेकर के चला आया। सामने वाले भाई साहब की स्थिति ऐसी थी कि हास्यास्पद स्थिति। तो जिंदगी में अगर कुछ ना हो पाए तो एक बार पूछ के देख लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या, अधिकतम क्या होगा, सामने से जवाब नहीं आ जाएगा, लेकिन मलाल नहीं रहेगा कि सवाल नहीं कर पाए। सवाल किया और जवाब ना में आया, कोई बात नहीं, हम आगे की ओर बढ़े। तो कभी भी जिंदगी में कुछ ऐसा हो तो एक बार सामने वाले से पूछ लेना चाहिए। अक्सर हम बिना पूछे सामने वाले को अपनी बात कहने का मौका दिए हुए उसके प्रति अपनी धारणा बना लेते हैं, बाद में जाकर पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं यार, ये तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में था, ऐसा हो सकता था, देखने का एक नज़रिया ये भी है। तो आपको चाहते हैं उनसे कहा, हम भी कैसी मजाल कर बैठे। जी हाँ, तो ये मजाल करना बहुत ज़रूरी था कम से कम, क्योंकि कन्फर्म हो गया कि नहीं, हाँ और नहीं के बीच में कोई चीज़ नहीं होती है, या तो वो हाँ होगी या तो वो नहीं होगी। कन्फर्मेशन इज नेसेसरी, आवश्यक है। जी हाँ, आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल। हमारे साथ नागेश्वर धाकर जी भी आ चुके हैं। भाई गुड इवनिंग आरजे मनोज सर जी, आपको भी प्रणाम करते हैं। नागेश्वर जी कैसे हैं आप? जी हाँ अरविंद जी, भाई आपको हम आपकी गज़ल ज़रूर सुनाएंगे, फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल हमारी सुन लीजिए और इसके बाद चलते हैं अरविंद जी की, भाई देखें कौन सी गज़ल है। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो गणेशली 89.6 FM, ये है गोंडा नहीं नहीं हम सभी के दिलों की धड़कन। जी हाँ, आइए अपनी धड़कन को संभालते हैं और सुनते हैं ये प्यारी सी गज़ल।

इस गज़ल को गाया है जगजीत सिंह साहब ने और ये गज़ल लिखी है डॉक्टर बशीर बद ने। मतलब वो तो जिंदगी के हर मौजू पर ऐसा लिखते हैं जैसे उनकी कलम में एक अजीब सी ताकत थी। वो किसी भी मौजू पर, किसी भी जिंदगी के किसी भी इम्तिहान पर बहुत सादगी से बहुत प्यारी बात कहते थे। उन्होंने ही कहा था कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। मतलब किसी महफिल में आप हैं और कई लोग हैं जहाँ पर भाई ऊंचे कद के लोग पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहाँ दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। मतलब पानी की एक बूंद का एक अस्तित्व है। अगर वो पानी की बूंद है तो उसका एक अस्तित्व है। वो नदी में जाकर, समंदर में जाकर मिल गई तो उसने अपना अस्तित्व खो दिया। और अरविंद लिखते हैं भाई दिल खुश हो गया मनुष्य जी, जी बहुत बहुत प्रणाम आपको, इसी बहाने आपका दिल खुश हुआ। और वो लौट कर नहीं आएगा ये जानते हुए भी दिल जिद कर बैठा है। मुड़कर देखता नहीं किसी को, मुड़कर देखता नहीं किसी और की तरफ, कुछ इस कदर उम्मीद कर बैठा है। पंक्ति मुझे याद आ गई कि निगाहों में कोई चेहरा नजर नहीं आया, निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया। भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का। तो कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोगों से उम्मीद हो जाती है कि फिर दूसरे की उम्मीद हम नहीं कर पाते। हमने माना अभी अंधेरा है, हमने माना अभी अंधेरा है, पास लेकिन बहुत सवेरा है। अक्सर मैं कहता हूं कि जब कैमरे होते थे उनसे फोटो खींची जाती थी तो जो रील होती थी वो जिस कमरे में धुली जाती थी वो कमरा एकदम अंधकार युक्त होता था, एकदम कहीं भी एक किरण नहीं संभवती। अगर कहीं प्रकाश पड़ जाता था तो वहां की फोटो धुंधली हो जाती थी। हम एक बार गए थे लखनऊ में तो देखा कि कमरा एकदम अंधकार में है, निगेटिव धुली जा रही है। तो हमने पूछ लिया कि मतलब इतने अंधकार में, उनका निगेटिव है, अगर यहाँ रोशनी पड़ गई तो तस्वीर खराब हो जाएगी। तो मैंने एक चीज समझी कि ऐसे ही ऊपर वाला बैठकर हम लोगों की निगेटिव कभी कभी अंधेरे में धुल रहा होता है और हमको ये पता नहीं होता कि जितना गहरा अंधकार होगा फोटो उतनी ही अच्छी आएगी। घने अंधकार के बाद सवेरे की शुरुआत हो जाती है। हमने माना अभी अंधेरा है, पास लेकिन बहुत सवेरा है। मैल दिल में कोई नहीं रखना, मैल दिल में कोई नहीं रखना, दिल में रब का अगर बसेरा है। ये हृदय, यहाँ पर ईश्वर का निवास होता है, यहाँ पर गंदी चीजों का स्थान नहीं है, ये एकदम मंदिर है। और जहाँ पाकिजगी हो, जहाँ पर हम ईश्वर को रखते हो, अल्लाह को रखते हो, वहाँ मैल नहीं रखा करते, वो स्वच्छ होना चाहिए। मैल दिल में कोई नहीं रखना, दिल में रब का अगर बसेरा हो, छीन लेता है साथ अपनों का,
छीन लेता है साथ अपनों का, वक्त वो बेरहम लुटेरा है। सब मुसाफिर हैं एक मंजिल के, सब मुसाफिर हैं एक मंजिल के, ये जहां तेरा है न मेरा है। जी हाँ, यहां पर सब मुसाफिर हैं। वो एक नज्म हमको याद आती है कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। तो भाई सब, अगर सब मुसाफिर हैं एक मंजिल के, तो क्यों ना जिंदगी को कुछ इस तरीके से जिया जाए कि लगे कि हम सभी एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। तो क्यों ना ऊपर वाले का नाम लिया जाए। उसका नाम अलग अलग ढंग से हम ले सकते हैं, कोई ईश्वर कहेगा, कोई गॉड कहेगा, कोई अल्लाह कहेगा, लेकिन वो एक सत्ता है तो एक ही। आइए चलते हैं भाई, जब मंजिल एक है तो रास्ते भी एक होने चाहिए। और देखिए ये खूबसूरत रास्ता हमको कहाँ पहुँचाता है, इस प्यारे से नगमे में शायद आप एहसास कर पाए।

जी हाँ, ये तो ज़रूर जानना चाहेंगे भाई। नागेश्वर धाकड़ जिसे कि किसकी पायल ने इतना ज़्यादा को मदहोश किया, क्या बात है भाई। बहुत दिनों के बाद ये प्यारी सी गज़ल सुनी और बहुत अच्छी लगी। हाय रे तेरी पायल करे है दीवाना। और चलते हैं नदीम शाह साहब की। उन्होंने कहा कि दुश्मनी इस तरह निभाएगा, कभी कभी परिवार हो, समाज हो, देश हो, खतरा गैरों से ज्यादा अपनों से होता है। नदीम शाह ने कहा कि दुश्मनी इस तरह निभाएगा, दुश्मनी इस तरह निभाएगा, वो तेरी हां में हां मिलाएगा। जो हर बात पर आपकी हां में हां मिला दें, समझ लीजिए कि आपके बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। कुछ जगह पर विरोध स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। और अगर विचारधारा में कहीं मतभेद है तो उसको प्रकट करना चाहिए कि यहां हमारे हिसाब से ये है। दुश्मनी इस तरह निभाएगा, वो तेरी हां में हां मिलाएगा। टूट जाएगा कांच की मानिंद हर किसी से जो दिल लगाएगा। हाय ये दूरियां हैं दिल वाली, हाय ये दूरियां हैं दिल वाली, फासले किस तरह मिटाएगा। भेष बदला है, रूप बदला है, उसको पहचान तू न पाएगा। लाख काबिल है इल्म और फन में तू, अब बहुत समझदार हूं, चापलूसों से मात खाएगा। जी हाँ, कई कभी हमको लगता है कि इस भीड़ में हमारे अपने हैं, लेकिन जब वास्तविकता का एहसास होता है तो हमको पता चलता है नहीं, ये लोग जो आए थे वो हमारे अपने नहीं थे। हो सकता है वो तमाशा देखने वाले लोग हों। ध्यान रहे ये लोग तुम्हारी सफ में डर कर आए हैं। अरे तुमको जिंदा क्या रखेंगे जो खुद मर कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है। और नागेश सुधाकर जी का सलाम जी, और भी धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ है भाई, और दिलों का दर्द हम भी बांटने आ गए और गज़लों में हम भी उपस्थिति लगाने आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र मोहन जी। और अब चलिए आपको ले चलते हैं भाई, बात इशारों में हुई है तो कुछ बात इशारों की कर ली जाए। और जब बात इशारों की होती है तो एक नगमा बहुत ही प्यारा सा मेरे जहन में आता है, आपको सुनाते हैं। हो सकता है ये नगमा आपको भी पसंद आ जाए। ज़रा सुनिएगा और बताइएगा कि अगर इशारों की बात की जाए तो इशारों के लिए ये प्यारा सा नगमा कैसा रहेगा। सुनिए और बताइए।

जी, प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। जहां से आपने सीखा है वहीं से हमने भी सीखा है। आप अपना जानिए तो हमारा वाला तो आपको पता चल जाएगा। छोड़कर जाने का दस्तूर नहीं होता था, छोड़कर जाने का दस्तूर नहीं होता था, कोई भी जख्म हो नासूर नहीं होता था, मेरे भी होंठ पर सिगरेट नहीं होती थी, उसकी भी मांग में सिंदूर नहीं होता था। जिंदगी है साहब, और जिंदगी एक कहानी है, और कभी कभी लगता है कि ये जो कहानी है इसको लिखने वाला जो राइटर है वो शायद हम लोगों की पहुंच के बहुत ऊपर है। मैंने लिखा कि मेरी ख्वाहिश ने मुझको लूटा है, मेरी ख्वाहिश ने मुझको लूटा है, ख्वाब देखा जो मैंने झूठा है, यूं ही तुमसे खफा नहीं है हम, यूं ही तुमसे खफा नहीं है हम, दिल नहीं ऐतबार टूटा है, कुछ नहीं तुझसे प्यार है शायद, कुछ नहीं तुझसे प्यार है शायद, तेरा एहसास दिल को छूता है, क्यों बिछड़कर बिछड़ नहीं पाए, क्यों बिछड़कर बिछड़ नहीं पाए, साथ कब से हमारा छूटा है, हम मुकद्दर तो लिख नहीं सकते, हम मुकद्दर तो लिख नहीं सकते, जो भी अपना है वही रूठा है। और जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लेकर खड़ी आती है साहब कि हाँ, हमारे अपने हमसे रूठ जाते हैं, और हम नहीं चाहते कि कभी ऐसा हो। जी हाँ, अरविंद लिखते हैं, मजा आ गया आपकी बात को सुनकर। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हाँ, धर्मेंद्र लिखते हैं भाई कि सर जी, जिंदगी एक पहेली है, कभी तो हंसाए और कभी रुलाए। जी हाँ, और जिंदगी है साहब, ऐसे पल आते जाते रहेंगे, और इन्हीं पलों के लिए जब नागेश्वर जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमें बेहोश कर साकी पिला भी कुछ नहीं हमको, हमें बेहोश कर साकी पिला भी कुछ नहीं हमको, कर्म भी कुछ नहीं हमको, गिला भी कुछ नहीं हमको, मोहब्बत ने दिया है सब, मोहब्बत ने लिया है सब, मोहब्बत ने दिया है सब, मोहब्बत ने लिया है सब, मिला भी कुछ नहीं हमको, मिला भी कुछ नहीं हमको, गिला भी कुछ नहीं हमको। जी हाँ, न कुछ मिला है और न कुछ गिला है, सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़कर अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। और जब शाम होती है तो कोई प्यारी सी लोरी हमारे कानों में पड़ती है। जी हाँ, एक लोरी सुनाकर अब आपसे लेते हैं अनुमति। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम बहारे गज़ल में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ, और कल बुधवार है, और बुधवार को भाई अपने खजाने के साथ आप रहिएगा तैयार, क्योंकि इस दिन हमारे जो श्रोता होते हैं वो बनते हैं वक्ता। तो भाई अभी तक आप श्रोता है और आपको फिर वक्ता बनना है, तो कल मिलेंगे आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए।

जी हाँ, तो एक प्यारी सी लोरी के साथ आपसे लेते अनुमति, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गुड़ा शहर की धड़कन।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जस बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी गुनहगार। सब मेहमानों को विदा करने के बाद वंश बुरी तरह थक गया था। शादी में खूब रौनक थी पर अब सब मेहमानों के जाने के बाद पूरा घर सन्नाटा हो गया था। सोचा क्यों ना एक कप चाय पीकर थोड़ी थकान कम कर ली जाए। और फिर वंश ने अपनी मम्मी शालिनी को आवाज दी, मम्मी एक कप चाय बना दीजिए। फिर वो मनी मन सोचने लगा कि अनवी से भी पूछ लेता हूं। बेचारे नए घर में पता नहीं कैसा महसूस कर रही होगी। वंश ने धीमे से दरवाजा खटखटाया तो अनवी की महीन सी आवाज सुनाई दी, कौन है? वंश बोला, अनवी मैं हूं। अंदर जाकर देखा, अनवी एक हल्के बादामी रंग का सूट पहने खड़ी थी। ना होठों पर लिपस्टिक, ना आंखों में काजल, ना ही कोई साज श्रृंगार। ऐसा नहीं था कि वंश कोई पुरानी सोच रखता था, पर अनवी के चेहरे पर वो चमक जो नई दुल्हन के चेहरे पर रहती है वंश को दिखाई नहीं दी। उसने चिंतित स्वर में पूछा, ठीक तो हो अनवी, चाय पियोगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी। और ये कहते हुए अनवी का स्वर इतना सपाट था कि वंश उल्टे पैर लौट गया। मनी मन वंश सोच रहा था कि न जाने कैसी लड़की है। उसने तो सुना था कि पत्नी के आने पर पूरे जीवन में खुशी की रुनझुन हो जाती है, पर अनवी तो न जाने क्यों इतनी सिमटी सिमटी रहती है। रात को वंश जब अपने कमरे में गया तो उसने देखा अनवी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसको थोड़ी सी निराशा तो हुई, फिर लगा हो सकता है बेचारी थक गई होगी, वैसे भी पूरी उम्र पड़ी है बात करने के लिए। अगले दिन वंश अपने दोस्त नीरज से ये बात बोल ही रहा था तो नीरज हंसते हुए बोला, हर कोई तुम्हारी तरह बातों में शताब्दी एक्सप्रेस तो नहीं हो सकता ना, कुछ समय दो उसे, एडजस्ट हो जाएगी। वैसे भी लड़कियां अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आती हैं तो उन्हें एडजस्ट होने में थोड़ा समय तो लगता है ना। उस रात वंश और अनवी शादी के बाद पहली बार घूमने के लिए मॉरिशस जा रहे थे। वंश ने खुश होते हुए कहा, अनवी पैकिंग में मदद करूं क्या? अनवी ठंडे स्वर में बोली, थैंक यू, मैंने कर ली है। वंश को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अनवी का बस एक छोटा सा बैग था जिसमें 4-5 टी-शर्ट और 3 जीन्स थी। अनवी से बड़ा तो वंश का बैग था। वंश के जीवन में अनवी पहली लड़की नहीं थी, उसके पहले भी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी। लड़कियों को तो कपड़ों का, गहनों का और मेकअप का कितना शौक होता है। पूरे रास्ते विमान यात्रा में भी अनवी के मुंह पर चुप्पी का ताला लगा हुआ था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है गुनहगार। अब तक आपने सुना वंश की शादी अनवी से हुई थी, लेकिन अनवी शादी के बाद एकदम चुपचाप रहती थी, ना कोई साज श्रृंगार ना कोई हंसी मजाक। वंश को बड़ा अजीब लगता था। वो दोनों पहली बार घूमने मॉरिशस जा रहे थे। अब आगे वंश तो अनवी की सादगी पर पहले दिन से ही मोहित था। उसके होठों पर छोटा सा काला तिल, थोड़ी सी उठी हुई छोटी सी नाक, हंसते हुए गालों पर पड़ते गड्ढे, उठे हुए चीक बोन्स और लहराते काले घुंघराते बाल। अनवी का रूखापन उसे समझ नहीं आ रहा था। मॉरिशस में होटल के कमरे में पहुंचकर अनवी ऐसे शांत थी कि जैसे वो वहां पर बिल्कुल अकेली हो। वंश ने सोचा था कि शायद इस ट्रिप में वो थोड़ी खुल जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहां पर भी उसने कोई शौक कोई साज श्रृंगार नहीं किया। वंश झुंझला कर बोला, अनवी तुम्हें शादी का मतलब पता है या नहीं? अनवी कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वंश घबरा गया और बोला, अनवी मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी, मैं तुम्हारा दिल ही दुखाना चाहता था, पर तुम इस तरीके से अलग अलग क्यों रहती हो? अनवी धीमे से बोली, वंश मुझे कुछ टाइम दे दो। अनवी मैं तैयार हूं, पर थोड़ा मुस्कुरा तो दो। पूरी ट्रिप में वंश दोस्ती करने की कोशिश करता रहा और अनवी तो जैसे वहां होकर भी नहीं थी। वंश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे बात करे। दोस्तों से बात करेगा तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे। अनवी का ऐसा व्यवहार वंश को अंदर तक परेशान कर देता। वो अनवी से जितनी भी दोस्ती करने की कोशिश करता, अनवी पे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कभी वंश को लगता कि अनवी के मम्मी पापा से बात करे या उसकी सहेलियों से कि क्या अनवी को कोई समस्या है, पर फिर दूसरे ही पल वो अपना इरादा बदल देता। मॉरिशस से सीधे वंश और अनवी मुंबई चले गए, जहां वंश की नौकरी थी। अगले दिन वंश के ऑफिस जाने के बाद अनवी ने घर की काया पलट ही कर दी। वंश जब लौटा तो चकित रह गया। अनवी की चुप्पी तो नहीं टूटी थी, पर वो घर में वंश के साथ रच बस गई थी। एक दिन वंश ने अनवी से बोला, घर की याद आ रही है क्या? तुम शादी के बाद एक बार भी अपने घर नहीं गई हो। तुम्हारी पगफेरे की रस्म भी होटल में ही कर दी गई थी। अनवी ने कहा, नहीं वंश, मैं ठीक हूं। वंश को याद आया कि अनवी को उसने कभी अपने घर बात करते नहीं देखा था, और ना ही वो और लड़कियों की तरह सारा सारा दिन अपने मोबाइल में लगी रहती थी।

ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है गुनहगार। अब तक आपने सुना, वंश की शादी अनवी से हुई, लेकिन शादी के बाद काफी समय बीत जाने के बाद भी उन दोनों में

एक सादा सा कॉटन का सूट पहनने के लिए निकाली, तभी वंश बोला, रुको। फिर शिफॉन का मैरून रंग का गाउन निकालकर अनवी को दिया और साथ में मोतियों का सेट। जब अनवी तैयार होकर आई तो वंश बोला, अनवी आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि तुमसे आंखें हटाने का मन नहीं कर रहा। अनवी शर्माते हुए बोली, वंश तुम कुछ भी बोलते हो। वंश कार ड्राइव करते हुए सोच रहा था, शुक्र है कम से कम अनवी हंसी तो। डिनर करते हुए वंश ने अनवी से उसके शौक और दोस्तों के बारे में बातचीत करी, पर परिवार की बात आते ही अनवी चुप हो गई। वंश को इतना तो समझ में आ गया था कि कोई बात तो है जो अनवी के परिवार से जुड़ी हुई है। एक महीना बीत गया था। अनवी बोलती तो अब भी कम थी, परंतु इस जीवन में रच बस गई थी। वंश की पसंद नापसंद को अनवी जान चुकी थी। खाने में क्या बनना है जैसे छोटी सी बात को भी वो वंश से 10 बार पूछती थी। कोई भी फैसला अनवी अपने आप लेने में जैसे सक्षम ही नहीं थी। वंश धीरे धीरे अनवी को घर के साथ साथ बाहर के काम की भी जिम्मेदारी देने लगा था। जो अनवी घर से बाहर पैर निकालने में पहले 10 बार झिझकती थी, अब वो मुंबई के हर कोने से परिचित थी। परंतु अनवी और वंश का रिश्ता अब भी उतना ही औपचारिक था। देखते ही देखते करवा चौथ का त्योहार आ गया था। वंश ने अनवी के लिए मम्मी के कहे अनुसार साड़ी, गहने और चूड़ियां लाकर दी थीं। करवा चौथ से एक दिन पहले वो शाम को ही आ गया था। उसने अनवी को कुछ नहीं करने दिया। उसके हाथों में मेहंदी लगवाई और रात का खाना बाहर से पैक करवाया। रात में वंश ने अनवी को अपने हाथों से खाना खिलाया तो अनवी बोली, वंश आई एम वेरी हैप्पी। वंश बोला, अनवी मैं कब हैप्पी बनूंगा। अनवी वंश की बात सुनकर एकदम से सकपका गई। करवा चौथ की रात को अनवी इतनी सुंदर लग रही थी कि वंश उसे देखता ही रह गया। पर अनवी फिर भी कुछ गुमसुम सी ही रही। अब तो वंश को ऐसा लगने लगा जैसे उसकी सारी कोशिशें बेकार हैं। वो इतना परेशान हो चुका था कि उसने फैसला कर लिया कि वो 3-4 दिन के लिए गोवा चला जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है गुनहगार। अब तक आपने सुना, शादी के बाद लाख कोशिशें करने के बावजूद अन्वी वंश के साथ जैसे खुलकर नहीं जी रही थी। वंश हार मानने लगा था। उसने ये निर्णय किया कि वो यहां से दूर 3-4 दिन के लिए गोवा जाएगा अकेला। अब आगे जब उसने अन्वी को बताया तो अन्वी अपना सामान भी रखने लगी। तभी वंश बोला, अन्वी मैं जा रहा हूं, तुम नहीं। तुम तो जैसे मुझसे दूर दूर भागती रहती हो, तो तुम यहां पर अपनी कंपनी एंजॉय करो। अन्वी को वंश से ये उम्मीद नहीं थी, पर वो क्या बोलती। गोवा से जब चौथे दिन वंश लौटा तो अन्वी वंश से बोली, देखो मैं बुरी ही सही, पर तुम आगे से मुझे छोड़कर मत जाना। पता है तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला महसूस करती हूँ। तुम्हें तो मेरे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता नहीं था, पर मैं तो एक इंसान हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या तुम मुझे अपने प्यार के लायक नहीं समझती? वंश बोला। अन्वी बोली, नहीं वंश, ऐसा नहीं है। मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ये शादी मेरी गलती की सजा है, वो गलती जिसे मैंने जानबूझकर किया भी नहीं। अचानक अन्वी ने ये कहकर अपनी जीभ काट ली। वंश सकते में आ गया। क्या ये शादी अन्वी के लिए सजा है? वंश को एकाएक बहुत तेज गुस्सा आ गया। मन करा कि अन्वी से पूछे कि जब शादी का मन ही नहीं था तो क्यों उसकी जिंदगी खराब कर दी। अन्वी के मुंह से बात तो निकल गई, पर उसे समझ आ गया था कि वंश आहत हो गया है। शाम को जब अन्वी वंश के लिए चाय लेकर आई तो चुपचाप उसके पास बैठ गई और बोली, वंश मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। अन्वी मुझे पूरा सच जानना है, मुझे इस जबरदस्ती के रिश्ते से मुक्त कर दो। वंश गुस्से से बोला।
1: वंश, पूरा सच जानकर आप मुझसे नफरत करने लगेंगे, शायद घर से चले जाने को भी कह दें। वंश, मैं आपको खोना नहीं चाहती। ये घर मुझे अच्छा लगता है, अपना लगता है। आप मुझे अपने लगते हो।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है गुनहगार। अब तक आपने सुना, शादी के बाद लाख कोशिशें करने के बावजूद वंश अनवी को खुश रखने में नाकाम था। आखिर एक दिन उसे गुस्सा आ गया और वो उसे छोड़ के 3-4 दिन के लिए घूमने चला गया। लौटा तो अनवी उससे शिकायतें करने लगी। इस पर जब उसने और गुस्सा किया तो अनवी के मुंह से ये निकल गया कि ये शादी उसके लिए एक सजा थी। अब वंश सारी सच्चाई जानना चाहता था। अब आगे वंश ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, अनवी मैं तुमसे एक पति की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर बात करना चाह रहा हूं। अनवी ने बताना शुरू किया, जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में थी तब मेरी जिंदगी में रोशन आया था। मैं उससे बहुत प्यार करने लगी थी और वो भी मुझे बहुत चाहता था। वंश, मैं रोशन से ही शादी करना चाहती थी। मैं उसके प्यार में पागल हो गई थी। जब मेरा परिवार लड़के देखने लगा तो मैंने अपने परिवार को रोशन के बारे में बताया, पर मम्मी पापा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हमारे परिवार की शादी उस परिवार के साथ नहीं हो सकती। पर मेरे ऊपर तो इश्क का जुनून सवार था। जब मैंने रोशन को बताया तो उसने मुझसे समय मांगा। फिर एक दिन जब मुझे पता चला कि मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो मैं घर से निकल गई। मैं रोशन के पास पहुंच गई, पर रोशन ने मुझे अपनाने से मना कर दिया। जब मैं रोशन के हाथों अपमानित होकर अपने घर पहुंची तो मम्मी ने मुझे आड़े हाथों लिया, भैया ने 3-4 थप्पड़ लगा दिए, पापा ने मुझे नफरत भरी नजरों से देखा, सब ने मुझे गिरी हुई लड़की मान लिया, किसी ने मुझसे बात तक नहीं करी। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, चाहती थी कोई मुझसे बात करे, मेरे साथ मेरे दर्द को बांटे। वंश, मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने रोशन पर भरोसा किया, पर कभी लगता है मैं बेवकूफ हूं, मुझे कोई फैसला लेना नहीं आता। और इतना कहकर अनवी फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद झिझकते हुए बोली, वंश क्या आप भी मुझे चरित्रहीन गिरी हुई लड़की समझ रहे हैं? वंश ने जवाब दिया, अनवी उस हिसाब से तो मैं तुमसे ज्यादा चरित्रहीन हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी तुमसे पहले 3 लड़कियां आई थीं। अनवी फिर सहमते हुए बोली, लेकिन अगर वही सब मेरे दिमाग पे जिंदगी भर हावी रहा तो? अनवी, मेरे लिए तुम्हारा प्यार और सम्मान सबसे जरूरी है, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम इससे निकलने की तो कोशिश करो, सबसे पहले अतीत के पन्ने को फाड़ दो, खुद को अतीत से मुक्त करके मुझे खुले दिल से अपना लो। और इसका एक ही तरीका है, रोशन को और अपने परिवार के साथ साथ खुद को भी माफ कर दो। तुम्हारे परिवार ने जो भी किया वो सही था या गलत मुझे नहीं पता, पर उन्हें माफ कर दो और आगे बढ़ो। जब तक तुम खुद को अतीत से मुक्त नहीं करोगी, इस रिश्ते को अपना नहीं पाओगी। उस रात घर का कोना कोना खुशी से भरा था। अनवी लाल और हरी साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी।
वंश ने आगे बढ़कर अन्वी को गले लगा लिया। अन्वी भी चुपके से वंश के गले लग गई। उन दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो आज पहली बार मिले हैं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी गुनहगार। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं, तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

तो मेरा देश है और सप्तक मेरा धर्म, सुरताल मेरी जाति और रियाज मेरा कर्म। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस स्वर कोकिला की बात करने जा रहे हैं वो है हमारी प्यारी लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी की आवाज ना ही किसी पहचान की मोहताज है, ना ही किसी विवरण की, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसी आवाज है जिसे भारत की तरह एक नाम ही काफी है। भारत, भारत की पहचान हम सबकी प्यारी लता दीदी। स्वर कोकिला की मधुर तान भारत की पहचान बनी लता मंगेशकर महान। इस प्यारी सी आवाज के साथ में आज का शो हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी प्यारी आरजे ख्वाहिश के साथ में। जी हाँ, आज ये ख्वाहिश आज लेकर के आई हैं लता मंगेशकर जी की बहुत सारी ऐसे अनसुनी अनकहे किस्तों को आपके साथ शेयर करने के लिए, जो कि हम कभी भी उन चीज़ों को, उन बातों को भूल नहीं पाते हैं। लता जी के लिए जितना भी कहा जाए, जितना भी उनके बारे में बात की जाए, वो कम है। जैसे समुद्र से अगर हम एक बाल्टी पानी निकाल लें, या फिर भर भर के हम कितने भी टैंक पानी निकाल लें, क्या वो कम हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जब हम बहुत सारी उम्मीदों के साथ में कहीं जाते हैं तो हमारी और उपेक्षाएं बढ़ जाया करती हैं। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। लता जी ने संगीत की शिक्षा अपने पिता से ही पाई। पिता के अचानक से निधन के बाद में उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में परिवार की जिम्मेदारी संभाली और फिल्मों में गायन व अभिनय का आरंभ किया। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियां सर पे आने लगे तो हमारे ऊपर वो अलग से एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण किस तरीके से करें। ठीक वैसे ही लता दीदी ने भी अपनी सारी इच्छाओं को दमन करते हुए उस पद पर आगे गईं जहां पर उन्हें बहुत सारी उपलब्धि तो मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बचपन खोया आगे की बुलंदियों को पाने के लिए। तो आइए लता दीदी के इस प्यारे से एक गीत के साथ, जो कि उन्होंने अलग अलग स्वरों में अलग अलग पहचान के रूप में गाए हैं। कई गाने तो उन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए हैं, जैसे देशभक्ति गीत हो गया, बेवफाई सॉन्ग हो गया, रोमांटिक सॉन्ग्स हो गया, या फिर किसी को मनाने का सॉन्ग हो गया। आज का जो हमारा दौर हो रहेगा, आज का जो सफर रहेगा, वो कुछ बेवफाई वाले सॉन्ग्स की ओर हम बढ़ेंगे। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत एक उनकी ही आवाज में।

सन 1949 में फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने उन्हें रातों रात ख्याति दिखाई। उसके बाद वे हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिका बन गईं। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, बंगाली तथा अन्य कई भारतीय भाषाओं में हजारों गाने गाए। उनकी मधुर पर सुरीली आवाज ने उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दिलाई। यूं ही स्वर कोकिला की उपाधि उन्हें नहीं मिली जब उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे गीतों को गाया तो हिंदी सिनेमा ने भी उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए बुलाया। जब उनसे मराठी गाना गवाया गया तो भी वह उसमें खरी उतरी। चाहे वो गुजराती हो, बंगाली हो, किसी भी भाषा में उन्होंने अपनी ख्याति को फैलाने के लिए बहुत कुछ अपने आप को आगे बढ़ाया और फिर एकाकर एक बार उन्हें उनकी मधुर व सुरीली आवाज ने उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दिलाने में कुछ भी पीछे नहीं रहा। लता जी ने लगभग 7 दशकों तक भारतीय संगीत जगत पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। उन्होंने शंकर जयकिशन, एसडी वर्मन, आरडी वर्मन, मदन मोहन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। ऐ मेरे वतन के लोगों जैसा उनका देशभक्ति गीत भी आज भी हर एक भारतीय को भाव विभोर कर देता है। ठीक उसी तरीके से उनके कई ऐसे पद्म भूषण वाले गाने, पद्म भूषण इसलिए क्योंकि कई संगीतकारों के साथ में जब उन्होंने काम किया तो उन्हें पद्म भूषण भी हासिल हुए। उनके योगदान को देखते हुए उनके अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

लता जी की अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पंडित पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर के गायक व संगीतकार थे। लता जी को संगीत संस्कार बचपन से ही मिले थे। वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर यानी बचपन से ही एक ऐसा बीज होता है जिसे सिर्फ वो अंकुरित होने के लिए हमें सच्चे और एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें उसको सींच सके, उस बीज को सींचने के बाद उसको अंकुरित कर सके और एक फूल की तरह हमें खिला सके। लता जी के पिताजी ने यही काम किया। उनकी सारी चीजों को उन्होंने अपने आप के अंदर से निकालने के लिए बहुत सारी मेहनत करी। उनके करियर के शुरुआत के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी कड़ी मेहनत करी कि आज लता जी वो उन्हें हमेशा से अपने जहन में रहती हैं और उन्हें याद करती हैं। पिता के निधन यानी 1942 के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई। उन्होंने 13 साल की उम्र में किटी हसल 1942 फिल्म से अभिनय और गायन शुरू किया। उनकी पहली सफलता 1949 में फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला से थी। संगीत खेमचंद प्रकाश से लता जी को इस गाने से बहुत बड़ी ख्याति और बहुत बड़ी पहचान भी मिली। उनकी आवाज को स्वर कोकिला कहा गया, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने 36 से भी अधिक भारतीय भाषाओं में गाया, परंतु हिंदी और मराठी गीतों में उनका योगदान सबसे ज्यादा रहा। लता जी ने लगभग 30,000 से अधिक गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए विश्व कीर्तिमान से कम नहीं रहा। इसीलिए उन्हें आज भी हम अपने जहन में, हम अपने दिल में यूं बसाए बैठे हैं, जैसे कि कोई अपनी बहुत ही प्यारी सी याद को कभी न भूलने वाला एक हिस्सा बना के रखता है। कहते हैं जब हम दर्पण देखते हैं तो अपने आप को देखते हैं, लेकिन जो संगीतकार होते हैं, जैसा कि लता जी ने हमेशा से यही किया, जब वो दर्पण में देखती थी तो ऐसे कई संगीतकारों को अपने सामने पाती थी, अपने अपने सामने देखती थी कि किसी दिन मुझे ऐसे संगीतकारों के साथ मिल करके गाने गाने हैं। जिस बच्चे के अंदर अगर ये ललक है, अगर ये कोशिश है कि आगे चल करके हमें इस संगीतकार के साथ बैठ करके हमें भी गाना है, हमें भी उनकी छवि में अपने आप को डालना है, तो ही मेहनत सफलता और संघर्ष की कहानी को हम जन्म दे पाते हैं। इन सब के बीच में रही हमारी लता दीदी। आइए लता दीदी का एक और गाना सुनते हैं जो कि उन्होंने बेवफाई के रूप में गाया और बहुत ही सबको प्रिय रहा।

कहते हैं कि पुरस्कारों की छड़ी में अगर सबसे पहला पुरस्कार जब हमारे जीवन में कोई मिलता है तो हम उसे हमेशा से याद रखते हैं। ठीक वैसे ही लता दीदी को तो कई पुरस्कार दिए गए, उन्हें स्वर कोकिला भी कहा गया, लेकिन कुछ ऐसे पुरस्कार जिन्हें वो हमेशा से अपने जहन से लगा के रखती थी जो कि उनकी सम्मानित पुरस्कारों में से एक थे। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न 2001, पद्म भूषण 1969 में तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 से अलंकृत किया गया, क्योंकि ये पुरस्कार वो थे जिन्हें वो हमेशा अपने पास रखती थी। कहते हैं कि जब हम किसी भी उपलब्धि पे पहुंचते हैं ना, तो हमें बहुत सारे पुरस्कार तो मिलते ही हैं और हमारा घर उन पुरस्कारों से भर जाता है। लेकिन आज भी जब लता दीदी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था तो ऐसा सुनने में आता है कि उनका एक कमरा, एक से बड़ा सा हॉल जिसमें उन्होंने कई पुरस्कारों को इस तरीके से रखा है मानो उनकी जीवन भर की पूंजी हो, यानी कि किसी भी इंसान के लिए पूंजी क्या ही हो सकती है कि हम अपने लिए, हमने अपने लिए ये जमीन बनाई, हमने अपने लिए इतना सोना बनाया, हमने अपने लिए इतने

अमर गूंज है और हर दिल में बसी लता दीदी की आज भी मौज है। 6 फरवरी 2022 को उनका मुंबई में निधन हो गया। उनके जाने से संगीत जगत ने अपनी सबसे अनमोल धरोहर खो दी, फिर भी उनकी आवाज आज सदैव हमारे दिलों में गूंजती रहेगी और आने वाली पीढ़ियां उनसे हमेशा से प्रेरणा लेती रहेंगी। गायन के अलावा वे संगीतकार भी रहीं। नाम अनंत घन और मराठी फिल्मों के लिए संगीत दिया। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय कोरोना का वक्त चल रहा था, उम्र संबंधी जटिलताओं के चलते उनका निधन हुआ। उन्हें विरासत की ये तो कहा जाता है कि उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ी धरोहर मिली, एक बहुत बड़ा नाम।

भी मिला, जो कि स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, और आज उनका नाम सदैव भारतीय जगत में अमर रहने वाला है, क्योंकि कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे यहाँ से जाकर के हमारे दिलों से तो कभी नहीं जाते हैं, लेकिन वो आसमान में जाकर के एक वो तारा बन जाते हैं जिन्हें देख करके गर्व से हम ये कह सकते हैं कि वो रही हमारी स्वर कोकिला।

सभी संगीतकारों के, जैसे कि आपने सॉन्ग सुने हैं जिसमें लता जी हैं और आशा जी हैं, आर्य वर्मन साहब जी हैं, और उसके साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, लेकिन लता दीदी ने जब इन सब के साथ में काम किया, इन सब के साथ में गाने गाए, तो उनको एक ही नाम से पुकारा जाता था, हमारी प्यारी लता दीदी। लता दीदी की सादगी, लता दीदी का चलन, लता दीदी की बोली इस तरीके से थी मानो सबको मोह लेने वाली। जब वो सेट पे आती थी तो एक उनकी बहुत ही प्यारी सी आदत हुआ करती थी कि जब वो कोई भी सॉन्ग को गाती थी, जब वो उनके साथ में बैठ करके रिकॉर्डिंग करती थी, तो वो चप्पल कभी नहीं पहनती थी। आप जानते हैं क्यों? बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो अपने काम को पूजा के नाम से ही माना करती थी। वो कहती थी हमारा काम ही हमारी पूजा है, हमारी उपासना है। इस वजह से आज तक उन्होंने जितने भी गाने गाए थे, उन्होंने कभी भी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के टाइम पर कभी भी चप्पल नहीं पहनी थी। यहाँ तक कि जब भी वो लाइव शो करती थी, इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट करती थी, तब भी वो बिना चप्पल के ही करती थी। तो ऐसी लता दीदी के साथ में ऐसी हमारी स्वर कोकिला, जो उन्हें इतनी बड़ी उपाधि यूं ही नहीं दी गई। साथ ही साथ में जब भी वो कहीं पर बड़ी से बड़े शोज में जाती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, तो उन्हें खादी की साड़ी बहुत पसंद हुआ करती थी। सिंपल रहना, कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सेम ये स्लोगन उन पर फिट होता था। खादी की सफेद साड़ी, क्रीम कलर की साड़ी, पिंक कलर की साड़ी उनकी पहचान हुआ करती थी, क्योंकि सादा कपड़ा उन्हें बहुत ज्यादा ही पसंद हुआ करता था। सभी संगीतकारों के साथ जब वो काम करती थी, तो एक बार उनके जहन में ये बात आई कि हम यूं ही बिल्कुल साधारण से रहते हैं, कोई मुझे देख करके ये ना समझे कि मैं ऐसे क्यों हूँ। तो उनकी एक बिंदी लगाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, एक छोटी सी काली बिंदी लगाती थी बस। तब क्या था, उनकी खूबसूरती में, उनकी सादगी में चार चांस लग गए थे। संगीत के साथ साथ उनकी सादगी इस तरीके से फैली जैसे मानो सूर्य की किरणें पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जब फैलती है तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। बेवफाई के बहुत सारे गाने जब उन्होंने गाए, तो उनमें से कुछ ऐसे गाने जो आज के शो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं, एक और प्यारा सा गाना।

अगर हम बात करें लता दीदी के शुरुआती दिनों में, तो उनकी बहुत सारी ऐसी तकलीफें सामने आती हैं कि जिसके पीछे उनका ये बुलंदी वाला जो सफर रहा, उन्हें पाना वो वाकई में डिजर्व करती थी। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी तो उन पर आ ही गई थी, लेकिन शुरुआती तौर पर शुरुआती वर्षों में उन्हें कई बार ये भी कहा गया कि उनकी आवाज बहुत पतली है और उन्हें अपनी आवाज पर बहुत ज्यादा मेहनत और अभ्यास भी करना पड़ेगा। काफी पृथक प्रयासों से उन्हें इस आवाज जो आज तक हमारे जहन पे है, काफी प्रयास करने के बाद में, काफी अभ्यास करने के बाद में इस आवाज को वो सभी के सामने प्रभावित कर पाई। साथ ही साथ में तब से और आज तक उन्होंने कई ऐसे फिल्में की जैसे बरसात, आंदोलन, बाजार, आशियाना जैसी फिल्मों में गा करके अपनी पहचान को आगे बढ़ाया। ये थी पहचान उनके शुरुआती तौर पर। 1949 में फिल्म महल का गाना आने वाला आएगा आने वाला सुपरहिट हुआ और फिर उन्हें रातों रात उपलब्धि मिल गई थी। इस दौर में उन्होंने रोमांटिक, भक्ति, लोकगीत, गजल हर शैली में अपनी आवाज दी और फिर उन्होंने कुमार, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ में अपनी आवाज को कई विविधताओं के रूप में प्रस्तुत किया। 90 के दशक में भी लता जी ने हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, मोहब्बतें जैसी फिल्मों में गाकर ये साबित किया कि उनकी आवाज हमेशा जवां ही रहेगी। दीदी तेरा देवर दीवाना और तेरे लिए जैसे गाने आज भी सुपरहिट हैं, जो कि हर एक शादी में अगर ये गाने ना चलें तो वो शादी अधूरी सी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए हमने कई बार उन्हें सम्मानित होते हुए देखा और सुना है। लता दीदी ने विदेशों में भी कई ऐसे कार्यक्रम और शोज किए जो दुनिया भर में भारतीय संगीत का मान बढ़ाते रहे और हमेशा उनके लाइव शो हम जब आज देखते हैं तो मान बढ़ाएंगे ही। उन्हें भारत की नाइटिंगेल और क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत उनकी आवाज में।

स्वर्णिम युग की बात करें तो 1955 से लेकर के 1975 के बीच में उनका स्वर्णिम युग कहलाता है। इस दौर में लता दीदी ने संगीतकार शंकर जयकिशन, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे बहुत सारे ऐसे ख्याम के साथ में मिलकर के सदाबहार गीत गाए, इस जो कि गाने आज भी हिट नहीं सुपरहिट माने जाते हैं। प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम, और साथ ही साथ में अजीब दास्तां है ये, दिल अपना और प्रीत पराई, लग जा गले वो कौन थी, ऐ वतन के लोगों जिसने पूरे देश को रुला दिया। पंडित नेहरू की भी आंखें भर आई थीं जब लता दीदी ने ये गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। साथ ही साथ में जब उनकी सफलता और विविधता आगे बढ़ती गई तो कई ऐसे सामाजिक और पारिवारिक उत्सवों में भी जाकर के उन्होंने कई ऐसे गीत और कई ऐसे गानों को गाए जो कि आज हमारे जहन में हमेशा से रहते हैं। इस दौर में उन्होंने रोमांटिक, भक्ति, लोकगीत, गजल, हर शैली में अपनी आवाज को इस तरीके से पहुंचाया जैसे मानो कि हम उन्हें सदियों से खोज रहे थे और आज वो हमें मिल पाई हैं। नई पीढ़ी के साथ में अगर हम बात करें 1990 से लेकर के 2010 के बीच में तो कई ऐसे संगीतकार भी उनके साथ में आए, तो भी उनके साथ मिलकर के कई उन्होंने गाने गाए जैसे कि हमारी श्रेया घोषाल जी हैं और उनके साथ में भी उन्होंने कई सारे गीतों को अपनी आवाज दी। तो आइए इस प्यारे से एक और गीत को सुनते हैं जो कि बेवफाई के नाम पर कई हम सबके जहन में आज भी रहते हैं।

भारत की कोकिला, स्वरों की देवी लता मंगेशकर दीदी को शत शत नमन। उनकी मधुर आवाज सदा हमारे दिलों में यूं ही गूंजती रहेगी। लता दीदी सिर्फ गायिका नहीं बल्कि सुरों की वह गंगा थी जिनका प्रभाव हमेशा हम सबके जहन में रहेगा। उनकी आवाज हमारे संस्कार, हमारी भावनाएं और हमारी धरोहर भी है। लता दीदी हमारे संगीत की आत्मा है जिन्होंने अपने स्वरों से पूरी दुनिया को बांध के रखा हुआ है। उनकी गायकी हमें भक्ति, प्रेम और जीवन के हर रंग का अनुभव कराती है। इसी तरीके से आज का सफर, यानी कि आज का सफर हमारा लता दीदी के साथ उनकी यादों को लेकर के था। मैं हूँ आपकी आज एक ख्वाहिश, मिलूंगी एक नए सफर पे, एक नए संगीत के साथ में, एक नए गायक के साथ में। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।